ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम लोक। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, जिसमें आप

0: पंडित मधुप मुदबल मुदगल के स्वर में सुन रहे थे राग भटियार। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
3: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित

0: contributions to the weaving heritage of the country. The program will be held in New Delhi today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6:10 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: आज हम बात करेंगे उस महान लेखक, विचारक और राष्ट्रभक्त की, जिनकी कलम ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। भारत के इतिहास में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी लेखनी तल

0: अपार से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी उन्हीं में से एक थे। उनका जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के नैहाटी में हुआ था। उनके पिता यादव चंद्र चटर्जी एक सरकारी अधिकारी थे। बचपन से ही बंकिम चंद्र पढ़ाई में बहुत तेज थे और साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और वे भारत के पहले ग्रेजुएट्स में शामिल थे। बाद में उन्होंने ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया, लेकिन उनकी असली पहचान सरकारी नौकरी नहीं बल्कि उनकी लेखनी बनी। सरकारी नौकरी करते हुए भी बंकिम चंद्र का मन साहित्य में ही बसता था। उन्होंने महसूस किया कि भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना बहुत जरूरी है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और लोगों के मन में डर और निराशा थी। बंकिम चंद्र ने तय किया कि वे अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग जलाएंगे। उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे जैसे दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत का वसियतनामा, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध बना उनका उपन्यास आनंदमठ। आनंदमठ और क्रांति की शुरुआत। 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि ये एक क्रांति थी। इस उपन्यास में उन्होंने सन्यासियों के एक समूह की कहानी लिखी जो देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए संघर्ष करते हैं। इस कहानी ने पूरे भारत में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी और इसी उपन्यास में जन्म हुआ उस गीत का जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। जी हां श्रोताओं, वो महान गीत था वंदे मातरम। बंकिम चंद्र ने इस गीत को मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान के रूप में लिखा था। वंदे मातरम का अर्थ है मां मैं तुम्हें नमन करता हूं। यह गीत जल्द ही स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बन गया। जब भी स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन करते, जेल जाते या अंग्रेजों का सामना करते, वे वंदे मातरम गाते थे। ये गीत लोगों में साहस, जोश और देशभक्ति भर देता था। इस गीत और उनकी लेखनी से अंग्रेज सरकार काफी डर गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि तलवार से ज्यादा खतरनाक है जागरूक जनता। वंदे मातरम को कई जगहों पर गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन देशभक्तों ने इसे गाना बंद नहीं किया। ये गीत आजादी की पहचान बन चुका था। बंकिम चंद्र सिर्फ लेखक ही नहीं थे बल्कि वे एक महान विचारक और राष्ट्रभक्त भी थे। वे मानते थे कि देश की ताकत उनके लोगों में होती है। अगर लोग जाग जाएं, तो कोई भी ताकत देश को गुलाम नहीं बना सकती। उनकी रचनाओं में तीन बातें हमेशा दिखाई देती हैं, देशभक्ति, संस्कृति और परंपरा, और आत्मसम्मान। उन्होंने भारतीयों को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अरविंद घोष और अन्य कई स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र की रचनाओं से प्रेरित थे। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया। यह गीत सुनते ही लोगों के दिलों में आजादी की ज्वाला जल उठती थी और आज भी जब भी यह गीत बजता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र चटर्जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी कलम ने जो आग जलाई थी वो 1947 में भारत की आजादी बनकर सामने आई। जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो उसमें उनकी लेखनी का भी एक बड़ा योगदान है। बंकिम चंद्र चटर्जी हमें ये सिखाते हैं कि एक कलम भी देश बदल सकती है। उन्होंने हमें सिखाया देशभक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं विचारों में भी होती है। आइए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर कहें वंदे मातरम।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड से अयोध्या कांड भाग 16 है।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथे पन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम विधेयकम् 26,000-तमम् सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्यसर्वकाराः सहकारिता विकासकार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीयसाहाय्यं दातुम् अधिकृताः। एतद् अतिरिच्य संसदा संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां केरल इति राज्यस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधातुं केरल नाम परिवर्तन विधेयकं 26,000-तमम् अपि स्वीकृतम्। अपरतः वैदेशिक अनुदानानाम् उपयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकं उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् आनीतम्। वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकम् 26,000-तमम् विस्तृत सूक्ष्म परीक्षणार्थं संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् गृहमंत्री अमित शाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्। संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गेरातपुर अहमदाबाद खण्डे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,000,000,000 रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृता अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् रेलसेतु भागस्य समग्र दीर्घता 100+ मीटरमिता भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हरघर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मण्डल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्तिभावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौकायात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वम् एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतु विभागेन उत्तर बंगाल खात्याः उपरि न्यून चाप क्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशा राज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीये दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्णपदकानि, एकं रजतपदकं, एकं कांस्यपदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेवल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। संगठन ने सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news.

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:10 और 15 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अल्पिता कामरा के गाए हुए भजन। संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, सितार पर अकील अहमद, सरोद पर दानिश असलम, तबले पर पशुपति नाथ।

इस संगीतिका इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अल्पिता कामरा के गाए हुए भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीता भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ श्रोताओं, सावन तो आ चुका है और अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने में सभी को पता है कि सुबह में उमस से पसीना, दोपहर में लू जैसा मौसम और शाम को झमाझम बारिश। जी हाँ, शरीर भी बोलता है कि डिसाइड कर लो कि कौन सा मौसम चलना है, और इसी डिसाइड ना कर पाने की वजह से बीमारियां भी पार्टी करने लगती हैं, है ना दोस्तों? जैसे कि फ्लू, वायरल, डेंगू, पेट खराब और कई सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को परेशानी देती हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि इस गोलमोल मौसम में खुद को फिट कैसे रखा जाए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है, और इस महीने में हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियां हैं बहुत जल्दी पकड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पानी और खाने की। तो जी हाँ, इस महीने में बाहर का जो कटा हुआ फल होता है, ठेले वाला जूस होता है, बर्फ का गन्ने का रस होता है, मन तो करता है बहुत पीने का, पर फिर भी इससे टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बना रहता है। इसलिए घर का उबला ताजा फल और उबला हुआ पानी पिएं। फ्रिज में रखा बासी खाना भी आप हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि इसी मौसम में जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। और साथ में नींबू पानी और काला नमक अपने साथ हमेशा रखें। अब बात करते हैं मच्छर और उसके वायरस की। मच्छर अगस्त में बारिश के बाद जो गड्ढों में पानी रुकता है, वहीं पर डेंगू और मलेरिया का अड्डा बन जाता है। तो क्या करना है, फुल बाजू के कपड़े पहने, घर में नेट, हफ्ते में एक बार कूलर और गमले को ज़रूर साफ करें। अगर आपको बुखार आ रहा है और 2 दिन से ज़्यादा आपको बुखार बना हुआ है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। वायरल बुखार भी बहुत चल रहा है। अगर एसी से निकलकर आप गर्मी में वापस जाते हैं और फिर एसी में जाते हैं, तो शरीर भी कंफ्यूज हो जाता है कि आपको गर्म की ज़रूरत है या ठंडे की।

श्रोताओं, अगर बारिश के मौसम में आपका बाहर निकलना होता है या आप ऑफिस जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने आप को गीला ना रखें। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो अपने साथ बैग में एक एक्स्ट्रा सूती कुर्ता या कपड़े रखें, मोजे रखें। अगर पैर गीले हो जाते हैं तो तुरंत पहुँचें, क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार नीम वाले पानी से ज़रूर नहाएं, जिससे कि जो भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है वो बचा रहेगा।

अब बात करते हैं हमारे मूड और नींद की। जैसा कि आपको पता है कि मौसम बदलता है तो हमारा मूड भी चेंज होता है। जब मौसम अच्छा होता है, सुहाना होता है, तो हमें नींद भी काफ़ी आती है। तो जब मौसम बदलता है तो कभी धूप होती है, कभी बादल, तो दिल भी हमारा वैसे ही करता है। इसलिए नींद पूरी लें। नींद 7 घंटे तो बनती है। रात को हल्दी वाला दूध और सुबह अदरक तुलसी की चाय पिएं, जिससे कि आपका पेट हल्का रहेगा। और कोशिश करें कि तला भुना खाना अभी ना खाएं, बिल्कुल हल्का खाना खाएं, जिससे कि आपकी दिनचर्या अच्छी बनी रहे। और कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन घर का खाना ज़रूर खाएं, ऑफिस का छोड़कर और बाहर का छोड़कर, और एक दिन 20 मिनट वॉक ज़रूर करें।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको छोटे छोटे से टिप्स दे देते हैं, जो कि आप नोट कर लें कि अगर आपका गला खराब है तो नमक के पानी का गरारा करें, सिर दर्द है तो पुदीने का तेल माथे पर लगाएं, और थकान है तो 10 मिनट का मैप लें, पेट खराब है तो दही चावल और ORS का घोल लें, और सबसे ज़रूरी बात है हंसते रहें तो बीमारियां भी दूर भागती हैं। तो दोस्तों, अगर अगस्त का महीना है, भरोसा करना नहीं है, छाता भी रखो, पानी की बोतल भी रखो और दवा भी, और अपना ख्याल भी। और

और मुझे जरूर बताइएगा कि ये टिप्स आपके काम आई या नहीं। तो गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से अब मैं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा आपसे इजाजत लेती हूँ। जल्दी मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों

0: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144116 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
2: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
3: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
4: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान

0: लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
2: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
3: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
5: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
6: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
7: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर

0: नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलु मॉल में और एजी माला नेवल एकेडमी बैंड कर्णूर के थाजे चोवा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुनें। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। Calcutta High Court cancels all OBC certificates issued under revised rules introduced by previous Trinamool Congress government

0: कांग्रेस सरकार के शुरू करदा नए जाब्तों के तहत जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने मुनज्जम धोखाधड़ी के इल्जामात के तनाजुर में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज होने की तस्दीक की है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सुपुर्द करने के लिए मंजूरी दे दी है। मजकूरा बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने यह बिल वसीतर सलाह मशविरे की खातिर JPC के पास भेजने के लिए लोकसभा में एक तहरीक पेश की। JPC दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी में लोकसभा के 21 अरकान होंगे जिन्हें स्पीकर मौसूफ नामजद करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा से 10 अरकान भी इसमें शामिल होंगे जिन्हें चेयरपर्सन नामजद करेंगे। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में पेश कर देगी। इधर राज्यसभा ने भी गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौज की खातिर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने 10 अरकान को नामजद करने की तहरीक मंजूर कर ली है। आज पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आखिरी दिन है। ये इजलास गुज़श्ता महीने की 20 तारीख को शुरू हुआ था। राज्यसभा में आज कानून और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौज और इसे मंजूर किया जाना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज प्राइवेट मेंबर के कामकाज पर भी गौर खौज होना है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा ओबीसी ए और ओबीसी बी जुमरों के तहत जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अनुज सिंह पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने कहा कि रियासत में अब ओबीसी ए और ओबीसी बी का कोई जुमरा नहीं है। अदालत ने कहा कि साबिका निजाम के तहत जारी किए गए सर्टिफिकेट अब काबिल कबूल नहीं रह गए हैं। फैसले के मुताबिक इस तरह के सर्टिफिकेट रखने वाले अफराद को अब आम जुमरे का तसव्वुर किया जाएगा। ओबीसी तनाजा साल 2010 के बाद उस वक्त शुरू हुआ था जब उस वक्त की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने ओबीसी तबकों को दो जुमरों ओबीसी ए और ओबीसी बी में बांट दिया था। साल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 66 तबकों को ओबीसी फहरिस्त में शामिल किए जाने को रद्द कर दिया था और नए सिरे से सर्वे कराने का हुक्म दिया था। 2026 में बीजेपी सरकार के इख्तदार में आने के बाद उसने ओबीसी ए और ओबीसी बी जुमरों को खत्म कर दिया था और वाहिद ओबीसी जुमरा शुरू किया था। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साबिका इंतजामिया के चैलेंज को भी वापस ले लिया था। कानूनी चैलेंज वापस लिए जाने के तनाजुर में पहले जारी किए गए सर्टिफिकेट की कानूनी एतबार से कोई बुनियाद नहीं रह गई थी और इस पस मंजर में बुध के रोज हाईकोर्ट का ये हुक्म सामने आया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती में पेपर लीक के इल्जामात के मामले पर 454 फार्मेसी अफसरों के ओहदों के लिए तकर्रुर के अमल पर रोक लगा दी है। इसके लिए इम्तिहान पिछले महीने की 19 तारीख को हुआ था। फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इन ओहदों के लिए इश्तिहार दिया था। इस केस की अगली समाअत अब 17 सितंबर को होगी। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: इम्तिहानात के मामले पर सियासी तूफान के तनाजुर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का ये हुक्म इल्तवा सामने आया है। आला तकनीक के पेन कैमरों और दीगर आलात के जरिए मुबैना पेपर लीक के चंद घंटों के अंदर पंजाब पुलिस ने 3 जिलों फरीदकोट, कोटकापुरा और फिरोजपुर में इम्तिहानात के 25 मराकज पर कार्रवाई के बाद एक बैन रियासती चीटिंग रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने साजिश रचने वाले 7 बड़े मुलजिमों और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जो इस केस में सीधे मुलव्वस थे। छानबीन से मालूम हुआ कि धोखाधड़ी के इस रैकेट के तहत उम्मीदवारों से इम्तिहान में

0: पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी, जबकि पेपर लीक हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, फार्मेसी के एग्जाम में ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने, छात्रों के सामने जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे उनके सामने सच्चाई आई है।
1: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के 14वें इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ उम्मीदवारों की तरफ से एहतजाज जारी है। उम्मीदवार इस इम्तिहान में हुई मुबैना बेजाबतगियों की गैर जिम्मेदाराना जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में रांची में JPSC, JSSC रिफॉर्म फोरम की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें इस तहरीक की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एजाज दिए जाने की एक खसूसी तकरीब में 115 फनकारों को 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अदा करेंगी। इस मौके पर सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और सकाफत के वजीर मुमलिकत राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: एकेडमी अवार्ड्स देने का सिलसिला 1952 से जारी है। ये एजाज न सिर्फ उम्दा कारकर्दगी और कामयाबी के आला तरीन मयार की अक्कासी करते हैं, बल्कि इनके जरिए उम्दा इन्फरादी काम और अहम रोल को तस्लीम भी किया जाता है। एकेडमी फेलोशिप के एजाज के तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि एकेडमी अवार्ड एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ साथ 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल होता है। फेलोशिप और अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए अफराद मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और इस तरह वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: केरलम में यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज रियासत में 3 मकामात पर मुसल्ला अफवाज की जानिब से मौसीकी से मुतालिक प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: बहरिया और फजाइया के बैंड मौसीकी के जरिए मुल्क की यकजहती को फरोग देने के मकसद से आज तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कोची में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। फजाइया का बैंड तिरुवनंतपुरम में निशा गांधी में, कोची जनूबी बहरी कमांड का बैंड अन्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजीमाला नेवल एकेडमी बैंड कन्नूर के ताजवे चोवा में अपने फन का मुजाहरा करेगा। इन प्रोग्रामों का आगाज आज शाम 6 बजे किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: यौम आजादी से कबल पूरे मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा मुहिम से लोगों में हुब्बुल वतनी का मजबूत जज्बा पैदा हो रहा है। पूरी रियासत में तिरंगा रैलियों और कई दीगर प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: यौम आज़ादी से कबल मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ रही है। ये मुहिम 9 अगस्त से 17 अगस्त तक मुनक़िद की जा रही है। इसका आगाज वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एक तिरंगा रैली के साथ किया था। इसके बाद रियासत भर में तिरंगा रैलियां, बाइक रैलियां और साइकिल रैलियां मुनक़िद की जा रही हैं। गाँवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेला, नुमाइश और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज रंगोली, पेंटिंग, मजमून नवेसी और हुब्बुल वतनी के नगमों के मुकाबलों का इनेकाद करके बच्चों और नौजवानों को इस मुहिम में शामिल कर रहे हैं। लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों, दुकानों और इमारतों पर कौमी परचम लहराने के लिए कहा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी कल तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं, दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं। एक बयान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ग्रुप ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज और फजाइया ने

0: शराब के गूदर मोहल्ले और आसपास के सिविलियन इलाकों में शदीद बमबारी और फायरिंग की, जिससे जानो माल का काफी नुकसान हुआ। मज़कूरा तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया है कि मकामी लोगों और हुकाम को बचाव और राहत कार्रवाई अंजाम देने से रोका गया। उसने दावा किया है कि अस्पतालों को फौजी एहलकारों ने घेर लिया है और डॉक्टरों पर दबाव डाला गया। इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। मस्कुरा ग्रुप ने बैनुल अक्वामी बिरादरी से अपील की है कि वो इस वाक़े का नोटिस ले और बलोच लोगों की जिंदगी और बुनियादी हकूक के तहफ्फुज के लिए मुदाखलत करे। अपनी खसूसी सीरीज पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के आइंदा एपिसोड में आज हम विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से गुफ्तगू करेंगे, जो दुनिया की पहली हमा निस्वा फौजी बहरी मुहिम का हिस्सा थी, जिसके दौरान उन्होंने समंदरी रास्ते से दुनिया का चक्कर मुकम्मल किया। इस बातचीत को आज सुबह 9:10 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। क्रिकेट में BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान भारत के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा। ये सीरीज अगले महीने की 13 से 17 तारीख तक होगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये सीरीज अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के टूर प्रोग्राम का हिस्सा है और ये मैच भारत में खेले जाएंगे। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर ओपोजिशन को नीट पेपर लीक पर बहस के लिए आमादा करने पर जोर दिया। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला के इस बयान को अव्वलियत के साथ सुर्खी बनाया है कि ओपोजिशन के तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हूं। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अहमियत के साथ शाये किया है कि एहतजाज के दरमियान FCRA तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द JPC में बिल की दफात पर तफसीली गौर किया जाएगा। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त की रस्म इजरा के मौके पर वजीर आजम के इस बयान को अखबारात ने शह सुर्खी बनाया है कि साबिक सदर की जद्दोजहद और खिदमत एक काबिल तकलीद कहानी।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। गैर मुल्की एहतियात को मुंसबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा नए जाब्तों के तहत जारी किए गए सभी OBC सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने मुनज्जम धोखादही के इल्जामात के तनाजुर में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और क्रिकेट में BCCI ने सितम्बर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज होने की तस्दीक की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 और 15 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं महतल अली खान का सितार वादन, राग है अलहैया बिलावल।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है उद्योग पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
2: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन साप्ताहिक पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से उन तक नई नई जानकारी, नए नए विषयों पर नए नए विशेषज्ञों द्वारा पहुंचाते रहते हैं। आज इस पत्रिका कार्यक्रम में हमने शामिल किया है वर्तमान समय की जो गंभीर, चाहे अध्ययन के क्षेत्र हों, चाहे चुनौतियों के क्षेत्र हों, मैनेजमेंट स्किल के क्षेत्र हों, AI का क्षेत्र है, इस सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। खास करके हम देखेंगे कि जो AI और जनरेटिव AI है वो किस तरह से बिजनेस स्कूलों को भी प्रभावित कर रहा है, और जब हम बिजनेस स्कूल की बात करते हैं, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पढ़ने के बाद इसकी इम्प्लायबिलिटी क्या है, रोजगार के अवसर क्या मिलते हैं, और रोजगार के ज्यादा अवसर मिलने के लिए जरूरी होता है कि शिक्षा संस्थान और उद्योग के बीच में जो है सहयोग बढ़े। जो प्रबंधन शिक्षा का भविष्य है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कैसा होगा, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हिमाद्री दास। डॉक्टर हिमाद्री दास महानिदेशक हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के। इससे पहले डॉक्टर दास MDI गुरुग्राम के निदेशक भी रह चुके हैं। 25 वर्षों से अधिक का इनका एक अकादमिक और कारपोरेट क्षेत्र का अनुभव है। डॉक्टर हिमाद्री दास जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: आपके माध्यम से अपने सुनने वालों के लिए

0: बताना चाहेंगे कि जैसे मैनेजमेंट एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सबके लिए आई थी, इस कब को लेके मैनेजमेंट एजुकेशन का उससे जुड़े हुए जो लाभ हैं अध्ययन करने वालों के लिए, उसका परिदृश्य किस तरह से बदल रहा है या बदल सकता है?
1: मैनेजमेंट एजुकेशन का लाभ तो ये है कि जितने हमारे बिजनेसेस चलते हैं, चाहे इंडिया हो, इंडिया के बाहर हो, वहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट्स चाहिए MBA के प्राइमरीली, जो बिजनेस चला सकते हैं। तो इसमें जो चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बिजनेस लैंडस्केप है वो पूरा टेक्नोलॉजी से डिसरप्ट हो रहा है। तो पहले एक तरीके से काम चलता था जहाँ पे सेट प्रॉब्लम्स लोग सॉल्व करते थे और उसके लिए जो ट्रेनिंग मिलती थी बिजनेस स्कूल्स में, वो ट्रेडिशनली किसी ने कोई प्रॉब्लम डिफाइन करके दिया, उसको स्टूडेंट ने सॉल्व किया, उसके नंबर आए, फिर उसको ग्रेड मिला, फिर इंटरव्यू करने आया जो वो भी वैसी क्वेश्चन पूछा और उसको नौकरी मिली, कॉन्टेक्स्ट वही था। तो अभी क्या हो गया है कि AI और जेनरेटिव AI आने पे और बाकी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, बिजनेस लैंडस्केप ही पूरा बदल गया और बदल रहा है हर रोज। तो इसीलिए बिजनेस स्कूल्स जो है उनको बहुत जरूरी है कि वो अपने जो MBA ग्रेजुएट्स है उनको कंटेम्प्रेरी रखे विद एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना भी AI से आसान हो गया, बट प्रॉब्लम डिफाइन करना और प्रॉब्लम को फ्रेम करना वो मुश्किल है क्योंकि चीजें इतनी फास्ट बदल रही है। जो कल जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है और कल परसों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं रहेगा। तो द MBA ग्रेजुएट उसको तैयार करना पड़ेगा बिजनेस स्कूल में कि वो प्रॉब्लम को समझे कैसे, चेंजिंग प्रॉब्लम को, और उसको कैसे स्ट्रक्चर करे, कैसे फ्रेम करे, और वो फ्रेम अगर ठीक तरह कर पाएगा तो उसका सोल्यूशन उसको AI निकालने में हेल्प करेगा। पर AI प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर नहीं कर सकता, वो प्रॉब्लम को फ्रेम नहीं कर पाएगा, वो जिसके पास डोमेन नॉलेज है बिजनेस का वही फ्रेम कर पाएगा। AI सहायता करेगा, हेल्प करेगा उसको जल्दी से जल्दी एक्यूरेटली सोल्यूशन देने के लिए। अगर वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव को या MBA स्टूडेंट को वो सोल्यूशन पसंद नहीं आया तो वो रीफ्रेम करके उसी प्रॉब्लम को दोबारा पूछ सकते हैं। तो इसमें एक इटरेटिव प्रोसेस होगा जिसमें जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम की डेफिनेशन में द ह्यूमन बीइंग उसको फॉर्मुलेट करेगा और AI के माध्यम से वो उसको सॉल्व करने में जल्दी से जल्दी सहायता लेगा।
0: ये तो आपने बताया कि जो AI किस तरह से उपयोगी होगा। आप खुद भी IIT दिल्ली के एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, साथ ही आपने MBA किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से, PhD भी आपने की है। अब जब हम संस्थानों के महत्व की बात करें तो किस तरह से, अगर जो बड़े मैनेजमेंट स्कूल है वो कुछ सारे लोग तो नहीं जा पाते हैं, तो अगर हम बात करें कि इन जनरल मैनेजमेंट स्टडी में, तो आने वाले वर्षों में मैनेजमेंट शिक्षा जो है अधिक तकनीकी आधारित हो जाएगी, जैसा कि आपने कहा कि AI सब के यूज से, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उसमें बिजनेस स्कूल किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं या निभा रहे हैं?
1: पहले तो मैं बोलूंगा ये कि AI यूज करने वाले को टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत नहीं है, वो टूल है। जिसने AI का मॉडल बनाया, चाहे वो ChatGPT हो, चाहे क्लॉड हो, चाहे गूगल जेमिनी हो, चाहे हमारा अपना सर्वम AI हो इंडिया का, तो वो जो बनाता है वो टेक्निकल आदमी है, जो यूज करता है वो टेक्निकल आदमी नहीं है। यूज करने वाले के लिए वो टूल है। जैसे कि किसी जमाने में कैलकुलेटर होता था, जब कैलकुलेटर पहले पहले आया तो उसने भी धमाल मचा दिया, तो ये भी वैसे ही है। तो इसमें स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और आसान हो गया अभी, बिकॉज ऑफ AI एक टूल के माध्यम से उसको यूज करने से वो जल्दी से जल्दी गो टू मार्केट कर सकता है, वो जल्दी से जल्दी जो कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना सकता है मार्केट के लिए। सो इसमें उल्टा AI आने से जिसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है वो भी जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस भी निकाल सकता है, क्योंकि वो जैसे आजकल प्रोग्रामिंग अगर कोई नहीं भी आता किसी को, वो भी कोई ऐप बना सकता है क्योंकि वो AI के माध्यम से वो कोड जनरेट कर सकता है जो पहले उसको खुद लिखना पड़ता था। तो इसमें तो मेरे ख्याल से और डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है ऑफ एबिलिटी टू डू ए स्टार्टअप और बिकम एंटरप्रेन्योर, इसमें तो फायदा हुआ है सबको।
0: बात करते हैं रोजगार के अधिक से अधिक सृजन करने के लिए, एक तो रिसर्च करना भी जरूरी है मार्केट का, दूसरा होता है कि जो बिजनेस इंडस्ट्रीज है उनके साथ कोलैबोरेशन की भी जरूरत होती है। तो आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल के महानिदेशक हैं, आपके स्कूल में किस तरह से इस चीज पर ध्यान दिया जाता है और किस तरह से लोगों को प्लेसमेंट करने में आसानी होती है ताकि वो अन्य जो छोटे या Tier 2-3 स्टेज के जो बिजनेस स्कूल है वो उसको अपने एज ए रोल अपना सकते हैं?
1: इसमें एक बहुत, मैं फॉर्मूला तो नहीं बोलूंगा, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि कोई भी बिजनेस स्कूल, चाहे वो Tier 1 हो, Tier 2 और Tier 3 हो, वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है नौकरी के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उसको पैसा देकर हायर करे। तो इसके लिए जो मेन चीज जरूरत है कि स्टूडेंट्स को ये वाले स्किल्स देने जो एम्प्लॉयर मांगता है। अगर मैं उसको 10 साल पुराने तरीके से पढ़ाऊंगा और वो स्किल्स अभी नहीं चाहिए एम्प्लॉयर को तो उसको नहीं लेगा, जबकि वो मैं Tier 2 या Tier 3 भी हूं, अगर मैं उसको स्किल्स इस तरह दूंगा जो एम्प्लॉयर उसको पहले दिन से काम में लगा पाए तो एम्प्लॉयर उसको लेगा। इसके लिए जो हमने किया है IMI में, और जो करने को तो कोई भी कर सकता है, दैट हमने अभी रिसेंटली इसी साल करिकुलम

0: पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया है। कैसे किया? प्रोफेसर्स ने बैठ के नहीं डिसाइड किया कि क्या पढ़ाना चाहिए, हमने एम्प्लॉयर्स के जो सीनियर लोग हैं जो हायर करते हैं उनसे डिस्कशंस करके कई महीनों तक पता किया है कि उनको कौन से स्किल्स चाहिए जो पहले नहीं चाहिए होते हैं, अभी चाहिए होते हैं और आजकल मिलते नहीं है। तो फिर हमने करिकुलम को उसके मुताबिक रिवर्स इंजीनियर किया है कि जो एम्प्लॉयर को जो स्किल्स चाहिए उसको हम वही स्किल्स के साथ तैयार करके स्टूडेंट्स को बनाएंगे। तो ये तो कोई अगर टीयर टू या टीयर थ्री वाला इंस्टीट्यूट भी करे, इस अप्रोच ले, तो फिर एम्प्लॉयर बोलेगा कि हम तो यहां से लेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि इनके स्किल्स जो हमको चाहिए वही है। तो मेन जो चीज है ना, आपको बोलना बड़ा आसान है कि आप एकेडमी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन करो, पहले पैर बढ़ाना पड़ेगा एकेडेमिया को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को जाना पड़ेगा इंडस्ट्री के पास, बोलना पड़ेगा हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आप बताओ आपके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्किल्स चाहिए, उसके मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो इसमें जो पहला मूव है ना वो हमेशा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को लेना चाहिए। अगर वो सोचेगा कि इंडस्ट्री हमारे पास आएगा तब हम बात करेंगे, फिर बात कभी बनेगी नहीं, कि वो तो कस्टमर है, वो तो खरीदेगा ना, मतलब स्टूडेंट्स हायर करेगा, एम्प्लॉय करेगा। तो आपका इंटरेस्ट में है कि आप अपने स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाओ, तो आप उनके पास जाके पूछोगे कि आपको क्या चाहिए बताइए, हम वैसे ही बना के देंगे।
1: जो नए स्किल्स की जरूरत होती है उस हिसाब से इंस्टीट्यूट अपने छात्रों को तैयार करेगा,
0: उसी तरह पढ़ाना है, करिकुलम उसी तरह बनाना है।
1: इसलिए भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया है। कई बार कंपनियां कहती है कि उनके यहाँ नौकरी तो है लेकिन इस नौकरी के लिए जिस तरह की निपुणता की जरूरत है, स्किल की जरूरत है, उस तरह के बच्चे छात्र छात्राएं उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने बताया कि किस तरह से एकेडमिक कोलैबोरेशन के तहत कंपनी के जो है एम्प्लॉयर के रिक्वायरमेंट जान के अपने इंस्टीट्यूट में तैयार करना। एक हमारे यहाँ एक रैंकिंग की बात होती है, इंस्टीट्यूट के रैंकिंग की बात होती है, दूसरा क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग भी है। तो अगर हम वैश्विक शिक्षा हब में जाएं, हमारा देश के अगर हम तुलना करें, तो इसमें मैनेजमेंट संस्थानों की क्या भूमिका है, वर्तमान में क्या स्थिति है, और खास करके जब हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने सारे इनोवेशन है उसमें काफी परिवर्तन आ रहा है, तो इसमें क्या 2030-35 तक क्या कोई मैनेजमेंट एजुकेशन में भी बड़े बदलाव की आशा है या होनी चाहिए?
0: नहीं, बड़े बदलाव तो जरूरी है, अगर वो नहीं करेगा बदलाव तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। पर आपने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, पेटेंट्स बन रहे हैं, पर पेटेंट का मतलब क्या है कि मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको अपने नाम पे कर दिया है, पर उसको कमर्शियलाइज भी तो करना है। तो मैनेजमेंट स्कूल का काम है कि इनके साथ काम करे, इंजीनियरिंग एंड साइंस कॉलेजेस के साथ, उनका जो नए चीजें निकल रहा है फ्रॉम ए साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, उसको वो जल्दी से जो कहते हैं गो टू मार्केट ले जाए। तो उसमें बिजनेस मॉडल्स चाहिए, उसमें कैश फ्लोज देखने हैं, उसको मोनेटाइज कैसे करना है। तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का काम है कि जो साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो निकलता है उसको जल्दी से कमर्शियलाइज करके गो टू मार्केट ले जाए इन ए प्रॉफिटेबल वे, कि मुनाफा भी होए। तो इसलिए तो जुगलबंदी तो है।
1: निश्चित रूप से जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन बेस्ड कोई प्रोडक्ट आता है, निश्चित रूप से उसको एक प्रोडक्ट के रूप में, मतलब इनोवेशन के बाद जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में आता है। एक सस्टेनेबिलिटी की भी बात करते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की भी बात होती है। प्रायः लोग कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप, लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र में लीडरशिप कितना महत्वपूर्ण है, खास करके कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए। इस क्षेत्र में लीडरशिप के लिए क्या क्या क्वालिटी या एजुकेशन एक्सपेक्ट किया जाता है?
0: सबसे पहले तो कॉर्पोरेट लीडर को एम्पैथी होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए और बाकी कम्युनिटी के लिए। वो सिर्फ पैसा तो बनाना है, उसका तनख्वाह मिलती है पैसे बनाने के लिए कंपनी के लिए, पर उसके साथ साथ एम्पैथी भी चाहिए अपने लोगों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए और कम्युनिटी के लिए, नहीं तो वो कंपनी कभी सर्वाइव नहीं करेगा लॉन्ग टर्म। दूसरी चीज है उनके पास एक विजन होना चाहिए ग्रोथ के लिए। कॉर्पोरेट लीडरशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जैसा काम चल रहा था चलता रहे, उसको ग्रोथ चाहिए। अगर ग्रोथ होएगा तभी तो जीडीपी बढ़ेगा। अगर सारे कंपनीज ग्रो कर रहे हैं तो तभी देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो इसमें लीडर का रोल है कि ग्रोथ माइंडसेट विद ए लॉन्ग टर्म विजन और साथ में एम्पैथी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड कम्युनिटी।
1: इसीलिए शायद यही कारण है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो ज्यादा सफल हो रही है निसफल नेतृत्व के कारण ही, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा अपने एम्प्लॉई फ्रेंडली भी हो रहे हैं, उनके लिए इनकरेजिंग माहौल भी बना के रखते हैं। आपका जो है एक कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है, साथ ही आपका एकेडमिक लीडरशिप भी है, अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एक नेतृत्व वाले पद पे काम किया है, इन दोनों के अनुभव से आप नए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी उनका लाभ उठा सके, या एक सबक जिसको कहता है कि अपने एक्सपीरियंस के दौरान कैसा होना चाहिए?
0: मेन मैसेज मेरा है कि टेक्नोलॉजी जितना मर्जी आए, टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करना है विद ओपन आर्म्स, तुरंत अडॉप्ट करना है, देर नहीं करना, रिजिस्ट नहीं करना, पर साथ में लोगों को भी साथ लेते हुए चलना। सिर्फ टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं चलेगा, लोग अगर साथ में ना हो, अगर लोग का विजन अलाइन ना हो, जो आपके एम्प्लॉयज है, आपके टीम मेंबर्स है, आपके कोलीग्स है, जब तक सबका विजन अलाइन ना हो, आप 1000 टेक्नोलॉजी यूज कर लो आपके गोल्स नहीं मीट होंगे। आपको मंजिल तभी मिलेगा जब सारे लोग एक साथ अलाइंड हो, सब लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं और उसमें टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगा जल्दी चलने में।

0: टेक्नोलॉजी आपको जल्दी चलने में हेल्प करेगा, पर अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जल्दी जाओगे गलत डायरेक्शन में, तो फायदा क्या? तो लोगों को साथ में लेके चलना है टेक्नोलॉजी के साथ साथ।
1: बहुत अच्छा है, लक्ष्य एक होना चाहिए और कार्य करने की जो प्रणाली है वो एक होनी चाहिए, तभी एक डिसिप्लिन पे में चल के सफलता मिल सकती है, एक एम्प्लॉई को भी, व्यक्ति को भी और एक संस्थान को भी। अंत में अगर हम बात करना चाहेंगे कि जो कोई MBA करना चाहता है, वो तरह के कोर्सेज हैं, HR में ऐसा कहा जाता है कि कम अपॉर्चुनिटीज हैं, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड आगे हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है, फिनटेक और मार्केटिंग का तो एक पुराना ये है। ऐसी स्थिति में अगर कोई छात्र MBA करना चाहता है तो उसे विषय के सिलेक्शन में और एक अच्छे संस्थान के सिलेक्शन में किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए?
0: मेरा तो व्यू ऐसा है और मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि जिसमें वो छात्र का इंटरेस्ट है उसमें करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट किसमें बड़ा है या तनख्वाह किसमें ज्यादा है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है। उसने मिनिमम 30 साल नौकरी करनी, करियर बनाना। अगर वो ऐसे जगह घुसता है जिसको उसमें मजा ही नहीं आता, पहले 5 साल तो वो पैसे का मजा लेगा, उसके बाद तो वो बर्न आउट हो जाएगा, बोर हो जाएगा, उसको सुबह उठ के काम पे जाने का दिल ही नहीं करेगा। तो उसको ऐसा कोई लेना चाहिए, चाहे वो HR हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, ऐसा चीज जो उसको सचमुच इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट होगा वो उसमें सफल होगा, अपने मैनेजर्स को इम्प्रेस करेगा, उसको तरक्की मिलेगी, उसकी ग्रोथ होगी। अगर वो ऐसे किसी चीज में घुसता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है और वो खुद उसको मजा नहीं आ रहा है, उसका परफॉर्मेंस सफर करेगा तो उसको बॉस बोलेंगे तो अच्छी तरह काम नहीं करता है, उसको तरक्की नहीं होगी, करियर ग्रोथ नहीं होगा। तो ये लोग मेरे ख्याल से गलत करते हैं कि सोचते हैं कि ये पढ़ने से ज्यादा मौका है, वो पढ़ने से कम मौका है। अगर आप पसंद का चीज पढ़ोगे उसमें ऑटोमेटिकली अच्छा करो, फिर मौका ही मौका है। इकोनॉमी इतना ग्रो कर रहा है इंडिया में, हम इंडिया में बहुत फॉर्चुनेट है, इकोनॉमी इतना तेज ग्रो कर रहा है, तो हाई ग्रोथ इकोनॉमी में एक्सीलेंस का एक वैल्यू मिलेगा। जिसमें भी आप एक्सीलेंट हो उसमें आपको वैल्यू मिलेगा ही लॉन्ग टर्म।
1: बहुत अच्छा, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो जल्द से जल्द अपने करियर में काफी ऊंचाई पे पहुंचने के साथ साथ काफी सेटिस्फाइड जॉब आर्थिक दृष्टि से लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान चाहिए कि जॉब सेटिस्फेक्शन भी देखना है, साथ ही ये भी देखना है कि उनका अपना रुझान किस फील्ड का है, और ताकि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, न कि अपनी जो इच्छा है उसको बदल के सिर्फ लालच में आके दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर उनका परफॉर्मेंस भी खराब होता है, लॉन्ग टर्म में आपने बताया कि उसका नुकसान होता है, बहुत अधिक फायदा नहीं होता है। डॉक्टर हिमाद्री दास जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने अपने जो अनुभव है कारपोरेट और एकेडमिक क्षेत्र के उसके अनुभव साझा किए, आपने मैनेजमेंट स्कूल में किस तरह की शिक्षा है, किस तरह से परिवर्तन की जरूरत है, किस तरह की पार्टनरशिप की जरूरत, आपने कही कि स्किल रिक्वायरमेंट के लिए तैयारी की जाती है, साथ ही आपने ये भी बताया कि किस तरह से विषय के चुनाव करने में और अपना करियर आगे बढ़ने में एक संयम की जरूरत पड़ती है, सेटिस्फेक्शन साथ लेके चलना पड़ता है। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: उद्योग पत्रिका,
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 9:30 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: मैं फरहत नाज। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से आरंभ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में आज निजी सदस्यों के विधायी प्रस्ताव भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा

0: प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को आज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वो जीवन की चुनौतियों से कभी नहीं हारता। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का कल शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस पर की गई इस पहल का उद्देश्य गांधीनगर, कलोल और सांणंद विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बच्चों को पढ़ने की आदत से जोड़ना और उन्हें गांव में ही ज्ञान के व्यापक संसाधन उपलब्ध कराना है। इस ऐप से अब तक 752 पुस्तकालय जुड़ चुके हैं, जबकि 2,80,000 पुस्तकों के भंडार वाले 4 बड़े पुस्तकालयों को ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ जोड़ा गया है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसका संज्ञान लेने और बलूच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा है कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके असर से आज गंगा के पश्चिमी भाग और उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this house by the last day of the first week of the winter session. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The session, which began on the 20th of last month, will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both the Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. President Draupadi Murmu will confer the Sangeet Natak Akademi Fellowships and Awards for 2024 and 2025 over 115 artists in a special investiture ceremony in New Delhi today. Unit Minister of Culture Gajendra Singh Shekhawat and Minister of State for Culture Rao Inderjeet Singh will remain present on the occasion. The protest by candidates over alleged irregularities in the 14th JPSC examination in Jharkhand is continuing. A report.
2: The candidates are fully mobilized, demanding an impartial investigation into the alleged discrepancies in the 14th JPSC exam and action against those responsible. In this regard, an important meeting of the core committee of the JPSC-JSSC Reform Forum was held in Ranchi. The future strategy of the movement was discussed in detail during the meeting, and the students reiterated their resolve to continue their protest until their demands are met. Meanwhile, the issue of the lathi charge on protesting students a few days ago has now reached Delhi. BJP MPs staged a protest in the Parliament complex, strongly opposing the Jharkhand government and reiterating their demand for a CBI probe into the entire controversy. For Akashvani News, this is Poonam Kerketa reporting from Ranchi.
1: The Punjab and Haryana High Court has stayed the appointment process for the post of 454 pharmacy officers over allegations of a paper leak in recruitment, the examination for which was held on the 19th of last month. The posts were advertised by Baba Farid University of Health Sciences in Faridkot. The next hearing of the case has been scheduled on the 17th of next month. Prime Minister Modi today said that a person who possesses the determination, perseverance and courage to turn adverse circumstances into favorable ones is never defeated by the challenges of life. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi highlighted that through continuous effort and unwavering resolve, a person moves forward and ultimately achieves success. The India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gangetic West Bengal and Orissa today, following the formation of a low pressure area over the North Bay of Bengal. According to IMD, places over Chhattisgarh are expected to experience heavy to very heavy rainfall till tomorrow. Pakistan Air Force carried out airstrikes in Balochistan's Surab district yesterday, killing more than 30 civilians, including women and children, and injuring dozens. In a statement, Republic of Balochistan Group claimed that Pakistani Army and Air Force carried out extensive bombing and firing in civilian areas of Gudar locality. Sensex opened 0.19% higher at 78,112. Nifty slipped marginally by 0.02% to 24,432. And in sports, the Board of Control for Cricket in India, BCCI, and the Afghanistan Cricket Board, ACB, have confirmed that Afghanistan will host India for a three-match T20 international series at the Arun Jaitley Cricket Stadium in Delhi from the 13th to the 17th of next month. The series is part of Afghanistan's future tours program and will be played in India, where Afghanistan has hosted its home fixtures in recent years. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 10:10 और 16 सेकंड्स हो चुके हैं. साथ ही साथ वक्त हो चुका है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम, हमारे अगले कार्यक्रम आपकी पसंद का. इस कार्यक्रम को की शुरुआत करने से पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश.
4: आज तो पार्टी चाहिए.
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे.
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी.
4: पिज्जा पार्टी ये. चल अपना कार्ड और पिन दे.
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी. आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें.
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग.
7: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: जी हाँ, आरबीआई तो कहता ही है कि जानकार बनिए और सतर्क रहिए. साथ ही साथ हम भी कहते हैं और हमारा ये कार्यक्रम है ना, वो भी यही कहता है कि जानकार बनिए और सतर्क रहिए ताकि आपका पैसा जो है ना वो आपके पास सुरक्षित रहे. जी हाँ, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद में. और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर ढेर सारे गीतों के साथ और आपकी संदेशों के साथ मैं हूं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना. आप सभी का करती हूं प्यार भरे दिल से बहुत ही प्यार भरा स्वागत.

जी हाँ, आज का टॉपिक जो है ना वो इस गाने में ना वो छिपा हुआ है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आपके संदेशों को भी उसी टॉपिक से जुड़े सवालों या फिर बातों या फिर यादों या फिर जानकारियों के साथ जोड़ेंगे अपने इस कार्यक्रम में। अगर समझ में आ गया है तो बताइए, थोड़ा सा और गीत सुनते हैं। अगर नहीं आया है तो मैं हूं ना यहाँ पर बताने के लिए आप सभी को।

और दोस्तों आपसे ना एक गुजारिश है, मेरे सभी श्रोताओं से एक गुजारिश है कि आप प्लीज अपना एक ही संदेश हमें भेजें, रिपीट ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें, और शिकायतें कर सकते हैं बट रेलिवेंट। अगर आपका मेल शामिल हो गया है तो बनता ही नहीं शिकायत करना, और अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट करें, हमारे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए, ताकि आपका मेल जब शामिल हो तो आप अपना नाम सुन सके, अपना संदेश सुन सके।

किसी का नहीं आया। अभी फिलहाल शुरू हो चुके हैं मेल्स आने कि हमें शामिल कर लीजिए, हमें शामिल कर लीजिए, गुड मॉर्निंग और ये सब चीज़ें आ रही हैं, बट अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आज हम बात करेंगे नाम पर। जी हाँ, आपके नाम के पीछे छिपी कहानी पर, या फिर आपका घर में कोई निकनेम है, क्या आपको वो पसंद है या नहीं है, तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। नाम किस तरीके से रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं, उनका रिफ्लेक्शंस क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी पे होता है, किसकी पसंद से रखे जाते हैं, ये सब बातें आज हम करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। और आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी राय कि आखिर आपका नाम किसने रखा, क्यों रखा, उस नाम का मतलब क्या है, क्या आपको वो नाम पसंद है, और डू यू हैव योर निक नेम एट योर होम, क्या आपका कोई निक नेम है जो प्यार से लोग आपको बुलाते हो और बड़े होते होते वो निक नेम ही रह जाता है। तो कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, अगर है तो जल्दी जल्दी बताइए हमें।

हरजिंदर सिंह भाटिया जी का संदेश आए, कहते हैं वार्चना जी पहला नगमा सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है, आज का दिन तो बन गया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप मेरा भी दिन बना दीजिए सर, मेरा भी इस कार्यक्रम को बना दीजिए, बहुत बढ़िया सा कार्यक्रम, और जल्दी से बता दीजिए आपके नाम के पीछे की कहानी, आपका कोई निकनेम है, पसंद है, नहीं है, कब से चलता आ रहा है, कब तक चला है आपका वो निकनेम, कब तक लोग आपको आपके निकनेम से बुलाते रहे हैं, ये बाहर मतलब जो भी अर्थ है आपके नाम का, मीनिंग है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए इससे पहले कि कार्यक्रम खत्म होने की कगार पर चला जाए, तो बताइए फटाफट से। संदेश आप हमें भेजेंगे, ईमेल आईडी है iprradio@gmail.com iprradio@gmail.com पे फटाफट से भेजिए, वैसे आप सबको पता है ये आईडी, तो जल्दी जल्दी भेजिए।

0: सुधाकर राजे यादव देशमुख जी का हमें संदेश मिल रहा है मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। साथ में इनके हैं प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वत, प्रणाली सानवे, हर्षिता। और ये कहते हैं कि मेरा नाम वैसे तो सुधाकर है लेकिन लोग मेरे को बापू कहकर पुकारते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए अच्छा तो बहुत है, बापू कहना बहुत अच्छी बात है, बहुत कहते हैं रिस्पेक्टफुल जो है वो प्रोनाउंसिएशन है, आपको जो बुलाते हैं संबोधन है एक्चुअली में। तो इसके पीछे ये बापू आपको बुला रहे हैं तो इसके पीछे की कहानी क्या है, अगर वो भी थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर कर दें तो मजा आ जाएगा।
1: एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है पर किसी से शायद डर

0: के नाम का असली मतलब क्या है। और कभी आपने ये सोचा है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसे अपना नाम बताकर ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। किसी व्यक्ति का नाम अक्सर उसके परिवार की उम्मीद, भावना, परंपरा या फिर किसी खास पर्सनालिटी की याद से जुड़ा होता है। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो नाम का अर्थ देख कर, समझ कर नाम चुनते हैं। तो कभी कभी किसी जो उनके फेवरेट कोई पर्सनालिटी है, रिश्तेदार है, देवी है, देवताएं हैं, या फिर कोई भी हो, कोई हिस्टोरिकल जो वो पर्सनालिटी होती है, उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम जोड़ते हैं, नाम रखते हैं एक्चुअली में। तो ऐसी भी कोई कहानी हो आपके पास कि आपका नाम किसी चीज पर, किसी पर्सनालिटी पर, किसी याद पर, किसी फिल्म पर, और मतलब किसी अच्छे से अर्थ के साथ आपका नाम अगर आपके पेरेंट्स ने रखा है, और निकनेम भी अगर आप क्या होता है ना, कई बार निकनेम आपके रियल नेम से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो ऐसा भी कुछ होता है आपकी लाइफ में, हुआ है, तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
1: मैं अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है
0: आज का विषय है नाम। जी हाँ, ये संदेश हमें मिला है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ की ओर से, और इन्होंने विषय वाकई में जो है ना वो जज कर लिया, गैस कर लिया कि आज का विषय है नाम। और इन्होंने साथ में अपनी फरमाइश भी भेज दी अमी कि भाई जो गीत है वो इनकी पसंद का इनको सुनवा दिया जाए। तो चलिए, आपके सही आंसर देने पर आपको इनाम के तौर पर ये गीत हम यहाँ से सुनवाते हैं।

अगला संदेश हमें मिल रहा है संदीप मक्कर जी का। ये कहते हैं, जिसको मेरा काम पसंद है, स्वभाव पसंद है, उनको मेरा नाम पसंद है। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से ये हमें लिख रहा है। वाकई में अगर आपका स्वभाव पसंद है तो वैसे तो नाम इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी हमारी पहचान हमारा नाम होता है। तो दोस्त, अगर उसके पीछे की कोई अच्छी सी कहानी है, याद है, तो वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे तो बड़ा मजा आएगा।

हरजिंदर जी का एक और मैसेज हमें मिला है, कहते हैं मेरे बचपन का नाम सोनू है, ये मेरे दादाजी ने नाम दिया है और आज भी मुझे इस नाम से पुकारा जाता है और मुझे अच्छा लगता है। वाकई में बहुत ही प्यारा सा नाम है, सोनू, मोनू, टीटू और बहुत सारे नाम जो होते थे ना हमारे, मतलब निकनेम के तौर पर हमें वो दिए जाते थे और वो ता उम्र हमारे साथ रहते हैं इवन। तो ये जो आपका सोनू प्यारा सा नाम है, ये भी आज आपके साथ है तो बहुत अच्छी सी बात है, और ये आपके दादाजी ने आपको दिया, ये बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे साथ साझा की। और अब बस ऐसे ही चाहते हैं कि आप भी अपनी, बाकी जो हमारे श्रोता हैं वो भी कुछ ऐसी ही यादें और अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करें।

अगला संदेश हमें मिल रहा है मस्किन दादा का और ये कहते हैं, अर्चना जी नमस्कार, मेरा नाम बचपन में मेरी माँ ने डब्बू सम्राट रखा था, मुझे पसंद आया, शो सुपर है। अच्छा फ्लो फ्लो में मैं ये भी बोल गई कि शो सुपर है, ये तो आप कह रहे हैं शो सुपर है, वाकई में बहुत ही खूबसूरत नाम आपकी मम्मी ने आपको दिया था। और डब्बू पता है मैंने भी अपने बचपन में बहुत बार ऐसा बहुत सारे नाम है जो सुने हैं, डब्बू, टीटू, मतलब बहुत सारे, अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वक्त पे कभी कभी कोई चीज़ें हैं ना जो याद नहीं आती हैं, तो फिलहाल मुझे तो याद नहीं आ रहा, बट आपको तो बैठे हुए हैं वहाँ पे, आप अपने घर में बैठे हुए आप हमें बताइए, तो आपने बताया भी।

मैं बाकी जो हमारे श्रोता उनसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि वो भी बताएं कुछ ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें हमारे साथ शेयर करें, साझा करें। ये लिख रहे हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन और डब्बू सम्राट।

0: हर बाबा।
1: अरे वाह, आज हमें अनु जी का संदेश आया है और ये कह रही हैं कि हम तीन बहनें हैं घर में, ऐसे बुलाया जाता है बड़ी दीदी मेरी बड़ी बहन को, मैं दूसरे नंबर पे हूँ तो मुझे मझली दीदी या बीच वाली दीदी के नाम से बुलाते हैं। ये लिख रही हैं मुंबई से अनु बरजातिया, शमशुल खान, अनुराज बेनारा। आई होप अनु आपने मुझे भी पहचाना होगा और हमारी और आपकी मुलाकात तो बहुत पुरानी है, जान पहचान भी बहुत पुरानी, और आज आपने ये संदेश भेज के ये साबित कर दिया है कि हमारा रिश्ता भी बहुत बहुत पुराना है और बहुत सुंदर है, और ये जो आपने अपनी यादें हमारे साथ शेयर की हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।

अजीत भफ्तर जी का संदेश हमें मिल रहा है, ये कहते हैं मेरे मौसी जी ने मेरा नाम अजीत रखा है और इसी नाम से ही चलता है। अजीत का मतलब है जीतने वाला। वाह क्या बात है, देखा कितने प्यारे लिसनर्स हैं हमारे, कितने प्यारे श्रोता हैं हमारे, नाम के अर्थ के साथ अपने नाम की कहानी भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वीरम गांव गुजरात से अजीत भफ्तार जी ने हमें ये संदेश भेजा है, थैंक यू सो मच ये बात हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारी बात को रखने के लिए कि इस कार्यक्रम में आपने और चार चांद लगा दिए इस तरीके से हमारे प्रश्न का उत्तर दे के।

बोधराज खोरवाल जी का एक बहुत ही इनोसेंट सा मैसेज मैं इसको कहूंगी। ये कहते हैं कि हमारे नाम के पीछे तो कोई कहानी है ही नहीं, तो हम क्या लिखें, कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल, कुछ कहानी नहीं भी है तो आप हमें संदेश बेशक भेज सकते हैं हमारे दोस्त, और आपने भेजा भी है, यही बहुत है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। आप लिख रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से, साथ में कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश आपके साथ हैं।

श्रुति छाबड़ा जी ने हमें संदेश भेजा है और ये कहाँ से भेज रहे हैं, नई दिल्ली से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये कहते हैं कि स्वीटी मेरा निकनेम है जो मेरी माँ ने रखा था, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे बहुत पसंद है और अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बाय नेचर मैं वैसा ही हूँ। ओ वेरी नाइस, कहते हैं ना कि आपके नाम में आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल, बड़े बुजुर्गों का कहना है, सुनने भी में भी अगर आया हो, अगर आप किसी का नाम रखते हैं तो जो आप नाम रखते हैं उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी पर्सनालिटी में अक्सर देखा जाता है। अगर आपका नाम स्वीटी है तो आपका नेचर सामने वाला तो जज करेगा ही, आपके अंदर खुद से भी ये चीज़ें आएंगी कि आप वाकई में एक बहुत ही स्वीट सॉफ्ट नेचर के हैं। और अगर आपका नाम कुछ गुस्से वाला है तो आपका जो नाम है वो आपकी पर्सनालिटी में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे थोड़ा सा ही सही, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ कुछ रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनालिटी में आपके नाम का ज़रूर आता है। तो थैंक यू सो मच स्वीटी जी, आपने हमें जो संदेश है हमें भेजा है, आपके साथ हैं इंद्रजीत कौर छाप।

अगला संदेश हमें मिला है सुमेरा परवीन जी का। ये कहते हैं, अर्चना जी मेरे नाम की मीनिंग है खुश नसीब और मैं वाकई में खुश नसीब हूँ जिसे आप जैसे दोस्तों का साथ मिला है और खास तौर पर से मेरी शरीक हयात मुझे मेरी हर बात का ध्यान रखती है। इससे ज्यादा मेरे लिए खुश नसीबी की क्या बात हो सकती है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा जो नाम है अगर आपको मिला है और आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ जी रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी आपके नाम के अकॉर्डिंग है, तो इससे बड़ा गुड लक क्या होगा आपकी लाइफ के लिए दोस्त। और एक दूसरा गुड लक ये भी है कि आप हमसे जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम के जरिए, अपना संदेश हमें भेजा है और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ में आपके हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान अबान और समस्त अब्बासी परिवार।

देखिए गीत जो पीछे चल रहा है ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। वाकई में नाम होता है कभी कभी जो है ना भूल जाते हैं लोग, लेकिन चेहरा जो है वो हमेशा याद रखते हैं, और उस चेहरे में छिपी आपकी शख्सियत, आपका व्यवहार हमेशा लोगों के दिल में जगह बना के रखता है, आपकी याद ताज़ा रखता है। तो बताइए आपके नाम के पीछे की कहानी, कोई निकनेम प्यारा सा जो आज तक आप चला रहे हैं अपने नाम के साथ, और चल रहा है, एक्चुअली में चल रहा है, और आपके नाम का अर्थ मीनिंग क्या है, क्या कहानी है, क्या आपको वो नाम पसंद है? बिल्कुल, नाम अपना बिल्कुल पसंद होता है, सबको पसंद होता है, लेकिन क्या खास बात है आपके नाम में, कुछ हो तो

अगला संदेश हमें मिल रहा है गुलाब दास मानिकपुरी जी का। ये कहते हैं, अर्चना जी हमारा नाम किसने रखा ये तो पता नहीं। परिवार में बहुत से लोग रहते हैं, किसके जुबान से निकला शब्द हमारा नाम बन गया क्या मालूम, लेकिन आज की तारीख में कैलेंडर देखकर नाम रखा जाता है। लगन के अनुसार हमारे परिवार में हमें बड़े गुड्डू के नाम से बुलाया जाता है और कोई हमारा नाम नहीं लेता, यही हमारा निकनेम है। बिल्कुल सर, आपका जो नाम है ना, वाकई में लग रहा है किसी दमदार पर्सनालिटी का नाम है, और जिसके आगे उनका नाम नहीं बस उनकी शख्सियत ही काफी है किसी को समझाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कि बस वो आ रहे हैं साहब। और वाकई में आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो नाम है वो लग्न नक्षत्र दिशा ग्रह ये सब चीज़ें देख कर रखे जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो अपने बच्चों के नाम है किसी पर्सनालिटी पे, बहुत पुरानी जैसे ऐतिहासिक कोई कैरेक्टर रहा है, किरदार रहा है, उस पर रखते हैं। कभी कभी फिल्मों को देखकर फिल्मों के हीरो के नाम पर लोग अपने बच्चों के नाम रख देते थे। कई मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में देखी होंगी, तो आई होप आपने भी ऐसा कुछ फील किया होगा या आपको भी कुछ मालूम होगा। चलिए हम उसके बारे में तो नहीं बात करते कि किसी के बारे में आप बताएं, लेकिन आप अपने बारे में बताएं कि किस तरीके से आपका नाम आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और आपका क्या निकनेम है। आप अभी भी उस निकनेम के साथ जाने जाते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं नाम से जुड़ी हुई है, तो जो भी बात आपको याद आती है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लिख रहे हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से, साथ में है राजा दास मानिकपुरी और रानी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूँ आपके साथ इस कार्यक्रम में आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। और फिलहाल वक्त हो चुका है आपको वक्त से अवगत कराने का। वक्त है 10:38 और पूरे 50 सेकंड्स। जल्दी जल्दी भेजिए अपने संदेश, कार्यक्रम बहुत मज़ेदार चल रहा है, संदेश भी बहुत मज़ेदार आ रहे हैं, थोड़ा सा और मज़ेदार बनाइए इसे।

देखिए हमारे कितने प्यारे प्यारे श्रोता है ना, जिनका अगर कोई नाम भी नहीं है ना, वो भी हमारे हमें जो है ना संदेश भेज रहे हैं कि हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, निकनेम ही नहीं है। ऐसी एक संदेश हमें मिला है रमेश चौहान जी का, ये कहते हैं हमारा कोई निकनेम नहीं है जी। लिख कहाँ से रहे, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय, हिमांश, आपका निकनेम नहीं है। निकनेम नहीं है लेकिन नाम तो है ना दोस्त, तो उसके पीछे की कहानी क्या है वो भी तो हमें बताइए ना, प्लीज बताइए कि आपका ये जो नाम है ना, अब जरूरी नहीं कहानी हो, किसने रखा, किसकी पसंद था, आप ये भी बता सकते हैं हमें कि आपका नाम आपका आपकी दादी ने रखा, बुआ ने रखा, क्योंकि एक रिचुअल होता है हम मतलब जब नाम रखा जाता है बच्चे का, तो एक रिचुअल होता है कि बुआ या फिर दादी या फिर नानी या फिर मासी, कोई ऐसे एक फैमिली का कोई एक मेंबर होता है जो बच्चे का नाम रखते हैं और वो अपनी पसंद का नाम रखते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही कुछ अगर है तो बताइए,

डाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ। सर अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं ना, तो आपने रेलिवेंट कुछ भी बात नहीं कही अपने संदेश में, प्लीज़ भेजिए कुछ और ताकि और मज़ा आए, ताकि और मज़ा नहीं मज़ा आए इस कार्यक्रम को पेश करने में और आपको सुनने में। धर्मेंद्र छिपा जी का संदेश हमें मिला है, ये कहते हैं आपकी पसंद आदरणीय मैडम जी। मैडम जी नमस्कार, नाम तो एक पहचान होती है, निकनेम भी रखते हैं जैसे बबलू, पिंटू, रिंकू, पप्पू, मोनू, टोनू, सोनू, ये बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे हमारा ना निकनेम जो है बचपन से पप्पू था, आज भी बचपन के दोस्त मुझे पप्पू कहते हैं, अब नाम के पीछे उर्फ भी लगाते हुए संबोधित करते हैं। बाकी में ये एक बहुत अच्छा सा जो बात है ना, अच्छी सी बात आपने, एक अच्छा सा पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे एलैबोरेट किया है, बताया है कि अब अगर किसी का नाम निकनेम के साथ संबोधित करना हो तो उसके साथ उर्फ लगाकर आप उसको बता सकते हैं या किसी दूसरे थर्ड पर्सन को बता सकते हैं कि हम उसका नाम बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ आपके ऑफिशियल नेम से आपको जानते हैं, आपके निकनेम से नहीं जानते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके निकनेम से जानते हैं, आपके ऑफिशियल नेम से नहीं जानते हैं। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए उर्फ के साथ उस निकनेम को संबोधित करके आप उस इंसान की पहचान बता सकते हैं। बहुत अच्छा संदेश आपने हमें भेजा, गोपालगढ़ राजस्थान से कपिल, ईशान, पूजा परिहार साथ में इनके हैं।

अगला संदेश हमें मिला है सतीश अनेजा जी का, और ये हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ऑलरेडी ये 3-3 मैसेजेस भेज चुके हैं जो ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं। बट कोई बात नहीं दोस्त, एक बार और प्यारा सा मैसेज हमें जरा ड्रॉप कर दीजिए, और अगर आपके नाम के पीछे भी कोई कहानी है, कोई बात है, कोई याद है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। और आप कर सकते हैं, ये भी मैं जानती हूँ आप जरूर करेंगे, तो प्लीज कीजिए। इसके बाद अगला संदेश हम ले रहे हैं संदीप मक्कर जी का। ये कहते हैं, मेरे घर का नाम राजू है और राजू नाम राज कपूर की फिल्मों में अक्सर राज कपूर का होता है और उनका डायलॉग याद आ गया है, राजू ये दुनिया उल्टी है तो सीधा देखने के लिए उल्टा होना पड़ता है। वाह, कितनी अच्छी बात आपने अपने संदेश में हमें कही है। और ये लिख कहाँ से रहे हैं, साथ में इनके ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरैया, जालंधर से ये हमें संदेश लिख रहे हैं। और इसके साथ ही ना एक और प्यारा सा गाना राज कपूर जी की आपने याद दिला दी, तो बस अब तो गीत बनता है उनके लिए।

0: हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल रहा हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी।
2: देखिए हमारे श्रोता जो है ना, कितने एक्टिव है ना। अगला संदेश फौरन हमें भेज दिया, जिनसे हमने शिकायत की कि भाई आपका जो संदेश है वो वाकई में कहीं मिस हो गया है, तो आप हमें एक बार रिकॉल कर दीजिए। तो उन्होंने संदेश भेजा हमें, कहते हैं कि नमस्कार रचना बहन जी, प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है, थैंक यू सो मच सर। ये कहते हैं कि हर नाम के पीछे उसका अर्थ जरूर होता है जो बहुत सार्थक होता है। मेरा कोई निकनाम

नहीं है। जब पैदा हुआ था तभी पंडित जी ने नामकरण किया था। जब बड़ा हुआ तो अपने नाम के मतलब का पता चला। सतीश, सती जमा ईश। बिल्कुल, इन्होंने संधि विच्छेद करके जो है ना अपने नाम का अर्थ हमें भेजा है। ये कहते हैं इसका मतलब है ईश्वर को समर्पित होना, और यकीनन खुद को समर्पित भी कर रखा है क्योंकि सब कुछ उसी के दम पे है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत संदेश सतीश जी आपने हमें भेजा है, और अपने नाम के अर्थ के साथ हमें आपने संदेश भेजा है। एंड आई एम सो सॉरी कि आपका संदेश जो वो कहीं मिस हो गया है, कहीं स्टक हो गया है मे बी। तो एनीवेज, जो अब ये मिला है संदेश उसके लिए थैंक यू सो मच, इतना खूबसूरत संदेश हमारे इस शो में भेजने के लिए और हमारे इस शो में जुड़ने के लिए।

पंकज शर्मा जी का अगला संदेश हमें मिल रहा है। ये कहते हैं, दीदी जी मेहरबान, मेरी नानी जी राजा था जी सुधीर नूतन जी, हमें बहुत प्यारे प्यार करती थी नानी हमारी जी। मेरा बाम समझ नहीं आया सर कुछ, ये संदेश था थोड़ा सा और क्लियरली आप इसको लिखकर भेजेंगे तो शायद समझ पाने की एक और कोशिश मैं कर सकूं। तो अगर हो सके तो एक और संदेश क्लियरली लिखकर भेजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं।

एसपी गोयल जी का संदेश हमें मिल रहा है, कहते हैं शुरू में मेरा नाम सत्यनारायण रखा गया था और प्यार से सब मुझे सब सतना कहते थे, पर कब नाम सत्य प्रकाश हो गया पता ही नहीं चला। ये तो एक बहुत ही कहते ना कि बहुत अच्छी सी बात हो गई, सत्यनारायण से सीधा सत्य प्रकाश चेंज ही हो गया आपका नाम सर, बहुत बढ़िया बात। अब मैंने अपने नाम के आगे अपने गांव सनोठ के कारण सनोठिया लगा लिया है। वाकई में एक बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि कई बार आप अपने नाम की पहचान अपने गांव, अपने स्टेट, अपने शहर के आधार पर रखते हैं। आप जैसे कहते हैं ना कि आपने जैसे सत्यनारायण सनोठिया, ऐसे कई लोगों के नाम सुने होंगे आपने कि दहलवी है, लखनवी हैं, अहमदाबादी हैं, इस टाइप से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जोड़ के अपने कह सकते हैं कि अपने शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि जिससे पता चल सके कि वो आखिर किस स्टेट से, किस जगह से बिलोंग करते हैं। आप लिख कहाँ से रहे हैं आपने ये नहीं बताया, एनीवेज आपके नाम से पता चल रहा है कि आप गांव सनोठ से लिख रहे हैं जैसा कि आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल मैसेज।

अगला संदेश हमें मिल रहा है एकता नरूला जी का। ये कहती है, हाय आरजे, माय पेट नेम वाज गिवन बाय माय मामा जी एज अ फिशी फॉर द रीजन दैट आई लुक्ड लाइक अ फिश एज पर हिम। ऐसा भी होता है क्या? ये कहते हैं आगे कि इट इज एन अनयूजुअल नेम टिल डेट, आई एम सो सरप्राइज कि इस टाइप का भी कोई नाम होता है। और वाकई में अभी तक मैंने कभी ऐसा कुछ नाम नहीं सुना है। ये कहती हैं आगे, माय एक्सटेंडेड फैमिली स्टिल कॉल्स मी विद दिस नेम, ओह रियली, बट एट टाइम्स इट एम्बैरस मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बिकॉज फिशी इन इंग्लिश मीन्स दाल में काला होना। बिल्कुल, दाल में काला होना। आई होप आप ना एम्बेरस करें, ना एम्बेरस फील हो इस नाम के साथ, कुछ और प्यारा सा नाम इसके साथ जोड़ ले, फिश एंजल रख ले या कुछ और भी रख सकते हैं। नाउ एज अ ग्रोन अप आई एंजॉय हैविंग अ डिस्टिंक्ट पेट नेम। बिल्कुल, और ये लिख कहाँ से रही हमें

किशन वंजानी जी का संदेश हमें मिल रहा है, कहते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है, एक से बढ़कर एक गीत बज रहे हैं, किसी भी गीत में नाम हमारा शामिल करें। जनाब हर गीत में आपका नाम शामिल है, बस नाम के पीछे की कहानी भी शामिल करना चाहते हैं तो ज़रा सा उसके ऊपर भी अपने नजरे करम डालिए, बताइए कुछ याद, अच्छी खट्टी मीठी प्यारी सी याद अपने नाम के साथ।

सर एक ना बहुत ही प्यारा सा संदेश आया, अब ये इसको ये नहीं कह सकते कि अपने मुंह मियां मिट्टू, ये हमारे एक लिसनर हैं एसपी गोयल जी, सनोठिया जी एक्चुअली में, ये कहते हैं कि अर्चना जी आप अपना इतना अच्छा प्रोग्राम करके मुझसे चैनल का नाम नहीं लूंगी सुनना छुड़वाओगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम सब एक जैसे हैं, चाहे कोई भी चैनल के हो हम सब हैं, आप सबको सुनिए, आप सबके साथ बने रहिए। ऐसा ना हो कि उन्हें सुनने के बाद मुझे छोड़ दे और मुझे सुनने के बाद उन्हें छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उन्हें भी सुनना है मुझे भी सुनना है। और कल भी मैं आऊंगी, कल भी जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊंगी। और अगर आप कल के लिए कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते तो वो भी भेज दीजिए, जल्दी से भेज दीजिए, कल भी करेंगे हम आज की तरह ही मजेदार बातें और सुनेंगे मजेदार गीत।

10:54 हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से एक और संदेश ले लेते हैं। ये कहते हैं मल्होत्रा टीडी मोहाली से, मोहाली चंडीगढ़ से ये लिख रहे हैं हमें, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं इनके साथ में। एनीवेज इनका संदेश लेते हैं, कहते हैं डियर प्रोग्राम एंकर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम आवर साइड, आई हैव नो निकनेम बट इट माइट बी दैट समबडी मस्ट हैव फैब्रिकेटेड सम निकनेम्स ऑफ माइन। We remember our one of the friend who was specially nicknamed as a goalie, which was distorted from his surname Goyal. Goyal ka goalie bana diya. At this juncture of age, when friends meet him, call him goalie. But funny thing is that he has his younger brother also nicknamed as goalie by his own friend circle. When we call elder goalie and the younger goalie also gets confused as who has called whom, but they do not have any agony when both of them are being called as goalie. बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सा संदेश था और बहुत ही मजेदार संदेश था ये।

जी दोस्तों, आज के इस शो में बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत मजेदार मजेदार जो है ना संदेश हमें मिले नाम के लिए, नाम के ऊपर। और बहुत सारे संदेश ऐसे भी हैं जो पीछे छूट गए, जिन्हें हम ले नहीं पाए। और बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो हमसे नाराज हो गए इस बात को चलते, बात को लेकर। तो कोई बात नहीं, कल फिर आ रही हूँ मैं आपसे मिलने के लिए, तो आप तैयार रहिएगा। कल इसको ना दोबारा से स्टार्ट करेंगे। कल इस टॉपिक को अगर चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करना, तो कंटिन्यू भी करेंगे, नहीं तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। फिलहाल एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी लगान।

वक्त से अवगत करा देते हैं हम आपको, 10:57 और पूरे 15 सेकंड्स हो चुके हैं और साथ ही साथ हमारा जो है ना इस कार्यक्रम से विदा लेने का जो वक्त है ना वो भी आ चुका है। और आई होप आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, वो आपके संदेशों से मुझे पता चल रहा है कि आप बेहद पसंद कर रहे हैं इसका हमारे इस कार्यक्रम को, और कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद मुझे भी पसंद कर रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना है मुझे, कंटिन्यू करते हैं, कल फिर से मिलते हैं आपसे, आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने संदेशों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार यूं ही लुटाते रहिए, और आखिर में बस यही कहना है कि अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखें, और बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, कल फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए सुनते रहिए हमें यूं ही, और मुझे दीजिए यानी अपनी दोस्त, रेडियो दोस्त एंड होस्ट अर्चना गुप्ता को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से विदा लेने के। टेक केयर, बाय बाय।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
2: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं

0: की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
1: संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से आरंभ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में आज निजी सदस्यों के विधायी प्रस्ताव भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। झारखंड में 14वीं जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को आज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंग वस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसिलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। वे हैदराबाद हाउस में आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसका संज्ञान लेने और बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The monsoon session of Parliament will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both

0: अद्भुत तकनीकी दक्षता और नई रचनात्मक प्रस्तुति शैली विकसित करने के कारण आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। 8 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री कालीचरण के सानिध्य में शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद प्रख्यात शहनाई गुरु पंडित आनंदलाल जी एवं पंडित दयाशंकर जी से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा में अपनी मजबूत नींव स्थापित की। आपके संगीत जीवन को नई दिशा मेवाती घराने के महान गुरु संगीत मार्तंड पंडित जसराज के शिष्य बनने के बाद मिले। परंपरा की गहराइयों से जुड़े रहते हुए आधुनिक संगीत संवेदनाओं को आत्मसात करने वाले पंडित लोकेश आनंद ने अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की है जो विश्वभर के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। आपको आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठित टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कई प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख सम्मान आप हासिल कर चुके हैं। हमारे दूसरे माननीय अतिथि कलाकार श्री गंदीकोटा दुर्गा प्रसाद जी हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो में चयनित ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं कर्नाटक म्यूजिक में। पूरे भारतवर्ष में अनेक विशेष उत्सवों में आप अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं। अपने गुरु श्री वी भास्करैया गारू जी के सानिध्य में नादस्वरम की प्रस्तुति के अलावा आपने अनेक विशिष्ट जनों के साथ प्रस्तुति दी है। श्री वी हरिबाबू लेक्चरर इन नादस्वरम एवं श्री विनुकोंडा सुब्रमण्यम ताविल ए टेप टॉप आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो के सानिध्य का सौभाग्य आपको मिला है। अब बात कर लेते हैं संगत कलाकारों की। हमारे बीच पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी हैं जो कि तबले पर संगत कर रहे हैं। आप टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के। आप बनारस और फरुखाबाद घराने को रिप्रेजेंट करते हैं। देश दुनिया में विभिन्न मंचों पर प्रस्तुति देने के अनुभव के साथ ही आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान हासिल किए। श्री के एकेश्वरा नटराजन, आप तविल ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं ऑल इंडिया रेडियो के। विशेष आयोजनों पर आपने पूरे भारतवर्ष में मंच प्रस्तुतियां दी हैं। विशेष रूप से श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में ब्रह्म महोत्सव, ब्रह्म उत्सवम और कल्याण उत्सवम के दौरान आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा भारत जश्ने आजादी के रंग में रंगा हुआ है और आज की प्रस्तुति भी उत्तर और दक्षिण भारतीय संस्कृति का फ्यूजन है। तो इस फ्यूजन का आनंद लेने से पहले कुछ जिज्ञासाएं हम सबके जहन में होंगी, आइए उनको भी शांत कर लेते हैं। तो कुछ सवाल, सबसे पहले पंडित लोकेश आनंद जी, आप बताएं शहनाई और कितने सप्तक का साज है, इसके बारे में कुछ बताएं।
1: शहनाई आज के समय में बजाने वाला सबसे मुश्किल साज है और ये केवल डेढ़ सप्तक का साज है, सा से लेकर के सिर्फ पंचम तक ही इसका हो पाता है।
0: दुर्गा प्रसाद जी, सवाल आपसे नादस्वरम के विषय में बताएं।
2: नादस्वरम सबसे पवित्र मंगल वाद्य है, मतलब कर्नाटक म्यूजिक के लिए तेलुगु और तमिल में सबसे पवित्र। पहले नादस्वरम का सबसे बड़ा प्रोग्राम्स में पहले नादस्वरम प्ले करेगा, उसका बाद में पूरा पॉजिटिव एनर्जी होते हैं
0: जी। पंडित लोकेश आनंद जी, जो राग आज आप हमें सुनाने वाले हैं उसका परिचय हम जानना चाहेंगे।
1: जी, आज हम लोग राग मधुमत सारंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं और ये काफ़ी थाट से है और इसका वादी संवादी रे और पा है
0: जी। दुर्गा प्रसाद जी, जिस राग को आपके माध्यम से हम सुनेंगे, कर्नाटक संगीत में इसका नाम और राग का परिचय क्या है, ताल का नाम क्या है?
2: जी, कर्नाटक संगीत में ये मध्यमावती राग होते, उसका कन्हर प्रिया में जन्यम होते, उसका सरिमा पनीसा सनीपा मरीसा हो गया
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सवालों के जवाब समझने के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का आनंद निश्चित तौर पर और बढ़ेगा। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। और आज की प्रथम प्रस्तुति विलंबित और ध्रुत रचना राग मधुमात सारंग में मध्यताल तीन ताल और ध्रुत लय तीन ताल में। कलाकारों से अनुरोध, प्रस्तुति आरंभ करें।

शहनाई और नादास्वरम की मधुर जुगलबंदी। स्वरांजलि कार्यक्रम में आज पंडित लोकेश आनंद और गांधीकोटा दुर्गा प्रसाद जी की प्रस्तुति आपके समक्ष। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी और तवील पर के एकेश्वरा नटराजन। इस कार्यक्रम का आनंद यूट्यूब के माध्यम से भी लिया गया, जिसके लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया प्रकाश थपलियाल, मनीष के आनंद, सुशील कुमार भटनागर, उपासना पाटियाल, सुनील कुमार सेन, गौरव सेन। साथ ही प्रस्तुति सहयोग रहा विशाल कुमार और दिव्या का। हमारे साथियों के लिए करतल ध्वनि। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी स्पर्शिता श्रीवास्तव और प्रदीप अग्रवाल। इसी के साथ मुझे यानी पूजा शुक्ला को स्वरांजलि कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। कुछ ही समय पश्चात समाचार। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के ठीक 12 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
2: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश

0: जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
1: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has been adjourned sine die. The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, the Tribunals Reforms Bill 2026, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, and the Kerala Alteration of Name Bill 2026 were passed. However, the session also saw repeated disruptions over the issue of students' protests over the NET paper leak, alleged police action against protesting students, and alleged anomalies in Ayodhya Ram Temple donation. Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfil the country's growing demand for critical minerals. The bill also seeks to take under its control the regulation of mineral-bearing lands having mineral contents in accordance with the parameters prescribed under the Mines and Minerals Development and Regulation Act. The BJP today accused the opposition parties of ignoring the issue faced by students in Punjab and Jharkhand. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi claimed that the opposition parties are creating a ruckus in Parliament only to avoid the questions on student issues of Jharkhand and Punjab. The spokesperson also alleged the senior Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has remained silent on the Jharkhand students' issues. The Calcutta High Court has cancelled all other backward classes or OBCA and OBCB certificates issued under the revised rules introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. The court held that certificates issued under the earlier system have lost their validity. The OBC controversy dates back to the period after 2010, when the then Trinamool Congress government divided OBC communities into two categories, OBCA and OBCB. Allegations of irregularities and corruption in the issuance of OBC certificates subsequently led to legal

آنگن. घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप हमें सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस बस आने ही वाला है, बस एक दिन और बाकी है। और जब हम देश की बात करते हैं तो हमारा देश भारत अपनी विविधता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत की मिट्टी में अनेक वीरों और महान विभूतियों ने जन्म लिया। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं और परंपराएं होते हुए भी हम सब एक हैं। और हिमालय से लेकर समुद्र तट तक की प्राकृतिक सुंदरता तो देखने लायक है। और हमारी संस्कृति, त्यौहार और परंपराएं भारत की पहचान है। भारत ने विज्ञान, शिक्षा, कला, खेल के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और खास तौर पर तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। और हमें अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। और हमें गर्व है कि हम हैं भारतीय, हमारा भारत महान है और हमेशा महान रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे माँ लक्ष्मी अय्यर को, फिल्म थी फना। और अब बात कुछ करते हैं सावन के खुशनुमा मौसम के एहसास की, क्योंकि सावन का मौसम तो चल रहा है और सावन का महीना आते ही जैसे मौसम ही नहीं हमारा मन भी बदल जाता है। आसमान पर छाए काले बादल, मिट्टी से आती सौंधी सौंधी खुशबू, सावन अपने साथ एक अलग ही जादू लेकर आता है। कहते हैं ना, कुछ मौसम सिर्फ मौसम नहीं होते, सावन भी कुछ ऐसा ही है। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बचपन याद आता है।

जाता है। कागज की नाव बनाकर पानी में बहाना, बारिश में भीगने के लिए बहाने ढूंढना और फिर माँ की डांट से बचने के लिए चुपके से कपड़े बदल लेना, है ना? मजा आता ना? और सावन की बारिश में एक खास बात है, ये सिर्फ धरती को नहीं भिगोती बल्कि मन को भी भिगो देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो और पेड़ पौधे खिल उठते हैं, वातावरण में एक नई ताजगी भर जाती है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर कभी कभी जिंदगी में खुश रहने के लिए बड़ी वजहों की जरूरत नहीं होती। लेकिन सावन कहता है, कभी बारिश में खुद को महसूस कीजिए, मिट्टी की खुशबू को अपने भीतर उतरने दीजिए, पेड़ों की हरियाली को देखिए और अपने पुराने किसी खूबसूरत पल को

व्यक्ति ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो और पेड़ पौधे खिल उठते हैं, वातावरण में एक नई ताजगी भर जाती है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर कभी कभी जिंदगी में खुश रहने के लिए बड़ी वजहों की जरूरत नहीं होती। लेकिन सावन कहता है, कभी बारिश में खुद को महसूस कीजिए, मिट्टी की खुशबू को अपने भीतर उतरने दीजिए, पेड़ों की हरियाली को देखिए और अपने पुराने किसी खूबसूरत पल को

और अब बात करते हैं कुछ महिला सशक्तिकरण के विकास की, यानी कि आज बात एक ऐसे विषय की जो सिर्फ महिलाओं के जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है, यानी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी देना है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो वह अपने परिवार के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना, व्यवसाय और कला हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन सशक्तिकरण की असली शुरुआत तब होती है जब महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले और उन्हें अपने फैसले करने का खुद अधिकार प्राप्त हो। हमें समझना होगा कि महिलाओं का विकास पुरुषों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। एक सशक्त महिला केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए खास तौर से एक रास्ता बनाती है। इसीलिए बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, समान अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सभी हमारे विकास की मजबूत नींव हैं। तो आइए हम एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां हर महिला कह सके कि मेरी पहचान मेरे सपनों से है, मेरी उड़ान अपनी है और मेरे फैसलों की आवाज़ मेरी अपनी है। याद रखिए, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और देश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ता है। लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में गीत फिल्म है अनोखा रिश्ता।

दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत करते हैं हम। आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

दोस्तों बात करते हैं कुछ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की। कहते हैं जहां स्वच्छता होती है वहीं स्वास्थ्य और खुशहाली अपने आप चली आती है। स्वच्छता सिर्फ हमारे घर की सफाई तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमारे आसपास के वातावरण, हमारी गलियों, सड़कों, नदियों और पूरे देश की जिम्मेदारी है। हमारा भारत सभी स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है जब हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों को गंदा ना करें। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव की शुरुआत होती हैं। दोस्तों गंदगी केवल देखने में खराब नहीं लगती, बल्कि ये कई बीमारियों को जन्म देती है। दूषित पानी जमा हुआ, कचरा, मच्छरों को बढ़ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरा बन सकता है। और स्वच्छता की शुरुआत आखिर कहाँ से हो, ये बात बहुत जरूरी है। यानी हमसे, हमारे घर से और हमारे परिवार से। बच्चों को बचपन से ही स्वच्छता की आदत सिखाएं, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। सबसे जरूरी बात खुद की, यानी कि स्वच्छ रहें और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। याद रखिए, सिर्फ सरकार के प्रयासों से देश स्वच्छ नहीं बन सकता, इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। और जब भारत स्वच्छ होगा तो बीमारियां कम होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। तो आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें कि गंदगी नहीं करेंगे ना करने देंगे, स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे और अपने भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और उसमें अपना योगदान देंगे। क्योंकि स्वच्छ भारत जो है वो सिर्फ एक सपना नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। और स्वस्थ भारत हम सभी के उज्ज्वल भविष्य की पहचान है।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज़ में गीत, फिल्म थी परदेश। और अब बात करते हैं कुछ फिर से सावन की। जी हाँ, सावन की झूलन की, यानी कि सावन में झूले झूलने का शारीरिक और मानसिक महत्व दोनों है, क्योंकि सावन का महीना आते ही मन में एक अलग सी उमंग जाग उठती है। चारों ओर हरियाली, बारिश की फुहारे, मिट्टी की सौंधी खुशबू और पेड़ों पर झूले सावन की खूबसूरती को और भी खास बना देते हैं। हमारे लोक जीवन में सावन और झूलों का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि झूला झूलना सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद उतना ही साबित हो सकता है जितना कि झूलने के लिए। हम सब झूले में बैठकर आगे पीछे झूलते तो हैं, लेकिन शरीर को अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए लगातार हल्की हल्की गतिविधि करनी पड़ती है। इससे शरीर का संतुलन, समन्वय और मांसपेशियों की सक्रियता बेहतर हो सकती है, खासकर जैसे कि पैरों, पेट पर और कमर की मांसपेशियां हल्के तौर पर सक्रिय रहती हैं। आज बात करते हैं इसके मानसिक महत्व की। झूले के आगे पीछे होते ही गति जो है मन को एक तरह से लय और शांति देती है। झूले का अनुभव तनाव और थकान को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ देर के लिए हम रोजमर्रा की भागदौड़ और चिंताओं से दूर होकर

वर्तमान पल का आनंद लेते हैं। और यही वजह है कि सावन के झूले हमारी यादों और भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। बचपन में दोस्तों के साथ झूला झूलना, सहेलियों के साथ सावन के गीत गाना, परिवार के साथ हंसी मजाक करना और पीपल मन में खुशियां भर देते हैं। तो क्यों ना कुछ पल मोबाइल और भागदौड़ से दूर होकर झूले की उस पुरानी प्यारी लय का आनंद लिया जाए, क्योंकि सावन का झूला सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जाता, बल्कि हमें बचपन की यादों, रिश्तों की गर्माहट और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों तक भी हमें लेके जाता है। तो चलिए चलिए चलते हैं, मिलके सावन का झूला झूलते हैं।

की सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी ऊंची इमारतों, बड़ी अर्थव्यवस्था या आधुनिक तकनीक से नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका युवा वर्ग। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा, उम्मीद और भविष्य का आधार है। जिस देश में युवा शिक्षित, जागरूक, मेहनती और जिम्मेदार होते हैं, उस देश को विकास की सह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। हमारे युवा शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, कला और सामाजिक सेवा जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज का युवा सिर्फ नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बन रहा है। स्टार्टअप से लेकर डिजिटल तकनीक तक युवा नए विचारों को नई दिशा दे रहे हैं। गांव से निकलकर छोटे छोटे सपनों को बड़े बदलाव में बदल रहे हैं। लेकिन युवा शक्ति का मतलब केवल उम्र से युवा होना नहीं है। युवा होना एक सोच है, कुछ नया करने की सोच, मुश्किलों से लड़ने का साहस और देश के लिए योगदान देने का जज्बा। हर युवा अगर ये संकल्प ले कि वे अपने ज्ञान और हुनर का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के बेहतरी के लिए करेगा तो बदलाव निश्चित है। तो आइए आज हम अपने युवाओं पर विश्वास करें और सही शिक्षा, अवसर और मार्गदर्शन दें और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक शिक्षा दें, क्योंकि जब युवा सपने देखते हैं तो देश नई मंजिलें तय करता है और जब युवा देश के लिए सोचते हैं तो राष्ट्र का भविष्य मजबूत होता है। और याद रखिए, युवा शक्ति केवल देश का वर्तमान नहीं बल्कि देश के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।

दोस्तों, बात करते हैं जल संरक्षण भविष्य के भारत की नींव की। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हमारे पास पीने के लिए साफ पानी ही ना बचे तो क्या होगा? हमारे खेत, हमारे जंगल, हमारे शहर और हमारा जीवन सब कुछ पानी पर निर्भर है। भारत में आज बढ़ती आबादी, तेजी से होते हुए शहरीकरण और बदलते मौसम के कारण जल संकट एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। हम अपने घर की इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नल खुला छोड़ने की आदत बदलें, ब्रश करते समय नल बंद रखें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें और घर में पानी के लीकेज हो तो तुरंत ठीक कराएं और बारिश के पानी को जमा करने के लिए वर्षा जल जरूर अपनाएं। और किसान भाई भी खेतों के लिए ऐसी सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कम पानी से अधिक फसल तैयार हो सके। शहरों में तालाबों, झीलों और पारंपरिक जल स्रोतों से खास तौर पर बचाना ही बेहद ज़रूरी है। याद रखिए, पानी बचाने का मतलब सिर्फ आज की ज़रूरत पूरी करना नहीं, इसका अर्थ है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार करना। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारे अकेले पानी बचाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक एक बूंद मिलकर ही सागर बनती है। और अगर हर परिवार रोज थोड़ा सा पानी बचाए तो करोड़ों लीटर पानी बचाया जा सकता है।

दोस्तों कहते हैं जल तो कल है और कल तो जल है, यानी जल तो है जीवन और जल सुरक्षित है तो भारत का भविष्य सुरक्षित है। आइए मिलकर पानी बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा भरा खुशहाल और जल संपन्न भारत बनाएं। और इसी शुभकामना के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सिमरन कौर को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मिलेंगे अगले किसी घर आंगन शो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
2: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षताओं को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला।

0: issuing special proclamations to commemorate August 15 as India Day, celebrating India's independence, rich heritage and diversity, as well as the growing contributions of the Indian-American diaspora to the American fabric. Delaware is the latest state following New York, New Jersey and Massachusetts to issue a proclamation marking India's Independence Day. Delaware Governor Matthew Mayer signed a proclamation and urged all citizens to celebrate India Day. Pakistan Air Force carried out airstrikes in Balochistan Surab district yesterday, killing more than 30 civilians, including women and children, and injuring dozens others. In a statement, Republic of Balochistan Group claimed that Pakistani Army and Air Force carried out extensive bombing and firing in civilian areas of the Gudar locality of Surab and surrounding areas, causing casualties and damage to civilian property. In Canadian Open tennis, American Brandon Nakashima defeated Spain's Rafael Jodar in the men's singles semifinals at Montreal this morning to reach the Canadian Open final. At the stock market, the Sensex was trading on a subdued note, while the Nifty was moderately lower in the afternoon session today. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का. एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
2: दी, ये देख कैसे
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग.
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है.
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
3: आई नो ना,
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ. मैं आप सभी के होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी कार्यक्रम एक ही फिल्म में. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं किसी एक चुनिंदा फिल्म के सफ़र पर. तो इसी कड़ी में आज हम आपको ले चलेंगे 70 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत और म्यूज़िकल यात्रा पर, सफ़र पर, जहाँ प्रेम की धारा झील की लहरों से भी ज्यादा गहरी है.

जी हाँ दोस्तों, झील के उस पार एक ऐसी मासूम सी मोहब्बत, हवेली के काले षड्यंत्र, आंखों की रोशनी की आस और प्यार का वो इंतज़ार जो वक्त की सरहदों को भी पार कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस सफ़र में आज हम आपको ले चलेंगे साल 1973 की उस ऐतिहासिक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर जिसने पर्दे पर प्यार और थ्रिलर की एक नई इबारत लिखी। जी दोस्तों, जब गुलशन नंदा की कलम से निकली कहानी को पर्दे पर उकारा निर्देशक भप्पी सोनी ने, धर्मेंद्र की सादगी, मैचो सादगी और मुमताज की मासूमियत ने उसमें रंग भरे, साथ ही साथ पंचमदा के संगीत ने उसमें रूह फूंक दी। तो भाई, इतिहास तो बनना ही था। तो लीजिए चलते हैं इसी सफर के अगले पड़ाव पर।

बहुत खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज़ में भी आपने सुना, फिल्म झील के उस पार से, जिसको निर्देशित किया भप्पी सोनी ने, और इस फिल्म को लिखा जाने माने लेखक गुलशन नंदा साहब ने। और उनकी खासियत होती थी उनके उपन्यासों की कि वो ड्रामा, रोमांस और सस्पेंस का एकदम बेहतरीन संतुलन होता था उनके उपन्यास में, और उन्हीं के एक उपन्यास झील के उस पार पर आधारित है ये फिल्म। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो समीर यानी कि हमारे ही मैन धर्मेंद्र जी को, एक जो कि एक पेंटर हैं, बहुत ही रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके वारिस हैं, उनको झील के एक पार रहने वाली एक नेत्रहीन गांव की लड़की नीलू यानी कि मुमताज से प्यार हो जाता है। लेकिन नीलू देख नहीं सकती है, लेकिन उसकी सादगी और आवाज़ समीर का दिल जीत लेती है। पर क्या कहानी इतनी आसान थी? जी नहीं भाई, गुलशन नंदा जी का की लिखी हुई कहानी है, तो थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा सस्पेंस तो होना लाजमी है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि इसमें शामिल थे जमींदारी के ठाट बाट, हवेली के षड्यंत्र और आंखों की रोशनी का इंतजार करती लड़की, और फिल्म के खतरनाक विलन्स जिन्हें पर्दे पर जीवंत किया था प्राण साहब और प्रेम चोपड़ा जैसे शानदार विलन्स ने।

जी दोस्तों, फिल्म झील के उस पार हमारे आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म में लेकर आए हैं हम। और आज हम लेकर आए हैं मतलब अगर हम बात करें 1970 के दशक की बात, तो उस वक्त में धर्मेंद्र और मुमताज़ की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर गारंटेड हिट मानी जाती थी। जी हाँ, चाहे फिल्म लोफर हो, राजा जानी हो, या फिर हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, या फिर झील के उस पार। और इन फिल्मों ने बिल्कुल यह साबित कर दिया कि धर्मेंद्र जैसा हैंडसम, रफ टफ अंदाज वाला जो मुंडा है, वो मुमताज़ की चुलबुली अदाओं के साथ मिलके पर्दे पर एक अलग सा चार्म जगा देता है। और सेट पर उन दोनों की जो बॉन्डिंग होती थी, वो भी इतनी मज़ेदार होती थी कि जो शूटिंग होती थी उसमें बिल्कुल भी किसी को नहीं लगता था कि भाई बहुत बोझिल काम है या बहुत मुश्किल है। लेकिन हम बात करेंगे इस फिल्म में मुमताज़ के किरदार नीलू के बारे में। नीलू, जो कि एक ब्लाइंड लड़की का किरदार उन्होंने निभाया था, और इस किरदार को निभाने में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आप बिना आंख बंद किए अपनी आंखों की जो पुतलियां हैं उनको एक जगह पर स्टेबल रखें और एक जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसकी तरह से एक्ट करें। बहुत मुश्किल काम था। और जब मुमताज़ को ये रोल ऑफर हुआ, तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की। घंटों वो आईने के सामने इस चीज़ की प्रैक्टिस किया करती थी, और उन्होंने अपनी आँखों की हर मूवमेंट को इस तरह से कंट्रोल किया कि जब वो शूटिंग पर पहुंची, तो शूटिंग के दौरान सेट पर जो भी लोग मौजूद होते थे वो दंग रह गए कि भाई क्या खूब एक्टिंग की है मुमताज़ ने, जिन्हें उस वक्त लोग उतना ज़्यादा एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग के लिए तो नहीं बोला करते थे, साइड कैरेक्टर के लिए माना करते थे। लेकिन जो आलोचक थे वो भी उनकी इस अदाकारी, उनकी इस मासूमियत को देखकर हैरान रहे, और उन सब ने भी उनकी बहुत तारीफ की। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को जो बनाया पंचम दाने। जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था तो पंचम दाने इसमें अपना जो एक पारंपरिक कैबरे का म्यूज़िक होता है वो तो लिया ही, उसके साथ साथ ढोलक फोक म्यूज़िक का ऐसा फ्यूज़न तैयार किया कि ये गाना क्लबों से लेकर शादियों तक हर जगह बजने लगा। और जब भी ये गीत बजता तो हर कोई झूमने लगता। ऊपर से लता जी की आवाज़ और पंचम दा ने जो इसमें म्यूज़िक डाला, भाई इस चीज़ ने तो इस गीत को ब्लॉकबस्टर हिट बना दिया वाकई में। लेकिन हम आपको बताएं कि जिस वक्त पंचम दा इस फिल्म के लिए म्यूज़िक तैयार कर रहे थे, उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर थे, मतलब कह सकते हैं कि अपने करियर के टॉप पर थे, जहाँ पर वो हर रोज़ नए नए जो प्रयोग हैं वो किया करते थे। और इस फिल्म में उन्होंने इस फिल्म की कहानी के हिसाब से संगीत को रचा। जी हाँ, वही यही वजह थी कि फिल्म में जब भी पर्दे पर नीलू यानी कि मुमताज की एंट्री होती थी तो उनके लिए पंचम दा ने एक खास तरह की बांसुरी की धुन रखी थी, जो कि उनके किरदार की जो मासूमियत थी उसको दिखाया करती थी। यानी कि पंचम दा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस फिल्म में, लेकिन जो भी किए वो सभी एकदम सुपर डुपर हिट रहे।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह के साथ हमारे साथ जुड़े हैं पद्मानगर टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से। मेरठ से जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन।

दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन के साथ पलारी छत्तीसगढ़ से। भूषण खेरा जी हमारे साथ जुड़े हैं फजल का पंजाब से। विशाल, विशु, लाडी खेरा, शालिनी तिवानशी और वानी खेरा के साथ। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित दिशानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीरगांव गुजरात से अजित भावसर, प्रमिला भावसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने हमें जानकारी दी है। संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत भारत हमारे साथ जुड़े हैं। कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर पंजाब से। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगला जो संदेश है उसको हमारे तक पहुंचाने वाले हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह चिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये संदेश हम तक भेजा है सलार पहलगांव कश्मीर से फैजादा मिराजुद्दीन ने, नजामुद्दीन कैसर जी ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने संदेश भेजा है। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी हम तक बहुत ही खूबसूरत जो जानकारी है वो हम तक पहुँचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीत जी ने एक और हम तक संदेश पहुँचाया जिसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है और बहुत शुक्रिया आप सभी का खूबसूरत जानकारी के लिए। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानका, निर्मला विशाल नवानका जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से चंपा देवांगन, राधेश्याम देवांगन जुड़े हैं हमारे साथ और गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल्स और विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुदर्शन मुखी, अनिता, सिमरन मुखी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। श्री सुधाकर, राजा जाधव, देशमुख, डॉक्टर प्रशांत, संचित, प्रथमेश, सर्वद, प्रणाली, सानवी, हर्षदा हमारे साथ जुड़े हैं। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। और ये अगला संदेश हम तक आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस, यशस्वी वर्मा का। डीबी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं नेहरू विहार। दिल्ली से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, तमन्ना भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से। संजय डिंगिया, नमन अपार हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश बागपत से। मुकेश बाटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हैं शालीमार बाग से। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज जुड़े हैं गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से। देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और पोता मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बब्लिश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छी जो जानकारी है वो हम तक साझा की है। अगला संदेश हम तक आया है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का। और दोस्तों जो अगला संदेश हम तक आया है उसको पहुंचाने वाले हैं लाल गिरी जी और इनके साथ हैं हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी जी, रघुनाथपुरा जिला, श्रीगंगानगर राजस्थान से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए हमारे सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए थे। और दोस्तों आप से मैं यही कहूँगी कि अब मुझे इजाज़त चाहिए, अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम की समाप्ति की। फिर से आऊँगी आपके पास लेकर किसी और नई सदाबहार फिल्म के साथ, लेकिन उससे पहले 2:30 पर आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर आएंगी विजेता। और 3 कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी मैं आपके होस्ट और दोस्त प्रीति। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रहिए, सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो चैनल और सुनते रहिए झील के उस पार के इस खूबसूरत गीत को। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून इजलास के दौरान 12 बिल मंजूर किए जाने के साथ गैर मुहैना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा में अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान सिर्फ 19% कामकाज हो पाया। पार्लियामेंट ने मुल्क के कानकनी के शोबे को ज्यादा मौसर बनाने की खातिर कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजबित किए जाने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 115 फनकारों को संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अता किए हैं। अमरीका के मुख्तलिफ सूबों में 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर मनाने का खसूसी तौर पर ऐलान किया है। कोलंबिया ने ताकतवर जलजले के बाद राहत कार्रवाइयों के लिए गैर मामूली इकदाम की खातिर इकतसादी इमरजेंसी का ऐलान किया है। और कैनेडियन ओपन टेनिस में मॉन्ट्रियल में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में दिफाई चैंपियन बेन शेल्टन का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशिमा से होगा। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यन अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास गुज़िश्ता माह के 20 तारीख को शुरू हुआ था और आज ये अख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान 25 दिनों में 19 नशिस्तें हुई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: मानसून इजलास के दौरान लेजिस्लेटिव और कौमी मामलात पर बहस व मुबाहिसा हुआ। पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, कौमी एजाजात की तोहीन से मुतालिक तरमीमी बिल, ट्राइब्यूनल्स इस्लाहात बिल, टैक्स और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल, कौमी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तरमीमी बिल और केरला का नाम बदले जाने से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी गई। पार्लियामेंट ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित किए जाने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद गौर खोज के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को मजीद शफाफ और जवाबदेह बनाना है। अलबत्ता इजलास के दौरान नीट पेपर लीक के मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई और अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे में बेजाब्तगियों के मामले पर कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: पार्लियामेंट ने आज राज्यसभा में मंजूर किए जाने के बाद कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। सुबह 11 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कोयले और कानों के वजीर जी किशन रेड्डी ने कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजबित किए जाने से मुतालिक कानून 1957 में मजीद तरमीम की खातिर बिल पेश किया। इस बिल का मकसद भारत के कारकनी के शोबे को ज्यादा मौसर सरमायाकारी के लिए साजगार और पूरी तरह लैस बनाना है ताकि मुल्क की अहम मादनियात की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। मरकज इस बिल के जरिए कानों और मादनियात के फरोग उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक कानून में दर्ज पैमानों के मुताबिक मादनियात वाली अराजी को मुंजबित करने को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए जनाब जी किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने शफाफियत को यकीनी बनाया है और कानकनी के वसाइल के मुनासिब बंदोबस्त के लिए नीलामी का इनेकाद भी किया है।
2: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी ये लोग नरेंद्र मोदी सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम

0: पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट में बहस से बचने का इल्जाम लगाया है, जबकि हुकूमत इसके लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का तर्ज अमल, खासतौर से पार्लियामेंट के ताल्लुक से जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट बहसो मुबाहसे और कानून बनाने के लिए होता है, लेकिन मानसून इजलास के दौरान मुसलसल नारेबाजी और एहतजाज ने ऐवान की कार्रवाई को मुतासिर किया। जनाब रिजिजू ने कहा कि मानसून इजलास के दौरान 12 बिल मंजूर किए गए, लेकिन सिर्फ एक पर दोनों ऐवानों में बहस हुई। उन्होंने कहा कि इस इजलास के दौरान लोकसभा में सिर्फ 19% और राज्यसभा में 39% कामकाज हो पाया। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने पार्लियामेंट में बार बार रखना डालने पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमहूरी और पार्लियामानी रवायात का एहतराम नहीं कर रही है। पार्लियामेंट के अहाते में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि पूरे मुल्क ने अपोजिशन की हरकतों को देखा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमहूरी या पार्लियामानी रवायात में यकीन नहीं रखती।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: बीजेपी ने आज अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया कि वो पंजाब और झारखंड में तलबा को दरपेश मामलों को नजरअंदाज कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि अपोजिशन पार्टियां झारखंड और पंजाब में तलबा के मामलों पर सवालों से बचने के लिए पार्लियामेंट में शोरगुल कर रही है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी झारखंड के तलबा के मामलों पर खामोश हैं।
2: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में खसूसी एजाज से मुतालिक एक तकरीब में 115 फनकारों को 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और अवार्ड अता किए। इन अवार्ड के जरिए भारत के मुख्तलिफ फनून जैसे आर्ट, मौसीकी, रक्स, थिएटर, फोक और कबायली आर्ट, कठपुतली, रिवायती थिएटर और दिगर मुतालिका फनून में गैर मामूली और मुसलसल ताउन को एजाज बख्शा जाता है। एवार्ड याफ्तगान मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने के बावजूद पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। अमरीका में कई रियासतों ने भारत की आजादी, उसकी शानदार विरासत, गुनागुनियत और अमरीका में मुकीम भारत निजात लोगों की इस मुल्क के तय खिदमात को उजागर करने के लिए 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर मनाने की गरज से खसूसी ऐलान जारी किया है। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स के बाद डेलावेयर रियासत ने भी इस बारे में ऐलान जारी किया है। डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने एक ऐलानिये पर दस्तखत किए और तमाम शहरियों पर से जोर देकर कहा कि वो इंडिया डे मनाएं। ऐलानिये में कहा गया कि ये दिन भारत की आजादी का एहतराम करने, विरासत और डेलावेयर की भारतीय अमरीकी बिरादरी की हसूलियाबियों को याद करने का मौका फ्राहम करता है। कोलंबिया के सदर एबेलार्डो डेला एस्पिरेला ने इकतसादी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है ताकि हुकूमत वहां आए ताकतवर जलजले के बाद राहत और बाज आबादकारी के लिए गैर मामूली इकदाम कर सके। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जलजले से कम 265 अफराद हलाक और 3,494 लोग जख्मी हुए हैं। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों का सिंगल्स फाइनल दो अमरीकी खिलाड़ियों ब्रेंडन नाकाशिमा और बेन शेल्टन के दरमियान खेला जाएगा। मॉन्टेरियल में खेले गए सेमीफाइनल में नाकाशिमा ने स्पेन की के राफेल जोडार को 7-6 और 6-4 से हराया, जबकि मौजूदा चैंपियन बेन शेल्टन ने अमरीका के ही लर्नर टेयन को 6-2 और 6-3 से शिकस्त दी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर।

0: Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to make mining sector more efficient. President Draupadi Murmu confers Sangeet Natak Academy fellowships and awards to over 100 artists. Several U.S. states issue special proclamations to commemorate August 15 as India Day for celebrating independence. Colombia declares an economic emergency to take measures for relief efforts following powerful earthquake. And in Canadian Open tennis, defending champion Ben Shelton to take on compatriot Brandon Nakashima in men's singles final at Montreal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
4: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।

0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
1: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
1: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए हम काम किया है।
0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुग ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बू रेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
2: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
3: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
5: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपया घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है राहुल गांधी? क्या बोलते हो आप? क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश

0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
2: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रिएजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार।

0: समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपके इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बात करते हैं, और जब हम उस सुनहरे दौर की बात करते हैं तो उन अभिनेत्रियों का जिक्र ना हो जिन्होंने पर्दे पर अभिनय के साथ साथ नृत्य को भी एक नई पहचान दी, तो ये कहानी थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। और आज की हमारी जो कहानी है वो एक ऐसी अभिनेत्री की है जिनकी आंखों में अभिनय था, चेहरे पर भाव थी, कदमों में शास्त्रीय संगीत की ऐसी लय थी जिसने हिंदी फिल्म की नायिका की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार्स गिना जाता है। नाम है वैजयंती माला।

कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज बात हो रही है सुपरस्टार यानी कि पहली सुपरस्टार वैजयंती माला की। दोस्तों वैजयंती माला एक अभिनेत्री, भरतनाट्यम नृत्यांगना और भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की एक बेहद ही प्रभावशाली शख्सियत में से एक है। उनका जन्म 13 अगस्त 1933 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में हुआ था और उनकी माँ वसुंधरा देवी खुद एक अभिनेत्री और बहुत ही अच्छी नृत्यांगना थी। वैजयंती माला को बचपन से ही नृत्य संस्कार में मिला था और आगे चलकर भरतनाट्यम उनकी पहचान बना और उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना। वैजयंती माला की प्रतिभा इतनी कम उम्र में उभर के आई कि उन्हें वो अवसर मिला, एक बेहद खास अवसर, जहां उन्होंने पोप के सामने अपने नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया था। यानी जिस बच्ची के लिए नृत्य शुरुआत में कला और अनुशासन था, वही नृत्य आगे चलकर उनके फिल्मी करियर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। स्क्रीन पर आने से पहले उन्होंने भरतनाट्यम की बाकायदा शिक्षा ली और उनके नृत्य प्रशिक्षण ने उनके अभिनय को भी एक खास अंदाज दिया। उनकी चाल, उनकी मुद्रा, हाथों के इशारे और चेहरे के भाव सब कुछ कैमरे के सामने बेहद प्रभावशाली दिखाई देता था। और फिर आया वो समय जब मंच की ये नृत्यांगना फिल्मी पर्दे की ओर बढ़ गई। साल था 1949, तमिल फिल्म वाजाखाई से वैजयंती माला ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा।

श्रोताओं, जो भी उन्होंने फिल्में तेलुगु या तमिल में की थी वो काफी सफल हुई और सफलता ने उनके लिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उनका जो मंजिल थी वो सिर्फ दक्षिण भारतीय सिनेमा तक सीमित रहने वाली नहीं थी, जल्द ही उनकी प्रतिभा ने उन्हें हिंदी फिल्मों तक पहुंचा दिया। 1951 में उनकी फिल्म आई बहार। ये वही दौर था जब हिंदी सिनेमा में वैजयंती की पहचान बननी शुरू हुई थी, लेकिन असली बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। साल 1954 में आई फिल्म नागिन। फिल्म ने वैजयंती माला को हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री की कतार में ला खड़ा किया। उनकी खूबसूरती, उनका अभिनय और उससे बढ़कर उनका नृत्य दर्शकों को बेहद पसंद आया। ये वही दौर था जब दर्शकों ने महसूस किया कि ये अभिनेत्री केवल सुंदर चेहरा नहीं है, ये एक ऐसी कलाकार है जो अभिनय और नृत्य दोनों को बराबर ताकत से पर्दे पर उतार सकती है। इसके बाद 1955 में आई बिमल रॉय की फिल्म देवदास। शरद चंद चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में दिलीप कुमार ने देवदास और सुचित्रा सेन ने पारू की भूमिका निभाई थी। वहीं वैजयंती माला बनी थी चंद्रमुखी। ये भूमिका उनके करियर का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। अब तक दर्शक उन्हें एक खूबसूरत और शानदार डांसर के रूप में देख रहे थे, लेकिन चंद्रमुखी के किरदार ने साबित कर दिया कि वैजयंती माला के भीतर एक गंभीर अभिनेत्री भी मौजूद है। उनके अभिनय को खूब सराहा गया। उन्हें इस भूमिका के लिए फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। हालांकि उनका मानना था कि ये पुरस्कार जो है वो सह अभिनेत्री का नहीं बल्कि अभिनेत्री का होना चाहिए, क्योंकि मुख्य किरदार माना जा रहा था पारो का किरदार। तो बस इसी तरह से उनका जो फिल्मी करियर है वो लगातार आगे बढ़ रहा था। हम भी आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हीं की एक और फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज बात हो रही है वैजयंती माला की। हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, तो चलिए अब उनकी भी मेल्स को शामिल कर लेते हैं। अजीत भवसार का संदेश है हमारे पास, और ये लिखते हैं कि वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त को हुआ था, और ये सारी बातें हम यहाँ पर कर ही रहे हैं, आप हमारे एक कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भवसार जी। और अमर नगर से अमर रमेश कुमार खत्री जुड़ रहे हैं, और ये लिखते हैं कि वैजयंती माला के सॉन्ग मेरे ग्रैंड मदर बहुत सुना करती थी। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, और वाकई ये उन्हीं की समय के सॉन्ग्स हैं, लेकिन आज भी श्रोता उन्हें उसी प्यार से और उसी भाव से सुनते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार जुड़ रहे हैं अगले संदेश के साथ हैं। ताज मोहम्मद जी हरिद्वार लक्सर से, हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। इंद्रभान जी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में चिरमिरा कुरसिया कालरी से, साथ में इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे। हीरामणि जी जुड़ रहे हैं बडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़ रही हैं, और हमारे श्रोता हैं हीरामणि जी जतरंगी भाटपारा से जुड़ रहे हैं, और ये लिखते हैं कि वैजयंती माला जी के जीवन, नृत्य करियर, संघर्ष व फिल्मी सफ़रनामा पर रोचक जानकारी मिल रही है, बेहतरीन गाने सुनने को मिल रहे हैं, और हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाती है। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जुड़ रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, मस्कीन दादा जुड़ रहे हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, और वीना मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना जुड़ रहे हैं, और लिखते हैं आज बड़े दिनों बाद आपकी मीठी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा, वैजयंती माला के बारे में आप जानकारी दे रही हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे श्रोता हमें याद करते हैं, अपने संदेश लिखते हैं। फारूक अली खान जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, और कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, पी एस नवाहकर जुड़ रहे हैं नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से, निर्मला नुहाकर विशाल मलकापुर से, नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोहर्रेकर भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं, शाहजी भोकड़े हमारे श्रोता हैं हिंगोली महाराष्ट्र से, श्रीमती नंदा बोडके, हनुमान बोडके और उत्तम जमदाड़े भी कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं, और इशाक मोहम्मद जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा जी। लिखते हैं वैजयंती माला जी के बारे में जानकारी और गीत सुनकर मज़ा आ गया, कार्यक्रम में आपकी प्रस्तुति का अंदाज बेहद सटीक और शानदार है। तो वही आपके लिए, आपकी आपने जो तारीफ़ की है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी जो इंस्पिरेशन है वो हमारे श्रोता ही हैं कि वो हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, और जहाँ पर उन्हें कमी लगती है वो भी लिखते हैं, और जहाँ उन्हें अच्छा लगता है वो भी लिखते हैं। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं वैजयंती माला जी का एक और गीत, जिसे हमने चुना है फिल्म नागिन से।

श्रोताओं, ये थी वैजयंती माला, एक ऐसी कलाकार जिसने बचपन में मंच पर कदम रखा, फिर दक्षिण भारतीय सिनेमा में पहचान बनाई, हिंदी सिनेमा में आई, नागिन से लोकप्रियता हासिल की, देवदास में अभिनय की गहराई दिखाई, मधुमती और साधना से अपनी जगह मजबूत की, गंगा जमुना में अभिनय का रंग दिखाया और संगम के साथ स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंची। फिर आम्रपाली जैसी महत्वाकांक्षी फिल्म के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली और नृत्य की दुनिया में अपनी साधना जारी रखी। वैजयंती माला का फिल्मी सफर हमें ये बताता है कि सिनेमा में कुछ कलाकार सिर्फ अपने दौर के सितारे नहीं होते, बल्कि वो एक माइलस्टोन जैसे साबित हो जाते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर मेल करके बताइएगा, और छोड़े जाते हैं आपको उन्हीं की इस फिल्म के इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे और वक्त हुआ है आप सभी के एक और पसंदीदा कार्यक्रम मैथनी मेलोडीज का। तो दोस्तों, कार्यक्रम मैथनी मेलोडीज में हम आज बात करेंगे कुछ हटके। जी हाँ दोस्तों, जब रात का अंधेरा गहराता है, कमरे की लाइटें बंद हो जाती हैं और कहीं दूर से आती है हमें आवाज़ घुंघरू की, छन छन, या फिर किसी के कदमों की आवाज़ आती है, या दरवाजे के चरमराने की आवाज़ आती है, तो क्या होता है, हमारे दिल की जो धड़कनें होती हैं वो एकदम से तेज़ हो जाती हैं, है ना। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय सिनेमा के उस दौर में जहाँ सस्पेंस का मतलब सिर्फ डराना नहीं बल्कि खूबसूरत और बेहतरीन संगीत और दिमाग की नसों को हिला देने वाला सस्पेंस संगीत और उसकी कहानियाँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इस बॉलीवुड के सफर में कितनी और कैसी कैसी आइकॉनिक सस्पेंस फिल्में आई हैं। तो दिल थाम लीजिए, अपने दिल को जोर से पकड़ लीजिए, क्योंकि जो ये सफर है हमारा बहुत ही कातिलाना होने वाला है। तो लीजिए, करते हैं शुरुआत।

दोस्तों, जब भी फिल्मों में सस्पेंस फिल्म की बात होती है या किसी हॉरर फिल्म की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं 60s और 70s की खूबसूरत फिल्में। लेकिन इस सस्पेंस और थ्रिलर की जो मजबूत नींव रखी गई थी वो 1940 में ही रखी गई थी, जब आई थी फिल्म महल। जी हाँ दोस्तों, महल फिल्म ऐसी पहली फिल्म थी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जिसमें सस्पेंस को दिखाया गया था, और उसके बाद ये चलन धीरे धीरे आगे बढ़ा। और अगर हम 50 के दशक की बात करें तो विमल रॉय की फिल्म मधुमति का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। दिलीप कुमार वैजयंतीमाला के अभिनय से सजी ये फिल्म, जिसमें पुनर्जन्म, भूतिया हवेली, मर्डर मिस्ट्री का एक ऐसा अद्भुत सा संगम था जिसने लोगों को फिल्म के अंत तक बांध के रखा कि भाई अब क्या होने वाला है। वो पहाड़ियों के बीच पुरानी सी हवेली, बारिश की रात और हवा में तैरती हुई आवाज़, है ना, कितना डरावना लगता है। और अगर हम बात करें उसी दशक की और फिल्मों की, तो एक तरफ फिल्म थी हावड़ा ब्रिज, कोलकाता की रातें, धुंधला सा माहौल, चोर उचक्के और एक कीमती मदन गोपाल की घड़ी के इर्द गिर्द घूमती वो मर्डर मिस्ट्री। अशोक कुमार साहब का जो बेहतरीन अभिनय, मधुबाला की अदाएं और ओपी नैयर साहब का गीत, है ना, वाकई में एक से बढ़कर एक चीजें जो हैं, जो गीते हैं, जो फिल्में हैं वो आई थी सस्पेंस के नाम पर। वहीं सीआईडी जैसे फिल्म को भी हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें राज खोसला साहब के निर्देशन में, गुरुदत्त साहब के प्रोडक्शन में बनी हुई, देवानंद साहब जैसे एक खूबसूरत डैशिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका कौन और निभा सकता था। और एक अखबार के संपादक का कत्ल होने की मिस्ट्री सुलझाते सुलझाते खुद पुलिस इंस्पेक्टर शक के घेरे में आ जाते हैं, है ना, एकदम अजीबोगरीब कहानी। तो यही सस्पेंस होता था उस वक्त की फिल्मों में, और वाकई में वो फिल्मों की कहानियाँ इस कदर बेहतरीन होती थी कि जो दूसरा इंसान है वो अपने आप को बांध कर रह जाए। तो लीजिए, करते हैं सेगमेंट के अगले खूबसूरत से गाने की तरफ। हम अपना पड़ाव रखते हैं लता जी और मुकेश जी की आवाज़ में, सुनते हैं मधुमति फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। और अगर आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपने फिल्मों को देखकर जो अनुभव किया, ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा, और किस तरीके से साझा करना है वो तो आपको मालूम ही है। जी हाँ दोस्तों, आप हमें मेल कर सकते हैं IP Radio Delhi@gmail.com पर। तो लीजिए, सुनते हैं लता जी की आवाज़ में खूबसूरत।

1950 के दशक की जो फिल्में आई जिसमें सस्पेंस और क्राइम था, और उन फिल्मों के आने के बाद जो हमारी नई बॉलीवुड की पीढ़ी आई उनके लिए नए रास्ते खुले। और उस दौर में ना तो आज जैसे विजुअल इफेक्ट्स थे और ना ही बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बेहतरीन जो उनकी कलाकारी थी, उनकी अदाकारी थी, उससे वो फिल्में एकदम परफेक्ट बनती थी। और वो सिर्फ इस्तेमाल करते थे बेहतरीन लाइटिंग का, और कसी हुई होती थी उनकी कहानी यानी कि पटकथा, और उसमें भी ऊपर चार चांद लग जाता था फिल्म के संगीत से। और फिल्म का संगीत ऐसा होता था कि एकदम से माहौल बन जाता था, और वो माहौल ऐसा था कि आज भी हर कोई उस माहौल में घुल मिल जाता है। तो दोस्तों, 50 के बाद अब हम बात करते हैं 60 के दशक की सस्पेंस फिल्मों की। और जब भी हम 60 के दशक की फिल्मों की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले नाम आता है डायरेक्टर राज खोसला और खूबसूरत साधना का। जी हाँ दोस्तों, आपको याद आया 1964 में आई एक फिल्म, और वो फिल्म थी वो कौन थी। मनोज कुमार रात के अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं और बारिश होती है। अचानक से रास्ते में उनके सामने सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती है जो सीधा शमशान घाट में जाकर गायब हो जाती है ना डरावना। जी दोस्तों, और ऊपर मदन मोहन साहब का संगीत, लता जी की आवाज़, वाह, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए ना। तो पर ये फिल्म अकेली फिल्म नहीं थी, बल्कि इसके बाद आई 1966 में साधना जी की एक और बेहतरीन फिल्म, मेरा साया। एक पति के सामने उसकी मरी हुई पत्नी वापस आ जाती है और कहती है कि भाई वो तो जिंदा है। अब वो क्या सच में उसकी पत्नी है या फिर उसकी कोई हमशक्ल? इस गुत्थी ने पूरे देश को सिनेमा घरों तक ना सिर्फ पहुंचाया बल्कि अंत तक बांध कर भी रखा। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए अगले पड़ाव पर चलते हैं और सुनते हैं वो कौन थी फिल्म से ये लता जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत।

1960 दशक की जब शुरुआत हुई थी तो वो वाकई में धमाकेदार थी, क्योंकि 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद, विश्वजीत और वहीदा रहमान की ये फिल्म सर आर्थर कैनन डॉयल के मशहूर उपन्यास पर आधारित थी, जिसमें चंदन का दलदल और चंदनपुर का दलदल और वो रात में गूंजती चीखें और ऊपर से हेमंत कुमार की आवाज़ में गीत, कहीं दीप जले कहीं दिल, और सस्पेंस ऐसा कि भाई देखने वाले की सांसें वहीं की वहीं अटक जाएं। लेकिन उसके बाद में आई फिल्म 65 में राजा नवाते की फिल्म गुमनाम, अगाथा क्रिस्टी के नॉवल अदन देयर वन नन से प्रेरित इस फिल्म में एक दिखाया गया था, एक सुनसान टापू पर 7 लोग पहुंचते हैं और एक एक करके उन सब का कत्ल होने लगता है, और जब कत्ल होता है तो बैकग्राउंड में गूंजता है एक ही म्यूजिक।

दोस्तों, गुमनाम है कोई, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं वो गुमनाम नहीं है, बल्कि हमारे साथ हैं, जिनके संदेश हम ले लेते हैं। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल, निशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम खान, रेशमा, फातमा, गांव नंगली जाजू बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि शुरुआती फिल्म महल के गाने से मेलोडी सॉन्ग्स की शुरुआत हुई, और लिखते हैं कि फिल्म गुमनाम, पर्दे के पीछे, 20 साल बाद, पूनम की रात, मेरा साया, नूर महल, ऐसी कई फिल्में हैं जो कि हंटिंग मेलोडी सॉन्ग्स हैं, जो कि हमारे अंग अंग के जो रुआंसे हैं वो खड़ा कर देते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और लिखते हैं कि मधुमती के बाद महबूबा में राजेश खन्ना भी हेमा मालिनी जी के साथ ऐसे गाने बने हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। बहुत सारी फिल्मों की आपने हमें लिस्ट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला संदेश आया है हमारे पास तुलसी मस्कीन जी का, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से। वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना रचित केशव रधान खुराना के साथ, और लिखते हैं कि बारिश की रात में वो पुराने महल में डरावने सीन वाली सभी बातें उन पुरानी फिल्मों की तरफ की जा रही हैं, और आज मैटिनी मेलेडी शो में हमें मिल रहा है नाइस गीत, इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं, कुछ हट के आज आपने प्रोग्राम पेश किया। जी शुक्रिया आप सभी का। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिता मुखी सिमरन जी के साथ शांतिनगर सोनीपत से। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा के साथ। अजीत जी का एक बार फिर से हमारे संदेश आया है और लिखते हैं, वो कौन थी फिल्म से गाना डर लगता है ऐसा, 20 साल बाद कहीं दीप चले कहीं दिल। बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम का अंदाज़ और अंजू पांडे जी दोनों आते हैं, जब आप दोनों आते हैं तो सभी प्रोग्राम अच्छे से पेश करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला संदेश अब हमारे पास एक बार फिर से बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन जी का, और वो लिखते हैं कि इनको जो गीत है वो खूबसूरत लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लीजिए सुनते हैं इसी सफ़र में अगला गीत।

दोस्तों 1967 में आई फिल्म ज्वेल थीफ, ये कोई मर्डर मिस्ट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी सस्पेंसफुल मूवी थी। देवानंद, वैजयंती माला और राजकुमार। इसमें एक ऐसा चोर था जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, और सस्पेंस ऐसा कि क्लाइमेक्स तक कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कि भाई जो असली विनय या अमर है वो

कौन है, इस तरह का सस्पेंस होता था उस वक्त की फिल्मों में। और फिर आई 1969 में यश चोपड़ा साहब की एक ऐसी फिल्म, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी अलग फिल्म हटके जिसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने सबको हैरान कर दिया, और वो फिल्म थी इत्तेफाक। राजेश खन्ना साहब और नंदा जैसी स्टार इस फिल्म में, और ये फिल्म एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि उस वक्त जहाँ फिल्मों में गीत फिल्मों से ज़्यादा खूबसूरत होते थे, वहीं इस फिल्म में कोई गीत ही नहीं था, और वो भी बिना किसी इंटरवल के। जी हाँ दोस्तों, एक अलग टाइप की फिल्म। और इस फिल्म में जो कि 2 घंटे की थी, पूरा 2 घंटा एक घर और एक जेल से भागा हुआ कैदी, एक अकेली औरत और एक लाश, सिर्फ 2 घंटे का ऐसा सस्पेंस जिसने हिंदी सिनेमा को थ्रिलर की एक नई डेफिनेशन दे दी। और 60 के दशक की इन सस्पेंस फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं आप क्या थी? वो थी, इनके पास एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री ही नहीं थी, बल्कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो गीत संगीत था, और जो सस्पेंस उन्होंने बुना, वो और भी गहरा हो जाता था। ब्लैक एंड व्हाइट दौर में वो परछाइयाँ, वो शेडोज, ढलती हुई रोशनी का इस्तेमाल करते, जो कि आज के दौर में भी उन जैसा माहौल नहीं बन पाता है। तेज़ आवाज़ें, लाउड म्यूजिक रखते हैं, लेकिन फिर भी उस दौर का वो आनंद नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आज अगर आपको कुछ नया और थ्रिलिंग देखने का मन हो ना, तो ज़रूर आप इस तरह की कोई ना कोई सस्पेंस फिल्म ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अभी इसी सस्पेंस के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ खूबसूरत से गीत के साथ, और अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 होने

उर्दू मजलिस के सभी सामेईन की खिदमत में नसरीन बेगम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम महफिल समा। सामेईन, वतन इंसान की पहचान, इज्जत और फख्र का सरचश्मा होता है। हर शख्स अपने वतन से मोहब्बत करता है, उसकी सलामती, आज़ादी और खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। जब वतन पर कोई मुश्किल या ख़तरा दरपेश होता है तो सच्चे वतन परस्त अपनी जान व माल की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते। यही जज्बा कौमों को अजीम और मजबूत बनाता है। बकौल अल्लामा इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आइए सामीन, अब्दुल हमीद साबरी और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में कव्वाली सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 4 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र

0: आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% और राज्यसभा में 39.17% ही कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों का आचरण लोकतंत्र, विशेषकर संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने आज राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित राज्य भर में एक समान प्रावधान लागू करना है। आदिवासी समुदायों के रीति रिवाजों और परंपराओं को मसौदा नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा है। राज्य सरकार ने अवैध और अंधाधुंध वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाला राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 भी पेश करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज के पुरस्कार विजेताओं में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की कलाओं का प्रचार किया। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ तस्वीर साझा की। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस अभ्यास में समारोह की भव्यता, कुशल समन्वय और देशभक्ति की गहरी भावना को प्रदर्शित किया गया। उधर अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में भी आंधी चलने की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में शाम के समय हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Both the Houses of Parliament have been adjourned sine die. The monsoon session of Parliament, which began on the 20th of last month,

चेहरा गोल, आंखें बड़ी। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप थाना औरंगाबाद में जानकारी दे सकते हैं। लापता व्यक्ति का नाम है सावेज पुत्र इजाजुल, निवासी ग्राम आगोरा, थाना खुर्जा, देहात जनपद बुलंदशहर। ये 14 जुलाई 2026 से लापता है। आयु 16 वर्ष है, कद 5 फुट 6 इंच, शरीर की बनावट एक हरा बदन, चेहरे का रंग गेहुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर शोभित कुमार, क्षेत्राधिकारी खुर्जा, जनपद बुलंदशहर को आप सूचित कर सकते हैं। अगली सूचना अनुसार लापता व्यक्ति का नाम है आरती, पत्नी सोहन पाल, ग्राम बड़ौदा, पुलिस स्टेशन चोला, बुलंदशहर। ये 17 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु है 20 वर्ष, कद 5 फुट, शरीर की बनावट सामान्य है, कद है 5 फुट। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप जुरैल थाना चोला बुलंदशहर को सूचित कर सकते हैं। लापता व्यक्ति का नाम है पूजा, तेज सिंह कॉलोनी से ये लापता हैं। 9 सितंबर 2025 से। इनकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, कद 5 फुट 1 इंच, शरीर की बनावट सामान्य है और रंग गोरा है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना यदि आपको मिलती है तो आप तेज सिंह कॉलोनी जोखाबाद थाना बुलंदशहर को सूचित कर सकते हैं। लापता व्यक्ति का नाम है दीपू, पुत्र गोपी, ग्राम चाडरपुर। ये 19 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है लगभग 39 वर्ष, कद है 5 फुट 5 इंच, सामान्य रंग है, आंख नाक कान औसत हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है यदि आपको तो आप क्षेत्र अधिकारी सयाना, जनपद बुलंदशहर को सूचित कर सकते हैं। अगली सूचना अनुसार लापता व्यक्ति का नाम है देवदत्त उर्फ लीलू, पुत्र रुकन सिंह, ये ग्राम लाडपुर, थाना बीबी नगर बुलंदशहर से 27 जून 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 45 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, शरीर की बनावट सामान्य है और रंग गेहुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर क्षेत्र अधिकारी सयाना, जनपद बुलंदशहर को सूचित कर सकते हैं। विलुप्त व्यक्ति का नाम है रुखसाना खान, पत्नी शाकिब, इनकी आयु 20 वर्ष है, ऊंचाई 4 फुट 3 इंच, आंख नाक कान सामान्य है, रंग गेहुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप खुर्शीद आलम, जांच अधिकारी, थाना सयालपुर, दहली गेट, मेरठ को सूचित कर सकते हैं। लापता व्यक्ति का नाम है तौहीद पुत्र फुरकान, निवासी बंगला एरिया, मेरठ कैंट थाना, आयु 12 वर्ष है, बालों का बाल आंख कान सामान्य है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप बंगला एरिया मेरठ कैंट थाना पर सूचित कर सकते हैं। ये थी गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सूचना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: डिजिटल खेल की दुनिया में भी सुरक्षा ही है पहचान।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम युववाणी। मैं हूँ शिवी
0: और मैं हूँ कृष्णा। सभी लिसनर्स को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार। आज का प्रोग्राम थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने की, खेल की दुनिया के कुछ इंटरेस्टिंग किस्सों और फैक्ट्स की।
1: तो आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिजिटली अपनी सिक्योरिटी का ध्यान कैसे रखें, और आप ये भी सुनेंगे कि भोजन और संस्कृति का क्या संबंध है। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि विकसित भारत पर क्या भविष्य रहेगा।
0: क्या आप श्रोतागण साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि साइबर सिक्योरिटी आज के युग में कितनी आवश्यक है?
1: और खेल, अरे खेल तो वो है जहाँ हार भी अगली जीत की तैयारी बन जाती है। तो बताइए, इससे बेहतर लाइफ लेसन और क्या होगा?
0: आइए श्रोताओं, इन विषयों पर अच्छे से चर्चा करते हैं हमारे अगले सेगमेंट आज की बात में।
1: तो अपनी रेडियो वॉल्यूम थोड़ी बढ़ाइए क्योंकि आज का युववाणी होने वाला है फास्ट, फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी। परंतु अगले सेगमेंट पर जाने से पहले, जिस प्रकार आज के कार्यक्रम का आरंभ हमने कुछ सुंदर पंक्तियों के साथ किया था,
0: उसी सुंदरता को आगे बढ़ाते हुए आइए अगले सेगमेंट का आरंभ करते हैं एक मधुर गीत के साथ।

0: वाह बेसब्री सुनकर तो मजा आ गया। वैसे शिवी आज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ। मैं एक सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी मैंने, उस पर नाम किसी और का था, पिक्चर किसी और की थी, और पता है बायो में क्या लिखा था? ऑफिशियल अकाउंट।
1: अच्छा तो क्या वो सच में ऑफिशियल अकाउंट था?
0: यही तो कमाल की बात है, प्रोफाइल बिल्कुल रियल लग रही थी, फॉलोअर्स भी थे, फोटोग्राफ्स भी थी और कमेंट्स भी थे, लेकिन अकाउंट फेक था।
1: तो सिर्फ प्रोफाइल देखकर ये मान लेना कि सामने वाला व्यक्ति वही है सही नहीं है?
0: नहीं शिवी नहीं, लगता है भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आज साइबर क्रिमिनल्स सिर्फ साइबर

0: टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वह लोगों के भरोसे का इस्तेमाल करते हैं।
1: पता है कृष्णा, इसे ही सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं।
0: हाँ शिवी, सोशल इंजीनियरिंग में हैकर टेक्नोलॉजी से ज्यादा मनुष्य की सोच को एक्सप्लॉइट करता है।
1: लेकिन कृष्णा, ये बताओ, हम कैसे पहचाने कि कोई अकाउंट असली है या फेक?
0: इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको आपके फेवरेट एथलीट या सेलिब्रिटी का मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ स्पेशल फैन इवेंट। दिल तो करेगा ना, वाह यार अच्छा लग रहा है। लेकिन उस समय आपको अपने आप से सिर्फ दो प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न तो ये कि ये वास्तव में रियल प्रोफाइल है, क्या ये बंदा वही है? और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये रियल भी है तो वो मुझे मैसेज क्यों करेगा?
1: यानी पहले ये चेक करना चाहिए कि मैसेज सच में उसी व्यक्ति या उसके ऑफिशियल अकाउंट से आया भी है या नहीं।
0: यस, अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं और ऑफिशियल वेबसाइट या किसी वेरीफाइड प्रोफाइल से उस इंफॉर्मेशन की पुष्टि हो रही है या नहीं।
1: लेकिन कृष्णा, आजकल एक और परेशानी है, सिर्फ प्रोफाइल ही नहीं, किसी की आवाज और वीडियो भी क्लोन करी जा रही है।
0: श्री, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये श्राप भी है और वरदान भी। आज डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट की मदद से किसी की भी वॉइस को इमिटेट किया जा सकता है, फेस को डिजिटली बदला जा सकता है, और तो और वीडियोस को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है।
1: तो दोस्तों, अगर किसी सेलिब्रिटी, इंटरनेट पर्सनालिटी या किसी परिचित की तरफ से अचानक कोई अनयूजुअल मैसेज आए, तो सिर्फ उसकी आवाज या फोटो देखकर भरोसा ना करें।
0: इसमें बेहतर यही होगा कि किसी ट्रस्टेड माध्यम से उस चीज को वेरीफाई किया जाए, क्योंकि आज के जमाने में जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वो सच होता है।
1: और सिर्फ फेक प्रोफाइल्स या डीप फेक्स ही नहीं, सोशल मीडिया पर हम जो भी इंफॉर्मेशन आगे शेयर करते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है।
0: हम अक्सर सोचते हैं, मैंने तो बस फॉरवर्ड ही किया था, उससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन एक गलत इंफॉर्मेशन हजारों लोगों के लिए मिस इन्फॉर्मेशन बन सकती है।
1: सही कहा कृष्णा, इसीलिए किसी भी सस्पिशियस या कंट्रोवर्शियल पोस्ट को बिना जांचे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए।
0: हर प्रोफाइल असली नहीं होती, हर वीडियो सच्चा नहीं होता और हर वायरल चीज सही नहीं होती।
1: तो कृष्णा, हम सब जानना चाहेंगे कि इन सब में से हमें याद क्या रखना है।
0: देखकर नहीं, जांच कर विश्वास कीजिए।
1: और इसी संदेश के साथ अब सुनते हैं एक जोशीला गीत, जी करदा, फ्रॉम द मूवी सिंग इज ब्लिंग।

0: श्रोताओं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रियजनों की जन्मतिथि को अपना पासवर्ड बना लेते हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार का पासवर्ड रखना सेफ है?
0: नहीं, क्योंकि यदि आपको उसकी जन्मतिथि पता है तो किसी और को भी तो पता हो सकती है, और हो सकता है वो हैकर हो।
1: सही कहा कृष्णा, अवश्य हो सकता है।
0: तो ऐसा करने से आपको सामने वाला प्राप्त होना हो, परंतु हैकर को आपका पासवर्ड और आपके बैंक अकाउंट की धनराशि अवश्य प्राप्त हो सकती है।
1: इसलिए एक सिक्योर अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड ही बनाएं। एक मजबूत अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षरों, अंकों और संभव हो तो स्पेशल कैरेक्टर्स का मिश्रण होना चाहिए। इससे पासवर्ड का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपका अकाउंट ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
0: ठीक है शिवी, मैं और हमारे श्रोता इन टिप्स को याद रखेंगे। तो आइए उन्हीं महापुरुषों के नाम पर जो इस प्रकार के पासवर्ड रख लेते हैं, एक गीत सुनते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, पड़ोसन मूवी से।

0: प्रिय श्रोताओं, हर भोजन की थाली एक कहानी बयां करती है। वो ना सिर्फ पारंपरिक स्वाद बल्कि उस प्रदेश या देश की संस्कृति और इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ कह जाती है। इस विषय पर हमें बताएंगी वंशिका शर्मा, स्टूडेंट डेलीगेट FSSAI, इस सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक में।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका शर्मा आज के युवानी प्रोग्राम में आपकी आरजे। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग पीपल थ्रू फूड। अब आपके मन में सवाल आएगा कि लोगों को खाने से कैसे समझें? तो सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी इंसान को अगर समझना है तो जरूरी नहीं कि हम उसका कल्चर समझें या उसकी लैंग्वेज जाने या उसके फेस्टिवल्स अटेंड करें। कभी कभी बस उसके खाने की प्लेट ही हमें बहुत कुछ बता सकती है। अब ये भला कैसे? क्योंकि ये खाने की प्लेट बनती है जगह की ज्योग्राफी से, क्लाइमेट से, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस और जेनरेशंस भर की नॉलेज से। इंडिया को हम अक्सर कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या आपको लगता है कि फूड से बेटर इसका एग्जाम्पल कोई हो सकता है? इंडिया में ही आप देखेंगे बटर चिकन की थाली, बटर पनीर, डोसा, बिरयानी, दाल बाटी चूरमा और पता नहीं कितना सारा खाना बनाए इन्फ्लुएंस्ड होके अपनी जगह की ज्योग्राफी से, क्लाइमेट से। लेकिन अब आपको तो सिर्फ इन्हीं खानों के बारे में पता होगा ना, लेकिन इंडिया का कलिनरी मैप इज जस्ट मच बिगर देन दैट। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज को कंसिडर करें तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है खाने के लिए। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन लगभग 11 करोड़ के आसपास थी, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 8%। तो ट्राइब्स की बात आ ही गई है तो चलिए सेंट्रल इंडिया की तरफ। वहां पे हमें कितनी सारी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि गोंड, बैगा, भील और बहुत सारी और कम्युनिटीज। और इनके ट्रेडिशनल फूड में लोकल ग्रेन्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फ्लावर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल महुआ। महुआ को अक्सर आप सिर्फ एक ड्रिंक के रूप में देखते हैं, लेकिन बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज में महुआ के फ्लावर्स और सीड्स का फूड और लाइवलीहुड से भी कनेक्शन रहा है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्राइबल रिपोजिटरी है उसमें उनकी डॉक्यूमेंटेड फूड प्रैक्टिसेस में महुआ ऑयल का कुकिंग में भी यूज रिकॉर्डेड है। यानी वो सिर्फ एक फॉरेस्ट रिसोर्स ही नहीं, उस लोकेशन का, ट्राइब्स का फूड है, लाइवलीहुड है, कल्चर भी है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम दूसरी ओर चलते हैं। आज हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर और स्नैपचैट पे, कहीं जितनी भी हमारी सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पे हम मिलेट को सुपर फूड बोल रहे हैं। लेकिन इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए मिलेट्स कोई मॉडर्न हेल्थ ट्रेंड नहीं है। हैशटैग हेल्थीफाई इट्स नॉट समथिंग कि उन्हें अब पता लगाओ, वो ना जाने कितने वर्षों से इन मिलेट्स का यूज कर रहे हैं ना जानते हुए कि उनकी कितनी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो ओडिशा के धरुआ कम्युनिटी में डॉक्यूमेंटेड फूड प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं कि राइस के साथ साथ बहुत ही सारे मल्टीपल मिलेट्स जैसे कि कांगू, सुआ का मेंशन मिलता है, साथ ही साथ रागी भी। और जब लीन सीजन होता है, जब फसल नहीं उगती इतनी, तो बैम्बू शूट्स, सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन लीव्स भी फूड सोर्सेज हैं। और आज साइंस भी मिलेट्स को न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। यहाँ तक कि हमने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स भी कहा था। ICAR भी मिलेट्स को न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए बहुत प्रमोट करता है। एंड इंडिया में भी जो ड्रॉट प्रोन रीजंस हैं वहां पर मिलेट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो हमें कई बार फ्यूचर ऑफ फूड समझने के लिए ना पास्ट की फूड की विजडम को भी देखना पड़ता है। अब चलते हैं झारखंड की हो कम्युनिटी की तरफ। उनके ट्रेडिशनल फूड में राइस एक स्टेपल फूड माना जाता है, लेकिन वो सिर्फ राइस तक ही लिमिटेड नहीं है। ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, गार्लिक, ऑनियन, चिलीज, ये सब खाया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी अब आपको पता है और आपके पेरेंट्स भी आपको कहते आए हैं कि बच्चों खा लो ग्रीन लीव्स। बट आपको तो तब सिर्फ बर्गर किंग और मैकडी ही खाना होता था।

0: Food can become a way of celebrating, remembering ancestors and as well as maintaining community bonds. अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो अब वहाँ हम देखेंगे क्लाइमेट कैसे शेप करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में फिंगर मिलेट यानी रागी ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है. तवांग में फिंगर मिलेट लोकल सोशल कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिस से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है. ट्रेडिशनल फूड जैन यानी रागी बॉल्स भी वहाँ बहुत पॉपुलर हैं. अब आप सबने डोरेमोन में राइस बॉल्स तो देखी ही होंगी, कभी रागी बॉल्स ट्राई की हैं? वो भी ट्राई जरूर करिएगा. सो अब हमने देखा दैट फूड टेल्स अट अबाउट ज्योग्राफी, और यही फूड को इतना फैसिनेटिंग नहीं बनाता. राजस्थान के डेजर्ट में जो फूड सस्टेनेबल हो सकता है वो नेसेसरीली केरला के ह्यूमिड क्लाइमेट में सेम वर्क नहीं करेगा. हिमालयाज में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग और कोस्टल इंडिया में अलग. सो क्यूजीन इज जस्ट बेसिकली ज्योग्राफी दैट यू कैन टेस्ट. एंड देन कम्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. बट हियर इज द ब्यूटिफुल पार्ट, डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस फूड फिर भी ट्रैवल करता है, इंग्रेडिएंट्स फिर भी ट्रैवल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को तो स्पाइस मार्केट कहा ही जाता था. इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को इंडिया में कब्जा करना पड़ गया बहुत सारी जगहों पे स्पाइसेस के ही चक्करों में, और अब उन्हें ही बटर चिकन बहुत पसंद है. सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमने देखा फूड ऑल्सो ट्रेवल्स, इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो ट्रेवल. जैसे कि हमारी स्पाइसेस तो वर्ल्ड फेमस हैं ही हैं, और आज हम किसी भी फूड को प्योरली नॉर्थ इंडियन या प्योरली साउथ इंडियन नहीं बोल सकते, क्योंकि फूड हिस्ट्री इज इटसेल्फ फुल ऑफ एक्सचेंजेस एंड अडैप्टेशंस. सो दैट्स व्हाई फूड कैन साइमल्टेनियसली टेल अस वी आर डिफरेंट एंड येट वी बिलोंग टूगेदर. इंडिया की ब्यूटी सिर्फ इसी बात में नहीं है कि हमारी खाने की प्लेट्स बहुत अलग अलग हैं, कहीं डोसा तो कहीं बटर चिकन, कहीं गार्लिक पनीर और बहुत सारी चीजें. ब्यूटी इज दैट कि ये सारी डिफरेंट प्लेट्स कैन स्टिल बी ऑन द सेम टेबल एंड पीपल कैन ईट टूगेदर, और शायद इसी को कहते हैं वन टेबल मेनी कल्चर्स. धन्यवाद.
1: आप सुन रहे थे वंशिका शर्मा को, जिन्होंने भोजन और संस्कृति पर अपने विचार प्रकट किए. आइए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं गाना मांझा काय पोछे मूवी से.

0: संकल्प है। जय हिंद, जय भारत।
1: आप सुन रहे थे अर्चना सिंह जी को। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक मधुर गीत गुजारिश मूवी गजनी से।

0: तो श्रोताओं, अब बारी है मेरे फेवरेट सेगमेंट की, टुडे इन हिस्ट्री। आज 13 अगस्त है और हमारे भारतीय सिनेमा की एक बहुत ही लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी जी की बर्थ एनिवर्सरी है।
1: श्रीदेवी जी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था और मिस्टर इंडिया उनकी सबसे यादगार मूवीज में से एक है।
0: एंड नाउ मूविंग फ्रॉम सिनेमा टू टेक्नोलॉजी, ऑन 13 अगस्त 1960 द फर्स्ट टू वे टेलीफोन कॉन्वर्सेशन यूजिंग अ सैटेलाइट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू इको 1।
1: एंड सिंस वी जस्ट टॉक्ड अबाउट अ टेलीफोन, लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग वेयर द टेलीफोन इज कनेक्टेड नॉट टू द टेक्नोलॉजी बट टू द हार्ट। तो आइए सुनते हैं दिल का टेलीफोन फिल्म ड्रीम गर्ल से।

0: कुछ रंग सिर्फ रंग नहीं होते, कुछ रंग पहचान बन जाते हैं। और जब बात भारत की हो तो तीन रंग, केसरिया, श्वेत और हरा, हमारे दिल में एक ही तस्वीर बनाते हैं, हमारा तिरंगा।
1: और इसी तिरंगे को हर घर पहुंचाने, हर भारतीय को इससे जोड़ने की खूबसूरत पहल है हर घर तिरंगा।
0: बिल्कुल, तो हमारे युवा श्रोता पूछ सकते हैं, हम भी इस अभियान का हिस्सा कैसे बने? बहुत आसान है, 9 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घर, कार्यस्थल या संस्थान पर तिरंगा फहराइए और अपनी सहभागिता दर्ज करा दीजिए।
1: श्रोताओं, इस वर्ष एक और खास अवसर हमें जोड़ रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष, 150 साल, यानी 1.5 सदी से वंदे मातरम की गूंज पीढ़ियों को जोड़ती आ रही है।
0: तो साथियों, आइए इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं, उस स्वर के साथ जो 150 वर्षों से भारत की आत्मा और मातृभूमि के प्रति प्रेम को आवाज देता आया है, वंदे मातरम। तो सुनते हैं वंदे मातरम फिल्म माँ तुझे सलाम से ए आर रहमान की आवाज में।

0: दोस्तों, आज के युववाणी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए हमसे संपर्क करें yuvvaanifeedback@gmail.com पर, yuvvaanifeedback@gmail.com पर। मैं हूं शिवी।
1: मैं हूं कृष्णा। अपना सुझाव yuvvaanifeedback@gmail.com पर भेजना ना भूले।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियम

0: संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार अपनी मांग बदलते रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश के समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्कन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्कन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा कायदा हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रहा है। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नामों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी और युवा और नागरिक शामिल हुए। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Both the Houses of Parliament have been adjourned sine die. The monsoon session of Parliament, which began on the 20th of last month, concluded today after having 19 sittings spread over 25 days. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the floor of the House was open, but the members did not make the fullest use of the opportunities available to them to raise the voice of the people. He, however, said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
4: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.0.

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार। तो
1: नमस्कार।
0: पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं लोकरंजनी कार्यक्रम लेकर के।
1: बिल्कुल अतुल भाई। और

0: देखिए, जैसा हमारे सभी भाई बहन जानते हैं कि भाई सावन का महीना है,
1: बिल्कुल
0: और सावन का महीना अपने आप में एक बहुत ही मनमोहक महीना होता है, बहुत ही प्यारा महीना होता है, मस्त महीना होता है। और इस महीने का खास महत्व भी है, क्योंकि इस महीने में भगवान भोलेनाथ, जो भाई देवों के देव हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है। और साथ ही साथ एक त्यौहार होता है, जो कि होता है तीज का त्यौहार, है ना।
1: बिल्कुल
0: और भाई रक्षाबंधन भी इसी महीने में
1: आते
0: आखिर
1: हैं।
0: में आता है। और तीज का जो त्यौहार है, वो भाई बहुत ही धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। ख़ास तौर से हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो इस त्यौहार को मनाती हैं। और अतुल भाई, कहते हैं ना कि भाई हम भी कहते हैं कि हमारा जो लोक रजनी कार्यक्रम है, ये विविध रंग अपने आप में समेटे हुए है। और भाई भाव जो है ना, हम सावन के गीत गाते हैं इस महीने में, तीजों के गीत गाते हैं इस महीने में, क्योंकि ये जो भाव है ना, मन में जो उमड़ते हैं, जो भावनाएं आती हैं, उन्हें हम गीतों में पिरो के, प्यारे से लोकगीतों में पिरो के अपने सभी भाई बहनों को सुनवाते हैं और सुनते
1: सुनवाते
0: हैं,
1: हैं।
0: गाते हैं, बजाते हैं। तो क्यों ना आज एक वार्ता अपने इस कार्यक्रम में अपने सभी भाई बहनों को सुनवाई जाए।
1: तो सुनवाते हैं ये वार्ता कि लोकगीतों में हरियाली तीज का महत्व, और इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सावित्री वशिष्ठ।
2: लोकगीतों में हरियाली तीज। विद्वानों के अनुसार लोक संस्कृति ऐसे सभी प्राचीन विश्वासों, कथाओं और मान्यताओं का संपूर्ण योग है, जो सभ्य समाज के अल्प शिक्षित लोगों के बीच आज तक प्रचलित है। इसके परिधि में परियों की कहानियां, लोकानुभूतियां, पुराण कथाएं, अंधविश्वास, उत्सव रीतियां, परंपरागत खेल या मनोरंजन, लोकगीत, प्रचलित कहावतें, कला कौशल, लोक नृत्य और ऐसी अन्य सभी बातें सम्मिलित की जा सकती हैं। लोकगीत। लोकगीत मानव हृदय की वह नैसर्गिक अभिव्यक्ति है, जिसमें भाव, भाषा और छंद की नियमितता से मुक्त रहकर स्वच्छंद रूप से निःशर्त होने लगते हैं। जीवन और जगत में व्याप्त स्थितियों एवं घटनाओं के परिघात से उत्पन्न अंतर भावनाओं की लयात्मक लोकगीतों में प्राप्त होती है। लोकगीत का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये विस्तार पूर्वक कह पाना मुश्किल है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब लय और ताल एक बिंदु पर मिले होंगे, तो गीतों का जन्म हुआ होगा। हर्ष और विषाद की उत्ताल तरंगों से संगीत का स्रोत्र फूटा होगा। लोकगीत का अर्थ अति व्यापक है। ये लोकगीत जीवन की प्रखर अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा अनेक सामाजिक तथ्य उद्घाटित होते हैं। लोकगीतों की धारा का एक उत्स है लोक संवाद, जिससे प्रस्फुटित होकर यह अजस्र धारा निर्बाध गति से पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहती है। अपनी सहजता, सरलता, सरसता, भाव प्रवणता तथा मार्मिकता के कारण यह भावधारा न केवल अशिक्षित वर्ग को अपनी ओर उत्कर्ष करती है, वरन सहृद विद्वानों को भी भाव विभोर कर देती है, आनंद लवित करती है। लोक साहित्य की ये पदात्मक विधा अपनी लय एवं सुर संगीत की सादगी तथा माधुर्य के कारण एक कंठ से दूसरे कंठ में स्वतः ही रस बस जाती है। लोकगीतों की परिभाषा विश्व के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार की है। सार रूप से ये कहा जा सकता है कि लोकगीतों की परंपरा अनादिकाल से निरंतर चलती आ रही है। विद्वानों की मान्यता है कि वैदिक काल से पहले भी ये लोकगीत जनमानस के सहज उद्गारों को बड़े मार्मिक ढंग से अभिव्यक्ति करते रहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकगीतों की परंपरा उतनी पुरानी है जितनी मानव जीवन की कहानी। लोकगीतों की संख्या तथा महत्व की दृष्टि से भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग होता है ऋतु गीत, इसमें सावन और फागुन के गीत आते हैं। दूसरे भाग में गीत पुत्र जन्म, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत आते हैं। भाग तीन में दिनचर्या के गीत, जैसे पनघट, चक्की तथा खान पान संबंधी गीत आते हैं। भाग चार में पर्वों तथा अनुष्ठानों की से संबंधित गीत तथा दुर्गा पूजा, सांझी माता की पूजा, देवोत्थानी एकादशी तथा तुलसी पूजा एवं भजन है। भाग पाँच में विविध गीत, प्रेम गीत, जकड़ी, कृषि गीत, महात्मा गांधी संबंधी गीत, सैनिक परंपरा के गीत तथा अन्य शामिल हैं। सर्वप्रथम हम ऋतु गीतों को ही लेकर हरियाली तीज का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। भारतवर्ष कृषि प्रधान

देश है। यहाँ के लगभग सभी त्योहार ऋतुओं के अनुसार मनाए जाते हैं। हरियाली तीज सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तीज अर्थात सावन अमावस्या के तीसरे दिन मनाई जाती है। इस अवसर के गीत प्राय विरह गीत ही होते हैं, जिनमें श्रृंगार रस का बाहुल्य होता है। बादल, बिजली, पानी, वर्षा आदि का ही वर्णन मिलता है। इसी विषय को लेकर प्राय सैकड़ों गीत मिलते हैं। ये त्यौहार स्त्रियों का ही प्रमुख त्यौहार माना जाता है, परंतु जवान पुरुष भी झूले पर पींग बढ़ाते देखे जाते हैं। कम उम्र के लड़के पुरुष झूले पर रस्सी बांधकर स्त्रियों को ऊंचा ऊंचा झुलाते हैं। हंसी ठिठोली का वातावरण मनमोहक बन जाता है। इन्हीं झूलों के लिए बहुएं अपनी सासों से रेशम की डोर और चंदन की पटड़ी तैयार करवाने के लिए अनुरोध करती है। जैसे आया आया हरी सास सामन मास पटड़ी गढ़वा चंदन की। झूला झूलती स्त्रियों के सास और ननंद की सबसे ज्यादा निंदा करती हैं। जब भाई सावन की कोथली लेकर आता है तो बहन अपने परिवार की किस प्रकार से व्याख्या करती है। सासू तबीरा चूल्हे की आग, ननंद बाजों की बिजली, ससुरा तबीरा काला से नाग, देवर सांप सपलोटिया, राजा तबीरा मेहंदी का पेड़, कदे रचे कदे ना रचे। पियर के परिवार में भी भाभी आलोचना का विषय बनती है। माँ कहे मेरे नित उठाओ, बाबुल कहे छठे मास रे, भाई कहे मेरे काज परोजन, भाभी कहे क्या काम रे। यानी माँ तो कहती है कि हर रोजा, बाप कहता छह महीने में, भाई कहते किसी अवसर पर आओ और भाभी कहती उसका क्या काम है। इस तरह से भाभी जो है नंद के लिए कोई अच्छा मन नहीं रखती है। खैर, स्त्रियां चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं। सावन के महीने में महिलाओं के पियर से कोथली आती है। बुआ बहन सभी के पियर से कोथली का आना आवश्यक माना जाता है। इस कोथली में वस्त्र, मिठाई, फल, सुहाली, पैसे तथा अन्य खाने पीने की बहुत सा सामान होता है। नवविवाहित की पहली तीज पीहर में होती है और इस अवसर पर ससुराल से सिंधारा आता है। इसमें दुल्हन की सुंदर सी झूल पाटड़ी प्रमुख रहती है। उसके अंदर बहन भाइयों के वस्त्र होते हैं, जिसमें कोथली की तरह ही बहुत सा सामान आता है, जिसका दोगुना अथवा चौगुना करके दुल्हन की ससुराल में भिजवाया जाता है। जब झूले डल गए हैं, सहेलियां मिलकर झूलने लगती हैं, गाना गाती जाती हैं।

तीजों की कोथली हो और चुंदड़ी का जिक्र ना चले तो कोई बात नहीं होती। बड़ा भाई जब कोथली लेकर आता है तो माँ की भेजी चुंदड़ी का इस प्रकार से जिक्र आता है। मायर ने भेजी मेरी चुंदड़ी जी, हाँ जी को

अल्लाह तपल्लाए माँ मेरी कुंगरू जी। हाँ जी, कोए बिच मायड़ के सासन बेजी, माँ मेरी चुंदड़ी। हाँ जी।

0: बैठे के हाथ बहुत दुहेलाए माँ मेरी सांस राज अल्लाह तपल्लाए माँ मेरी जो जरूर जी कोई बिच सा सड़के बोल बहुत दुहेला हे माँ मेरी सांस राज गुलगुले पूरे खीर आदि तीज के त्यौहार पर बनाए जाते हैं। ऐसे त्यौहार पहले नहीं होते थे। कहते हैं जब तीज आती है उसके बाद त्योहारों की झड़ी लग जाती है, इसलिए कहते हैं आई तीज बखेरगी बीज आई होली भरलेगी झोली। होली के बाद कोई त्यौहार इस तरह का नहीं आता। ये तीज सबको मुबारक हो, सबके यहाँ झूले डलें और सब मल्हार और गीत गाते रहें।
1: तो अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे डॉक्टर सावित्री वशिष्ठ से इस तीज के महीने का महत्व और तीज के त्यौहार का महत्व। और भाई देखा जाए तो हमारी इस महीने में जो है 15 अगस्त यानी कि भाई आज़ादी का दिवस भी मनाया जाता है, और क्यों ना अपने सभी भाई बहनों को
2: बिल्कुल देशभक्ति गीत भी हम सुनाएंगे। और देखिए बिल्कुल ये जो है हम कोशिश करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति गीत जो है 15 अगस्त तक तो मतलब बजाए ही जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और भाई जब आप बात तीज की थी तो तीज का महत्व भी देखिए, हरियाली तीज का बताया गया है। कोशिश हम करेंगे अपने भाइयों को जो है हरियाली तीज का गीत भी कोई सुनवाएंगे अपने कार्यक्रम में, चाहे वो ग्राम संसार हो या किसी जगत हो। तो सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। जय जननी जय जन्मभूमि, बूटा राम और राम कला सैनी की आवाज़।

0: जब तक सूरज चांद रहेगा रहेगी ऊंची शान तेरी। बहुत ही बढ़िया देशभक्ति गीत हमने अपने सभी भाई बहनों को सुनवाया अतुल भाई।
1: जी
0: और हमारे आज के ये कलाकार थे बोटा राम और रामकला सैनी। और भाई देखिए, तीजों का त्यौहार भी आने वाला है और महीना भी सावन का है, तो हम अपने सभी भाई बहनों से, सभी श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि भाई अब त्यौहार का एक तरह से सिलसिला जो है ना अतुल भाई चालू हो गया है, तो ऐसे में जो है भाई अपना त्यौहार मनाएं और बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है अपने त्यौहारों को आप मनाएं।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ भी आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र और मेरे साथ हैं
3: अनु।
2: नमस्कार अनु।
3: नमस्कार धर्मेंद्र।
2: अनु, अगर खेलों की बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा फोकस जो है वो हॉकी वर्ल्ड कप पे लगा हुआ है, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी शुरुआत होनी है। साथ ही साथ बैडमिंटन में भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भारत की मेजबानी में होने जा रहा है, उसमें भी गिनती के दिन बचे हैं। और इसके अलावा टूरंट कर फुटबॉल टूर्नामेंट तो चल ही रहा है। बहुत सारी खेल खबरें हैं हमारे पास, तो अनु आज शुरुआत करते हैं हम हॉकी से।
3: बिल्कुल सही कहा आपने धर्मेंद्र।

0: नीदरलैंड्स और बेल्जियम की मेजबानी में होने वाली पुरुष और महिला वर्ल्ड कप हॉकी की शुरुआत में अब दिन नहीं बस कुछ एक घंटे बचे हैं। भारत की जश्न आजादी के दिन यानी 15 अगस्त से दुनिया की दिग्गज 16 टीमें विश्व हॉकी का सरताज बनने के लिए अपना सारा कौशल झोंकने वाली हैं। पुरुष वर्ग में 30 अगस्त को यह तय होगा कि खिताब किसके हाथ लगता है। उससे पहले सेमीफाइनल 28 और 29 अगस्त को होंगे। ब्रॉन्ज मेडल मैच 30 अगस्त को खेले जाएंगे। महिला वर्ल्ड कप भी 15 अगस्त से शुरू होगा और फाइनल 29 अगस्त को खेला जाएगा। पुरुष वर्ग में इस बार भारत को पोडियम फिनिश करने का तगड़ा दावेदार माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पूल डी में शामिल भारत को ग्रुप क्लियर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। भारत के ग्रुप में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स भी शामिल हैं। हालांकि उसके बाद नीदरलैंड्स और बेल्जियम जैसी टीमों के सामने मुकाबला कठिन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम का हालिया प्रदर्शन रहा है उसमें किसी भी उलटफेर की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता है। FIH प्रो लीग के प्रदर्शन को पैमाना माने तो थोड़ी उम्मीदें जगती हैं, जबकि नियमित प्रदर्शन का अभाव दिखता है। FIH प्रो लीग 2025-26 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कुल 16 मैच खेले, जिसमें से 4 में सीधी जीत मिली, 5 मैच ड्रॉ रहे, जिनमें से 2 मैचों में भारत ने शूट आउट में बोनस अंक जीते। कुल 7 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा और कुल मिलाकर 9 टीमों में भारत को पाकिस्तान से ऊपर 8वें स्थान से संतोष करना पड़ा। भारत को कुल 19 अंक हासिल हुए। वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल 8वें स्थान पर मौजूद भारत के लिए प्रो लीग में कुछ बेहतर परिणाम भी आए। अपने घर में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यूरोपियन लीग कुछ बेहतर परिणाम लेकर आया। भारतीय टीम ने प्रो लीग का समापन मजबूत इंग्लैंड की टीम पर 3-2 की जीत के साथ किया था, लेकिन उससे पहले रॉटरडम लीग में ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स को रोमांचक मैच में 3-2 से शिकस्त दी। इतना ही नहीं, मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को भी प्रभावी तरीके से 3-1 से हराया। साथ ही पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भी रोमांचक मैच में पहले 4-3 से हराया, दूसरे मुकाबले में 7-1 से करारी शिकस्त दी। तो टीम अब तैयार है विश्व कप में 50 साल से अधिक समय से पोडियम फिनिश के सूखे को समाप्त करने के लिए। हालांकि नए फॉर्मेट में ग्रुप स्टेज का महत्व तो बढ़ गया है। भारत को अपने पूल में इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों का सामना करना है। दूसरे चरण में पहुंचने के बाद शुरुआती ग्रुप के आपसी मुकाबलों का असर भी आगे पड़ेगा। भारतीय टीम के पूर्व फॉरवर्ड खिलाड़ी ललित उपाध्याय भी मानते हैं कि टीम इस बार तैयार है, लेकिन लीग का पहला मैच काफी अहम रहेगा।
1: मैं यही बोलूंगा कि वही टीमें हैं जो पहले ओलंपिक्स में रही हैं। ये एशिया से अगर देखा जाए तो यही पाकिस्तान है और इंडिया है, तो एक पूल में जो है फिलहाल। तो अगर उनको कंपटीशन की बात की जाए और सब कुछ की जाए तो इंडिया टीम हर टीमों को बीट कर चुकी है और उनको बीट करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि कोई उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई रहा हो कि नहीं, इससे हम लोग मैच खेले हैं और हमेशा हारते रहते हैं और हम, या जब इनसे मैच खेलते हैं तो हमारी कभी डिफेंस नहीं काम करती, तो कभी फॉरवर्ड काम करती, ये सब चीज़ें हट गई हैं। अच्छी हॉकी इंडिया अच्छा सपोर्ट कर रही है, प्लेयर्स जितने सीनियर्स प्लेयर्स हैं वो जूनियर्स का अच्छे से तालमेल लग रहा है उनके अंदर, और बाकी टीमें सब अच्छे लय में चल रही है। तो डेफिनेटली इस बार पूरी उम्मीद है कि मेडल आए, इस बार पोडियम फिनिश करें।
2: अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, भारत के ग्रुप डी में पाकिस्तान है, वेल्स है और साथ ही साथ इंग्लैंड की टीम है। ग्रुप कितना कठिन या आसान आपको दिख रहा है?
1: देखिए, अगर आप उस लेवल पे बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे, तो कोई भी ग्रुप कठिन होता है ना, कोई टीम कठिन होती है। उस स्तर पे, उस स्टेज पे एक एक मैच इम्पोर्टेंट होता है ना। हम किसी को हल्का ले सकते हैं ना किसी को भारी ले सकते हैं कि वो टीम अच्छी है टीम खराब है। ये जजमेंट केवल ग्राउंड के अंदर खेल पे ही डिसाइड होता है। खेल से ही आप खेल का रुख पलटते हैं, अपने फेवर में लाते हैं। तो पहली बात तो ये परसेप्शन है कि वो खराब है वो अच्छे हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई कि वर्ल्ड कप पे एक एक मैच अच्छा होने वाला है। हाँ, ग्रुप की बात करें अगर हम, तो ग्रेट ब्रिटेन से जब भी वर्ल्ड कप में मैच हुआ है तो देखा जाए तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उनके ऊपर भी, कि इंडिया टीम उनको एकदम मेजर टूर्नामेंट में दो दो बार ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल के डिसाइडिंग मैच में हराई है। देखा जाए तो दोनों बार ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल में, लास्ट वर्ल्ड कप में भी जो मैच हुआ था वो ड्रॉ हुआ था, जो भुवनेश्वर में मैच हुआ था इंडिया इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का, वो 4-4 के आसपास ड्रा हो गया था, उसमें मैं भी खेल रहा था। तो जब भी इंग्लैंड से मैचेस होते हैं बहुत ही क्लोज मार्किंग में होते हैं। और रही बात एशिया में हम बेस्ट हैं, और पाकिस्तान से हाल ही में मैच हुआ था उसमें भी आपने स्कोर देखा ही था, और अभी प्रो लीग में मैचेस हुए थे तो पाकिस्तान को भी मारे थे वो लोग उसमें। वेल्स की टीम जो होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसको ज़्यादा खेलते हुए लोग देखते नहीं है, तो वो सरप्राइजिंग पैकेज निकल सकती है। लेकिन इंडिया टीम कॉमनवेल्थ गेम में या जब कभी टेस्ट मैचेस हम खेलने जाते हैं तो उसी जो ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर होते हैं वही

0: एक्चुअली वेल्स के भी होते हैं, तो जो टीम में नहीं लग पाते वो उन्हीं की टीम से खेलते हैं, तो प्लेयरों के बारे में आइडिया पता रहता है हमें और ज्यादा कोई चीज प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये सब चीजें प्लेयर एज अ प्लेयर प्रोफेशनली लोग रीड भी करते रहते हैं और परफॉर्म भी उसी के हिसाब से करते रहते हैं।
1: जो इस बार का फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का वो थोड़ा अलग सा है, क्वार्टर फाइनल के मुकाबले नहीं होने हैं, यहाँ से दो टीमें जो है ग्रुप के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर चार टीमों का एक ग्रुप बनेगा, वहां पर हो सकता है कि बेल्जियम या साथ ही साथ नीदरलैंड की टीम हमारे सामने हो सकती है। वो जो आगे का सफर होगा वो किस तरह से रहेगा और क्या प्लानिंग रहेगी,
0: चाहे ग्रुप का स्टेज बनाए चाहे पूल का देखा जाए। अब बात घूम फिर के वही आती है कि हम जब भी टूर्नामेंट में जाते हैं तो हम मैच बाई मैच लेके चलते हैं, हम ये भूलना होता है हमें कि हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं या सेमी फाइनल खेल रहे हैं या हम उस टीम से खेल रहे हैं, बड़ी टीम से खेल रहे हैं छोटी टीम से खेल रहे हैं, क्योंकि फिर वो आपका माइंड डाइवर्ट करती है। आप जो टीम होती है उसके अगेंस्ट में जो कोचेज कैप्टन जो प्लेयर्स होते हैं वो जो स्ट्रेटजी तैयार होती है, जो हमारे वीडियो एनालाइजर होते हैं ट्रेनर होते हैं, प्रॉपर मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो डिसाइड होता है कि हमके अगेंस्ट में ये स्ट्रेटजी यूज करनी है, हमारा केवल ध्यान उसी चीज पे होता है। हमें ये नहीं देखना पड़ता कि हाँ ये ग्रुप स्टेज का मैच है या कुछ मैच है या हम ऊपर अप कर गए, ये सबसे उससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। हाँ, ग्रुप स्टेज में सबसे खास बात एक चीज होती है कि पहला मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जिससे भी हो, ग्रुप स्टेज में पूल में पूल का सबसे पहला मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, इसलिए क्योंकि पूल में जो पॉइंट्स वाले चीजें होती हैं वो अगर पहला ही मैच आप निकालते चले जाते हैं तो लास्ट में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि लास्ट में फिर पाने के लिए कुछ होता नहीं है। तो बड़ी बड़ी टीमें कभी कभी पॉइंट्स पूल में पॉइंट्स के वजह से बाहर होना पड़ता है उनको, तो ये सब चीजों में जो पूल है पूल का पहला मैच चाहे जिससे भी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी तो लोग सबको पता ही है कि जो भी टीमें मिलेंगी बड़ी ही मिलेंगी, उनके अगेंस्ट हम खेल चुके हैं, उनको बीट भी कर चुके हैं, उनसे लूज भी किए हैं, तो लूज किए हैं तो क्या हम सीखे थे, और जब हमें विन किए थे तो हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थी जो कि हमें कंटिन्यू बरकरार रखनी है सब चीजों में, तो यही टेक्निकल चीजें हैं।
1: और ललित भाई एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि हमने प्रो लीग में नीदरलैंड को हराया, जर्मनी को हराया, तो क्या उस परिणाम का पॉजिटिव हमारी टीम के साथ वर्ल्ड कप में कुछ असर जाएगा?
0: क्यों नहीं जाएगा भाई, अगर आप वर्ल्ड की टॉप टीमों में से अगर हरा रहे हैं और अभी भी ये दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर इतना कैलिबर है कि हम केवल बैक टू बैक जो ओलंपिक्स मेडल ला रहे हैं या फिर उसके बाद जो हम ये बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं जिसमें कि टॉप टीमें खेल रही हैं उसमें अगर हम आपको बीट कर रहे हैं तो हम आपके साथ साथ और टीमों को भी एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाता है कि नहीं दे कैन बीट एनीवन, तो उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है कि नहीं इंडिया इज नॉट लाइक अ अंडरडॉग जो पहले लोग बोला करते थे, इंडिया अभी वर्ल्ड में ओलंपिक्स में मेडलिस्ट है, एशिया में डोमिनेट कर रही है और इस टाइम अगर हॉलैंड टीम को बीट करिए तो दे कैन बीट एनी वन एनी टाइम, तो हर टीमों के लिए एक रेड अलर्ट रहता ही रहता है, इंडिया इस टाइम वेरी डेंजरस टीम है।
1: वो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं टीम के और वो कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिस पर कि हमने काम किया है और वो हमारा सकारात्मक पहलू रहेगा और कुछ ऐसे पहलू जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा वर्ल्ड कप के दौरान?
0: पॉजिटिव पॉइंट इंडिया का हमेशा से रहा है कि हमारी जो अटैकिंग शैली रही है काउंटर वो बहुत सही अच्छी रही है शुरू से रही है, और प्लेयर अब सीनियर्स हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, उनको मैच्योरिटी भी है, प्लेयर जो साथ में खेल भी रहे हैं तो उनको पता है कि डिफेंसली भी कैसे काम करना है। तो पहले तो ये कहा गया है कि हम डिफेंस पे अपना प्रॉपर ध्यान दे लें और अटैक तो हमारा अच्छा है ही, तो ये सब चीजों पे जो कोचेस काम कर रहे हैं, ट्रेनर्स काम कर रहे हैं इंडिविजुअली और एज ए टीम, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है कि इंडिविजुअली भी काम करें आप और एज ए टीम भी काम करें, तो इंडिया की ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हुई हैं विगत वर्षों में भी और अभी भी।
1: 1975 में हमने एकमात्र बार वर्ल्ड कप जीता है और 50 साल उस दौर को बीत गए हैं, इस बार कितनी तैयार दिख रही है टीम और क्या विशेष आप देना चाहेंगे टीम को?
0: हमारी विशेष तो हमेशा रहती है भाई, इंडिया टीम जीते पूरे देश की दुआएं उसके साथ है, शुभकामनाएं साथ है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे उनके ऊपर, हमेशा प्लेयर आते हैं जाते हैं लेकिन झंडा वही रहता है और उसी के लिए हम खेलते हैं, वही प्राइड रहता है, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि इतना अच्छा सरकार कर रही है, इतना अच्छा मतलब हॉकी इंडिया कर रही है, ओलंपिक एसोसिएशन कर रही है और मतलब इतनी प्लेयरों को सुविधाएं दे रही है, साई सबसे बड़ा रोल है, तो क्यों नहीं चाहेंगे कि बैक टू बैक जैसे ओलंपिक्स में मेडल आए उसी तरह बैक टू बैक हमारे यहाँ वर्ल्ड कप आए।
1: तो ललित भाई इस बार कहें चक दे इंडिया?
0: चक दे इंडिया बिल्कुल, हर महादेव और ऊपर वाला उनको लक भी दे और उसके साथ साथ उनको अच्छा स्ट्रेंथ भी दे कि जैसे वो अपने सपनों को पूरा कर सके, हम अपने सपनों को नहीं बल्कि पूरे देश के सपनों को पूरा कर सके।
1: भारतीय पुरुष टीम का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स से होगा, फिर उसका मुकाबला 17 अगस्त को इंग्लैंड से और फिर 19 अगस्त को पाकिस्तान से होगा। जहां तक महिला टीम की बात है, ये टीम भी विश्व

0: विश्व कप 2026 के लिए दो अलग अलग जगहों हैदराबाद और चिली के सेंटियागो में क्वालिफायर टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे। प्रत्येक क्वालिफायर से शीर्ष तीन टीमों को सीधे एंट्री मिलनी थी। भारतीय टीम ने हैदराबाद लेग के फाइनल में जगह बनाकर इस कोटे को आसानी से हासिल कर लिया। इसके बाद भारतीय महिला टीम ने इसी साल जून में हुए नेशंस कप को जीतकर विश्व कप की अपनी तैयारियों को पुख्ता किया। भारतीय टीम ने नेशंस कप के फाइनल मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार FIH महिला नेशंस कप की ट्रॉफी अपने नाम की। हम आपको बता दें कि नेशंस कप में भारत ने ग्रुप स्टेज में पहले रोमांचक मुकाबले में अमेरिका को 3-2 के करीबी अंतर से मात दी थी। दूसरे पूल मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। आखिरी ग्रुप मैच में भारतीय टीम ने उरुग्वे पर 3-2 से जीत हासिल की थी। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने एकतरफा खेल दिखाते हुए चिली को 6-0 के बड़े अंतर से धूल चटाई और फाइनल में प्रवेश किया। यानी भारतीय महिला टीम इतिहास लिखने को तैयार है। आइए सुनते हैं कि टीम की कप्तान सलीमा टेटे विश्व कप को लेकर क्या सोच रही हैं।
1: मैं ऑनेस्ट बताऊंगी, मैं नर्वस भी हूँ और एक होता है ना कि हर एक प्लेयर को होता है, बट कोई बात नहीं, नर्वस नॉर्मल है। और मैं यही जब भी ग्राउंड में जाती हूँ तो मैं यही अपने आप को मोटिवेशन देती हूँ, नहीं मुझे अपने टीम के लिए खेलना है और हर एक प्लेयर को सपोर्ट करना है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि नहीं, अगर हार भी रहे हैं तो भी से मैं टीम के साथ हूँ, जीत भी रहे हैं तो भी से मैं टीम के साथ हूँ। मैं हमेशा एक मैं टीम का एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ कि नहीं, मैं हर एक प्लेयर को मैं सपोर्ट करूंगी कि मिस्टेक हुआ तो भी से कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट करेंगे। तो एक पॉजिटिविटी लेकर आना चाहती हूँ टीम में कि अभी तो हम कर ही रहे हैं बट इसको और ज्यादा कर सकते हैं।
0: भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के साथ शामिल है। उसका पहला मैच 16 अगस्त को चीन के खिलाफ होगा। उसके बाद 18 अगस्त को साउथ अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। हम आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने इससे पहले अब तक कुल 8 बार वर्ल्ड कप में भाग लिया है। उसने 1974 में अपने पहले वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, लेकिन अब तक वे एक बार भी खिताब नहीं जीत सकी हैं। शायद इस बार इतिहास बदलने वाला है। चलिए हम सभी मिलकर दोनों टीमों के पोडियम फिनिश की दुआएं करें।

0: वो ये थी बात हॉकी की, और हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। बस 2 ही दिन तो बचे हैं, इसके बाद मुकाबले शुरू होंगे और जंग शुरू हो जाएगी इस बात के लिए कि कौन इस बार विश्व चैंपियन बनेगा। हॉकी के बाद अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ, और भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डोरंट कप इन दिनों भारत के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न मैदानों पर चल रहा है। बता रही है हमारी सहयोगी अनु गुप्ता।
1: भारतीय फुटबॉल के ऐतिहासिक डूरंड कप 2026 का ग्रुप चरण अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और क्वार्टर फाइनल की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। कल यानी 12 अगस्त को ग्रुप बी में इंडियन आर्मी फुटबॉल टीम मोहम्मदेन स्पोर्टिंग क्लब को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मुकाबले में इंडियन आर्मी के लिए पी क्रिस्टोफर कामेई ने 59वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन मोहम्मदेन के लाल थंकीमा ने बराबरी कर दी। इसके बाद इंजरी टाइम में 90वें मिनट के बाद शफील पीपी ने निर्णायक गोल दागकर इंडियन आर्मी को 2-1 की शानदार जीत दिलाई। इस जीत के साथ इंडियन आर्मी ग्रुप बी में तीनों मैच जीतकर 9 अंकों के साथ शीर्ष पर है। कल ही ग्रुप डी में नेरोका एफसी ने एफसी रेंगदई को 3-1 से हराकर अपने ग्रुप चरण का समापन जीत के साथ किया। एफसी रेंगदई ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन नेरोका ने वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। रेंगदई के 2 खिलाड़ियों को लाल कार्ड मिलने के बाद नेरोका ने संख्यात्मक बढ़त का फायदा उठाया। हालांकि इस हार के बावजूद एफसी रेंगदई ने 6 अंकों के साथ ग्रुप डी से क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जबकि नेरोका 4 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अब बात आज यानी 13 अगस्त के मुकाबलों की करें। आज खेले गए ग्रुप सी के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने इंडियन एयरफोर्स एफटी को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन जमशेदपुर ने अपनी बेहतरीन खेल के दम पर बाजी मार ली। हालांकि इस ग्रुप से लगातार 3 मैच जीतकर स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की टीम पहले ही नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इसके अलावा आज के शेड्यूल में बोडोलैंड एफसी, बनाम कार्बी ओंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी और शिलोंग लाजोंग एफसी बनाम लांगसिंग एफसी के बीच भी मुकाबले तय हैं, जो टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के अंतिम दौर को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। अब तक मोहन बगान एसजी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और इंडियन आर्मी एफटी जैसी मजबूत टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं।

0: और फुटबॉल के बाद अब अनु बता रही हैं कि कॉमनवेल्थ फेंसिंग में क्या कुछ चल रहा है।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ये चैंपियनशिप 9 से 14 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। फेंसिंग की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में साबरे, एपी और फाइल तीनों वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। प्रतियोगिता के अंडर 23 वर्ग के पहले ही दिन भारत ने 17 पदक अपने नाम किए, जिसमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। पुरुष साबरे में निखिल वाघ ने स्वर्ण जबकि लक्ष्य बादसर ने रजत पदक जीता। महिला फाइल में जॉयस अशिता ने स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत। महिला एपी में प्राची लोहान ने स्वर्ण जबकि महिला साबरे में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने अंडर 23 सभी 6 व्यक्तिगत मुकाबलों में पोडियम स्थान हासिल किया। सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। दूसरे दिन महिला साबरे में आखिरी ने रजत जबकि जेफरलिन और श्रुति जोशी ने कांस्य पदक जीते। महिला एपी में तनिष्का खत्री ने स्वर्ण, खुशी दाभाड़े ने रजत और प्राची लोहान ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुष फाइल में तेजस पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह भारत ने दूसरे दिन 7 पदक हासिल किए। तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। महिला फाइल में कनाग लक्ष्मी ने स्वर्ण और जॉयस अशिता ने रजत पदक हासिल किया। पुरुष एपी में राजेंद्रन, शांतिमोल, शेरजिन ने स्वर्ण पदक जीता जबकि पुरुष साबरे में सिंह, करण सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी स्पर्धा में कुमारेशन पन्ना, गिशो निधि ने कांस्य पदक जीता। इसके बाद सीनियर टीम स्पर्धाओं में भारत ने 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीतकर अपनी मजबूत स्थिति और भी स्पष्ट कर दी। भारत ने पुरुष और महिला साबरे, पुरुष और महिला एपी तथा महिला फाइल टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते जबकि पुरुष फाइल टीम ने रजत पदक हासिल किया। 4 दिनों बाद भारत के खाते में कुल 35 पदक, 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य दर्ज हो चुके हैं। भारतीय दल की मुख्य उपलब्धियों में श्रुति जोशी का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। नागपुर की 23 वर्षीय फेंसर ने महिला व्यक्तिगत साबरे में कांस्य पदक जीतने के बाद महिला टीम साबरे में स्वर्ण पदक हासिल किया। ये उपलब्धि उनके तेजी से उभरते अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि साबरे, एपी और फाइल तीनों हथियारों तथा पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने लगातार पदक जीते हैं। ये भारतीय फेंसिंग में बढ़ती प्रतिभा और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का संकेत है। लागोस में चल रही चैंपियनशिप 14 अगस्त को समाप्त होगी और अंतिम चरण में भी भारतीय खिलाड़ियों से और पदकों की उम्मीद बनी हुई है।
0: तलवारबाजी के बाद अब बात बैडमिंटन की।

बैडमिंटन की दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ के लिए अब भारत की राजधानी दिल्ली में मंच सज चुका है। इसकी शुरुआत में बस 5 दिन रह गए हैं। सोमवार 17 अगस्त से 23 अगस्त तक दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की रैकेट की गूंज और हर पॉइंट के साथ उत्साह में निकलने वाली आवाज और समर्थकों की तालियों और शोर से दहलने वाला है। भारत पूरे 17 साल बाद इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के शीर्ष शटलर 5 श्रेणियों में मुकाबला करेंगे। पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स के साथ ही मिक्स डबल्स के मुकाबले भी होंगे। हम आपको बता दें कि BWF विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत साल

0: 1977 में हुई थी। शुरुआती दौर में यह टूर्नामेंट कभी कभार ही आयोजित हुआ, लेकिन 1985 से यह हर दो साल में होने लगा और 2006 से इसे हर साल ओलंपिक वर्ष को छोड़कर आयोजित किया जाने लगा। भारत ने इतिहास में पहली बार साल 2009 में हैदराबाद के गाचीबौवली इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। उस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में साइना नेहवाल और जू जोंगसू जैसे दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और भारत को बैडमिंटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिली थी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में पहली बार होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय बैडमिंटन संघ ने खास तैयारी की है। स्टेडियम के जीर्णोद्धार पर लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें नई लकड़ी के फर्श, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और वाटरप्रूफ छत जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। यह आयोजन भारत के लिए साल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और भविष्य के ओलंपिक अभियानों की मेजबानी के दावों को मजबूत करने का एक बड़ा मंच माना जा रहा है। तैयारियों के बारे में बता रहे हैं साई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंबर प्रकाश।
1: यहाँ पर आईजी स्टेडियम में काफी बदलाव, अमूलचूर परिवर्तन किए गए हैं। मेनली वो स्ट्रक्चरल भी हैं, जिसमें कि काफी बिल्डिंग्स के रिनोवेशन थे और बाकी चीजें, रूफ लीकेजेस के इश्यूज थे, तो इन सबको, काफी पुराना ये पूरा स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी बदलावों की ज़रूरत थी, वो सारे बदलाव किए गए हैं। उसके अलावा कई सारे सॉफ्ट अपग्रेड्स भी किए गए हैं, जिससे कि जो हमारे मेज़बान, जो हमारे बाहर के सब आएंगे प्लेयर्स, बाकी दुनिया भर के प्लेयर्स और उनके स्टाफ, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ स्पेक्टेटर्स भी फॉरेन कंट्रीज से आएंगे, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हो एंड दे विल फील वेरी गुड कि ओवरऑल ये स्टेडियम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है।
0: वैसे इस वैश्विक टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार इतिहास रचा है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक कुल 14 पदक जीते हैं। इनमें एक स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। PV सिंधु एक स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 5 पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप इतिहास की सबसे सफल महिला खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 2019 में स्विट्जरलैंड के बासेल में इतिहास रचते हुए फाइनल में जीत हासिल की थी। खिताबी मुकाबले को सिंधु ने एकतरफा कर दिया था और अपनी आक्रामक फुर्ती और बेहतरीन स्मैश के दम पर जापान की नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ मैच 37 से 38 मिनट के अंदर 21-7 के स्कोर पर जीत हासिल की थी।
2: When contesting her third consecutive World Championship final, she becomes the first player from India ever to win gold at the World Badminton Championships.
0: ये BWF विश्व चैंपियनशिप के इतिहास के सबसे एकतरफा फाइनल मुकाबलों में से एक माना जाता है। इस जीत के साथ ही सिंधु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। इससे पहले उन्होंने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में साल 2017 और चीन के नानजिंग में साल 2018 में रजत पदक जीता था। सिंधु के नाम 2 कांस्य पदक भी हैं, जो इस भारतीय खिलाड़ी ने साल 2013 में ग्वांगजू चीन और 2014 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में अपने नाम किया था। दुनिया की पूर्व नंबर एक महिला सिंगल्स खिलाड़ी साइना नेहवाल के नाम पर भी 1 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 2 पदक हैं। साइना नेहवाल इंडोनेशिया के जकार्ता में साल 2015 में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। हालांकि खिताबी मुकाबले में उन्हें स्पेन की प्रतिद्वंदी कैरोलिना मारिन के खिलाफ कांटे के मुकाबले में 21-16, 21-19 से शिकस्त मिली थी। तो भारतीय खिलाड़ियों के पास इस बार मौका भी है और दस्तूर भी है कि अपनी धरती पर दुनिया को अपने रैकेट पावर का एहसास करा दे और पदकों की झड़ी लगा दे। बैडमिंटन के बाद अब चलते हैं स्क्वाश की तरफ और जानते हैं PSA चैलेंजर जो टूर्नामेंट चल रहा है कोलकाता में, उसकी रिपोर्ट।
3: भारतीय फुटबॉल के ऐतिहासिक डूरंड कप 2026 का ग्रुप चरण अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। भारतीय फुटबॉल के ऐतिहासिक डूरंड कप 2026 का ग्रुप चरण अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है।
0: तो वहां पर भी एक से बढ़कर एक मुकाबले चल रहे हैं और जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। टेबल टेनिस की तरफ चलते हैं और टेबल टेनिस में क्या कुछ चल रहा है बता रही हैं अनु।
3: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्वीडन के माल्मो एरिना से आ रही है, जहां प्रतिष्ठित WTT यूरोप स्मैश 2026 टूर्नामेंट खेला जा रहा है।

0: टेबल टेनिस प्रशंसकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। ताजा मुकाबलों की बात करें तो भारत के स्टार खिलाड़ी साथियान ज्ञानशेखरन को पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 64 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें जापान के सोरा मात्सुशिमा ने मात दी। वहीं दूसरी ओर भारत के मानव ठक्कर भी अपना राउंड ऑफ 64 का मैच हारकर सिंगल्स स्पर्धा से बाहर हो गए हैं। भारत की स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा को भी पहले ही दौर में अमेरिका की लिली झांग से 0-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, भारतीय खेमे से दो बेहद शानदार और धमाकेदार खबरें भी आई हैं। पहली बड़ी खुशखबरी विमेन सिंगल से है, जहां क्वालिफायर से आई भारत की दिया चितले ने मुख्य ड्रॉ के राउंड ऑफ 64 में अपनी ही हमवतन खिलाड़ी श्रीजा अकुला को सीधे सेटों में 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर लिया है। दिया चितले अब विमेन सिंगल्स में अकेली भारतीय उम्मीद बची हैं। वहीं दूसरी बड़ी खुशखबरी मेंस डबल्स से है। भारत की नंबर 3 विश्व रैंक वाली जोड़ी मानव ठक्कर और मानुष शाह ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्पेन की जोड़ी के खिलाफ शुरुआती दो गेम हारने के बाद गजब की वापसी की। उन्होंने 3-2 से रोमांचक जीत दर्ज करते हुए सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सबसे बड़ा झटका घरेलू प्रशंसकों और गत चैंपियन टुल्स मोरेगार्ड को लगा है। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी टुल्स को जर्मनी के पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 दिमित्री ने राउंड ऑफ 64 में ही 3-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा जापान की मीमा इतो को भी चीन की किन युक्सुआन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब सबकी नजरें नॉकआउट स्टेज और भारतीय खिलाड़ियों के अगले मुकाबलों पर टिकी है। मानव ठक्कर और मानु शाह की जोड़ी जल्द ही मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स में चुनौती पेश करेगी। वहीं दिया चितले राउंड ऑफ 32 में विदेशी चुनौती का सामना करने उतरेंगी।
1: तो टेबल टेनिस के बाद अब स्क्वाश की बात। पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कोलकाता में चल रहा है, अनु बता रही है इसकी रिपोर्ट।
0: ऐतिहासिक कलकत्ता रैकेट क्लब में 10 से 14 2026 अगस्त तक आयोजित हो रहा एचसीएल स्क्वाश पीएसए चैलेंजर टूर 2026 इस समय अपने चरम पर है। स्क्वाश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित इस टूर्नामेंट में मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरीज के लिए कुल $18,000 की प्राइज मनी दांव पर लगी है। इस प्रतिष्ठित कंपटीशन में इंडिया, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड और जर्मनी सहित 7 देशों के 48 इंटरनेशनल प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट अब अपने सेमीफाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, जहां भारतीय और इजिप्शियन प्लेयर्स के बीच टाइटल के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मेंस ड्रॉ में हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वाश चैंपियनशिप में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने वाले फोर्थ सीडेड सूरज कुमार चंद ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल्स में इजिप्ट के हसन को 73 मिनट चले एक रोमांचक मुकाबले में मात दी और फिर क्वार्टर फाइनल्स में हमवतन ओम सेमवाल को हराकर सेमीफाइनल्स में प्रवेश किया।
1: और अरुण जेटली स्टेडियम में कल DPL के एक मुकाबले में साउथ दिल्ली स्पोर्ट्स स्टार ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को 9 विकेट से हराया। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो धर्मेंद्र और
0: अनु के साथ नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी

0: लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20th and saw a total of 19 sittings over 25 days. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the floor of the House was open, but the members did not make the full use of the opportunities available to them to raise the voice of the people. He, however, said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities. Repeated disruptions affect the trust and aspirations of the people.
2: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के।
1: बिल्कुल
0: और आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन होता है हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। तो भाई हम अपने सभी श्रोताओं की फरमाइश को भी पूरा करेंगे, लेकिन आज हम एक जानकारी भी अपने सभी बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं।
1: बिल्कुल, आज हम अतुल भाई ग्राम संसार के अंतर्गत अपने सभी भाई बहनों को सुनवाएंगे कृषि समाचार दर्शन।
0: स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ये जो बातचीत है कृषि में युवा नवाचार।

0: कार्यों का नवाचार, और इसकी जानकारी ले रही हैं संध्या गुप्ता।
1: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की गूंज वातावरण में सुनाई देने लगी है। हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के स्वरों ने देश में उत्सव के रंग बिखेर दिए हैं। आज का भारत नई सोच, नई ऊर्जा और नए संकल्पों और प्रयोगों के साथ हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में भी युवा अपने कौशल और नई नई तकनीक से खेती की तस्वीर बदलकर नई कहानी रच रहे हैं। आज के अंक में कुछ प्रतिभाशाली युवा नवाचारी अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं।
2: मैं शाश्वत राज एग्रीदूत का को-फाउंडर एक युवा नवाचारी हूँ। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे AI, GIS, IoT इन सब का उपयोग करके भारत के सारे किसानों को हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि उनका लागत कम हो और मुनाफा उनका बढ़े। आपने सुना होगा कि AI, GIS ये सारी चीज़ें अलग अलग फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, सर्वे इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में AI का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जहाँ पे इन AI का बहुत ज़्यादा भारत में उतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन सरकार इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने AI इन एग्रीकल्चर से शुरुआत की। इसमें हमने एक अपना भारत में विकसित खुद का एक LLM बनाया है। LLM इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ज्ञान, ये ज्ञान क्या करता है कि आपको जो भी परेशानी हो अपने कृषि संबंधित, ये 52 से ज्यादा भाषाएं जो पूरे भारतवर्ष में बोली जाती हैं, इसके अलावा कुछ फॉरेन भाषाएं भी, ये उन सबको समझता है। और आप जो भी समस्या आपकी है, जो भी परेशानी है, जैसे कोई बीमारी लग गई, कौन सी बीमारी है, कितना दवा डालना है, क्या दवा डालना है, ऑर्गेनिक का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे एग्रीदूत ऐप पे ज्ञान का उपयोग करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपने GIS टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, जो सर्वे वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। एग्रीकल्चर में भी इसका उपयोग बहुत होता है, भारत भी इस चीज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है। और GIS जो है कोई नई तकनीक नहीं है, फॉरेन कंट्रीज है जैसे US, EU, यहाँ पे बहुत लंबे समय से इसका उपयोग करके मुनाफा इसका लिया जा रहा था। लेकिन भारत में एक समस्या ये है कि ये जो डेटा सेट है वो मिलते हैं वो सारे बाहर से रहते हैं, तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो इसीलिए हमने इस पे काम किया और इसको खुद के डेटा सेंटर्स में प्रोसेस किया, ताकि ये डेटा सेट जो है, जो जैसे NDVI हो गया, या जो आपको बताता है फसल स्वास्थ्य कहाँ अच्छी है कहाँ खराब है, इसके अलावा मिट्टी का जानकारी हो गया कि कहाँ मिट्टी अच्छी है, कहाँ मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा अच्छा है, कहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, मिट्टी में सिंचाई जब आप करते हो तो कहाँ पानी की कमी है, कहाँ अच्छा है, ये सारी की सारी जानकारी आप एक व्योम GIS करके वहाँ पे आप ले सकते हैं। इन बहुत सारे किसान भाई जो हैं उनको एक जगह पे न्यूज़ नहीं मिलती थी कि एग्रीकल्चर में क्या न्यूज़ चल रहा है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ढूंढने पड़ते थे। तो हमारा एक ज्ञान फटाफट करके एक सेक्शन है जहाँ पे आप लेटेस्ट जानकारियाँ जो न्यूज़ सेक्शन में चल रही हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। यूजिंग व्योम GIS, IoT का इस्तेमाल करके हम उनके खेत में पहले ही ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इस तापमान में, ऐसा कंडीशन जो चल रहा है, इसमें आपने जो फसल लगाई है उस फसल में कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर एक बार बीमारी फैल जाती है आपके खेत में तो वो दो तरह से आपका नुकसान करती है। एक तो आपका जो फसल है वो तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ आप उसको जो छिड़काव करते हैं, जो पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, वो आपको ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, जिसके कारण आपका जो लागत जो है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए हम उसको अनुमानित तौर पे बताते हैं ये होने वाला है, ताकि वो प्रिडिक्टिव अलर्ट के बेसिस पे अपना जान सके कि क्या बीमारी है, क्या बीमारी आ रही है, तो वो पहले ही उसका उपचार कर सके, ताकि उनका उससे लागत भी कम हो और फसल नुकसान से भी बच जाए। इस तरीके से हम काम करते हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमारी हो गई है तो आप एप्लीकेशन पे उसका एक फोटो क्लिक करके जान सकते हो क्या बीमारी है, उस बीमारी में कौन सा दवा डालना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल सकती है। आज़ादी दिवस पे मैं सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करता हूँ, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो ये सुन रहे हैं।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रखरदीप जैन है और मैं एक यंग इनोवेटर हूँ और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और भोपाल से एयर फ्लुएंस सॉल्यूशंस नाम की एक ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी भी चलाता हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने भारत और एशिया के अलग अलग हिस्सों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं और अपने फिल्म मेकिंग के दौरान मैंने ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी समय से किया है, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि ड्रोन सिर्फ एक कैमरा नहीं है। ड्रोन एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो हमें जमीन से दिखाई ना देने वाली बहुत सारी चीजों को समझाने और मेजर करने में मदद कर सकती है। आज हम ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ एरियल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए नहीं करते हैं। हमारा फोकस है ड्रोन से डेटा कलेक्ट करना और उस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलना। हम ड्रोन सर्वेइंग और मैपिंग करते हैं, लाइडार से डेटा कलेक्ट करते हैं, 2D और 3D मैप्स और मॉडल्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शंस होते हैं, थर्मल इमेजिंग होती है, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बड़े किसान भाई का खेत है जिसमें सब्जियां या फल या क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, तो हम अपनी इमेजरी से ये बता सकते हैं कि उनके वेजिटेशन की हेल्थ कैसी है। जितना भी बड़ा उनका लैंड हो, 1 एकड़ हो या 100 एकड़ हो, पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं उस वेजिटेशन की हालत कैसी है, और इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि जमीन समतल है या जमीन ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि जब बारिश होगी तो एग्रीकल्चरल लैंड में कहाँ पानी भरेगा और उस पानी को निकालने के लिए हमें कहाँ नहर बनानी पड़ेगी। इससे जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये मालूम होता है कि भाई हमारे इस एरिया में जो हमने फसल उगाई है वहां पे बारिश में पानी भरने की समस्या हो सकती है, तो बारिश आने के पहले ही हम उसे समतल कर दें। आज ड्रोन सिर्फ एक फ्लाइंग कैमरा नहीं रह गया है, यह डेटा कलेक्शन और डिसीजन मेकिंग टूल बन रहा है। भारत जैसे देश में इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत बड़ी हैं। हमारे पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर है। अब हम जान रहे हैं कि कैसे मौसम में तेज बदलाव हो रहे हैं, इसकी वजह से कई किसान भाइयों की फसल को भारी नुकसान होता है। कई बार आपदा आ जाती है, ओले पड़ते हैं, बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, जो उन्होंने इंश्योरेंस करा रखी रहती है बैंक से, या कई बार सरकार सहायता प्राप्त करती है इन आपदाओं में, तो हम ड्रोन के थ्रू जल्दी से एनालाइज कर सकते हैं कितने एरिया में उनका नुकसान है और उसकी रिपोर्ट हम कंसर्न अथॉरिटीज तक तुरंत पहुंचा सकते हैं, जिससे कि किसान भाई को जो भी सरकार से या इंश्योरेंस कंपनी से सहायता मिलनी चाहिए वो प्रोसेस बहुत स्टेप फास्ट हो जाता है। ड्रोन इस प्रोसेस को फास्टर, सेफर और सिचुएशंस में ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस बदलाव में इंडियन स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई एग्रीकल्चरल के लिए ड्रोन डेवलप कर रहा है, कोई सर्वेइंग और मैपिंग के लिए, कोई लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया अब सिर्फ ड्रोन को यूज नहीं कर रहा है, हम अपना ड्रोन इकोसिस्टम भी बिल्ड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रहे। हम चाहते हैं कि हम एक छोटे छोटे गांव, शहर और कस्बे तक पहुंचे। एक ड्रोन से किसी जगह या किसी खेत की खूबसूरत तस्वीर भी बनाई जा सकती है, लेकिन उसी खेत में फ्लाइट से ऐसा डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं जहां से उस जमीन से दुगनी उपजाऊ फसल भी उगाई जा सकती है। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में इंडिया में ड्रोन की भूमिका और भी बड़ी होने वाली है। एक ड्रोन फार्मर को अपनी जमीन को बेहतर समझने में काफी मदद मिल सकती है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जब हम इंडिया की ग्रोथ और उसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग बात यही है कि इनोवेशन अब

0: मेरा नाम मृदुल श्रीवास्तव है। मैं एक युवा नवाचारी हूँ। मैं कुछ स्टार्टअप ग्रोथ से जुड़ा हुआ हूँ। खासकर कृषि पे हम कार्य करते हैं। कृषि को तकनीक की मदद से कैसे हम जोड़ करके किसानों के लिए कम लागत का सौदा कर सकते हैं, जैसे AI हो गया, GIS टेक्नोलॉजी है, सेंसर्स पे हम कार्य करते हैं। तो हमारा जो प्रयास है, छोटे किसान तक तकनीक पहुंचे, इससे उनका जो लागत घटे, क्वालिटी बढ़े। हमने एग्रीदूत की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि किसान को खेती के लिए केवल अनुभव पर निर्भर न रहना पड़े, बल्कि उसे अपने खेत की वास्तविक और समय पर जानकारी भी मिल सके। अब जो तकनीक है वो एक ऑप्शन नहीं बचा है, हमारी अब मजबूरी हो गई है। तो अनियमित मौसम की बात करें, पानी कम हो रहा है, चुनौतियां सामने हमारी खड़ी हैं। ऐसे समय में एग्रीदूत जैसी टेक्नोलॉजी खेती को अधिक स्मार्ट, वैज्ञानिक, टिकाऊ और लाभदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी जो टीम है वो किसानों के साथ जाकर संवाद करती है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है, लाइव डेमो करती है और उसको लाइव दिखाती भी है कैसे आपकी मिट्टी खराब हो रही है, कैसे आपकी फसल खराब हो रही है और कैसे जो हमारी तकनीक है, जो हमारा एप्लीकेशन है, जो वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है। जैसे रबी स्कीम चल रही है, रफ्तार स्कीम चल रही है, तो उससे भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। हमको 5 लाख का, 10 लाख का और अभी हमने हाल फिलहाल में ही एक MSME का हुआ था हैकाथॉन, उसमें हमने 12.5 लाख का एक अच्छा ग्रांट मिला था। तो ग्रांट से हमें काफी हेल्प मिल रही है हमारे स्टार्टअप को सपोर्ट करने में। हमने अब तक करीब लाखों किसानों को पूरे इंडिया में हेल्प पहुंचाई है अपने तकनीक की मदद से। तो हमारे ऐप पे किसान अपनी बोली में, भाषा तो भाषा है, बोली में भी जानकारी प्राप्त कर रहा है। तो हमारा जो मुख्य सेटेलाइट है उसका नाम है व्योम GIS, जो किसानों के खेत को सेटेलाइट इमेजरी के माध्यम से लगातार मॉनिटर करने में हेल्प करता है। किसान हमारे ऐप से अपने खेत को जोड़ने के बाद खेत में किस एरिया में पत्ते पीले हो रहे हैं, कहाँ पानी कम हो रहा है, या मिट्टी में कहाँ नमी कम हो रही है, या मिट्टी में कहाँ पर बीमारियां आ रही हैं, या पौधे में बीमारियां आ रही हैं, या मिट्टी कहाँ अस्वस्थ हो रही है, ये तमाम जानकारी वो सैटेलाइट की मदद से मोबाइल ऐप पर बैठे बैठे ही ले रहता है। तो हमारा जो सिस्टम है इसमें आपको अलर्ट पहले मिलता है कि ये संभावना बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, अत्यधिक वर्षा हो गई है, तो आप कम खर्चे में और ऑर्गेनिक तरीके से अपनी फसल को संभाल पाते हो, बचा पाते हो, इससे आपका लागत घटता है और क्वालिटी आपकी अच्छी होती है। सैटेलाइट बहुत कम खर्चे में होता है, तो एक एकड़ का, एक सीजन का जो किसान का खर्चा बैठता है ना, 200-250 रुपए में वो पूरे 6 मंथ का डेटा अपने ऐप पर प्राप्त कर लेगा। तो हमारा जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, सिर्फ डेवलप नहीं किया है, हमने इसको किफायती भी बनाया है, जिससे किसान इसको यूज कर सके। हम लोग अभी भी ट्रैक कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट पे काम कर रहे हैं कि किस खेत से कितना मिथेन निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। साथ में हम जो कंपनियां हैं जो कार्य कर रही हैं इंश्योरेंस के ऊपर, उनको भी हम ट्रैक करते हैं, भाई कहाँ पे किस खेत में किसान ने पराली जलाई, तो उनको हम इंटीमेट करते हैं। गवर्नमेंट के जो अधिकारी वहां जाते हैं उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं। तो हमने लास्ट रबी सीजन में सरसों पे, चने पे, गेहूं पे कार्य किया और उन 20-25 FPO ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। उनको टाइम बाय टाइम अलर्ट मिला है उनके फसल के बारे में, बुआई के बारे में, कौन सी ब्रीड सीड लगाना है, कब जुताई करनी है, कब बुआई करनी है, कब दवा डालनी है और कौन सी बीमारी का अलर्ट उनको मिला है, मौसम का अलर्ट मिला है। मंडी रेट भी हम देते हैं किसानों को। हर किसान प्रति एकड़ कम से कम 3 से 4 हजार रुपये बचाया है और उसको 20 से 30 किलो, कुछ लोगों को 50 किलो तक का फायदा हुआ है। तो आप समझो कि एक 200 रुपए के सब्सक्रिप्शन के साथ हम इस ऐप पे ये सुविधाएं मिल रही, तो कितना फायदेमंद उसके लिए हो रहा है। और वो सच में हम पे उसका डॉक्यूमेंटेशन भी है, वीडियो भी है और प्रूफ भी, रिपोर्ट भी है कि उनको सच में उससे फायदा हुआ और मिट्टी का स्वास्थ्य भी इम्प्रूव हुआ है। सुखद बात है कि हाँ, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मंडी का रेट नहीं मिल पाता पूरे इंडिया का, तो हमने उसको देखते हुए अपने ऐप पर लाइव किया है इस फीचर को कि आप मंडी रेट पूरे भारत का देख सकते हो। और हम इस पर ट्राई कर रहे हैं कि हम AI की हेल्प से इसको ऐसा कुछ बना पाए जहाँ पे आप मंडी रेट को आने वाले हफ्ते में चेक कर पाओ, संभावना क्या हो सकती है। किसान मेला बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए है। हम बहुत लकी हैं कि भारत सरकार टाइम टाइम पे स्टार्टअप्स को स्पॉन्सर करती है, यहाँ पे हम जाते हैं और वहां से उनसे मिलते नहीं, उनके फीडबैक लेते हैं, समस्याएं सुनते हैं, उन्हें क्या चाहिए। हम जो कुछ भी डेवलप किया हुआ या करने वाले हैं वो हम किसान से पूछ कर ही किया है, समस्याओं को सुनने के बाद ही किया है।
1: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: तो अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे कृषि में युवा नवाचारियों का नवाचार, और भाई ये समाचार दर्शन के अंतर्गत आप ये बातचीत सुन रहे थे। और जैसा कि हमारे सभी भाई बहनों को पता है कि

0: आज हमारा जो है बृहस्पतिवार का दिन होता है और आज का दिन होता है हमारा खास, जो कि होता है SMS पर आधारित कार्यक्रम। तो अतुल भाई, हमारे पास आज के जो कलाकार हैं उनके लिए भी SMS आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, देखिए आज के हमारे कलाकार हैं क्रमपाल शर्मा और मंजू शर्मा, इनके लिए SMS आया है चंडीगढ़ से। भेजने वाले हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा, उनका पूरा परिवार, गांव मुरादगढ़, जिला करनाल, हरियाणा से SMS भेज रहे हैं रमेश कुमार कंबोज और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है गांव चौधरीवास, हरियाणा से। भेजने वाले मांगेराम सतौड़, शुभम, यश कुमार, उनका पूरा परिवार। पटेल नगर मेलौट से SMS भेज रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया और उनका पूरा परिवार। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से SMS भेज रहे हैं रवि कुमार राहुल और उनका पूरा परिवार। पलारी छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं नितेश कुमार देवांगन उनका पूरा परिवार। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं हीरा मणि वर्मा और इनका पूरा परिवार।
0: ये SMS हमारे पास आया है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, भेजने वाले भाई हैं रजाक मोहम्मद और इनके परिवार के सभी सदस्य। भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से भी हमें SMS आया है, भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और इनके परिवार के सदस्य। और ये SMS हमें मिला है गांव बड़दू छेना जिला भिवानी हरियाणा से, भेजने वाले भाई हैं महीपाल श्योरण नीरू और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये SMS हमें मिला है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, भेजने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और इनके परिवार के सभी सदस्य। दादरी गेट भिवानी से भी हमें SMS भेजा है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा और परिवार के सभी सदस्यों ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और परिवार के सभी सदस्य। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से SMS भेजा है विक्रम कडवासरा, सचिन और परिवार के सभी सदस्यों ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से SMS भेजा है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और परिवार के सभी सदस्य। दुबिहा नवेदा जिला गाजीपुर से भी SMS आया है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और परिवार के सभी सदस्यों का। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर अंसारी ने भी हमें SMS किया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से।
1: गांव लोहवर ठाकुरवाला से फरमाइश भेज रहे हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं देवशंकर तामूरिया, अजय तामूरिया उनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है पायल बहन हांडी खेड़ा से, भेजने वाले हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा उनका पूरा परिवार। बेहर वाला खुर्द सिरसा से फरमाइश भेज रहे हैं बलवंत जाखड़, ममता जाखड़ उनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश भेज रहे हैं सुल्तान सिंह ताड़, कृष्ण मुकेश और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है जटवाड़ा गाजीबाद से, भेजने वाले हैं शीशपाल अकेला और उनका पूरा परिवार। गाँव खोकरावली श्री गंगानगर से फरमाइश भेज रहे हैं विनोद बारसा, रोशनी बारसा उनका पूरा परिवार। MLB रोड ग्वालियर से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और उनका पूरा परिवार। कुगदा कुम्हारी छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं बलराम बया, दामनी बया उनका पूरा परिवार। खुर्जा उत्तर प्रदेश से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमें भेजी है दादा बाबू रोड झारखंड से, भेजने वाले भाई हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज और इनके परिवार के सभी सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजने वाले भाई हैं दिनेश वर्मा और कर्णा वर्मा। आदर्श नगर मलौट पंजाब से ये फरमाइश भेजी है राज शर्मा, मीना शर्मा और परिवार के सभी सदस्यों ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से फरमाइश भेजने वाले भाई हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी और परिवार के सभी सदस्य। गांव फरांसी जिला हिसार से फरमाइश भेजी है राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। महेर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये फरमाइश हमें भेजी है अभिजीत गवणकर, राही और श्रीमती सरिता गवणकर ने और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से हमें फरमाइश भेजने वाले हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और इनके परिवार के सदस्य। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से फरमाइश भेजने वाले भाई हैं यशोधरा रामटेक और पंजाब रामटेक के और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: भोला कलोनी गरौना जिला करनाल हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र कुमार जयजान का पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, भेजने वाले हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं रामचरण विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। बक्सर बिहार से सफरुद्दीन अंसारी और उनके पूरे परिवार की भी हमें फरमाइश मिली है। डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी और

0: परिवार की भी हमें फरमाइश मिली है। सारिमपुर बक्सर से हमें फरमाइश भेज रहे हैं राजेश डी अंसारी और उनका पूरा परिवार। गांव चौलदा बागपत उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से फरमाइश भेज रहे हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और इनका पूरा परिवार। जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास मई है दुर्गा कॉलोनी हांसी से भेजने वाले हैं राजू मिगलानी और इनका पूरा परिवार। संबलपुर कांकेर से फरमाइश भेज रहे हैं फागुराम यादव और इनका पूरा परिवार। जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं श्रवण कुमार प्रजापति और इनका पूरा परिवार।
1: ये फरमाइश हमें भेजी है आसाम से भेजने वाले भाई हैं हितेंद्र दास। सलेहा भाटा महासमुद छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रही है जीतू ध्रुव और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल और परिवार के सभी सदस्य। जिला नांदेड़ इटाला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और परिवार के सभी सदस्य।
0: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा की आवाज़ में ये देशभक्ति रागनी।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा की आवाज़ में ये देशभक्ति रागनी। और इसी देशभक्ति रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।

0: अभी आप ग्राम संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19%, जबकि राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार तो संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा होने नहीं दी।
3: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर

0: दिन बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर के गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पिछले 2 साल में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा अहिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में आंधी चलने की आशंका है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत ने पुरुष सेबर, महिला सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
4: नमस्कार।
3: गौतम
4: जी, प्रतिमा,
3: देखिए खेती केवल मिट्टी, पानी और बीज का मेल नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं।
4: बिल्कुल,
3: इसमें प्रकृति के अनगिनत जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे और पक्षी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

0: यही जैव विविधता हमारी खेती को टिकाऊ और प्रकृति के अनुकूल बनाने में मदद करती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, और आज का विषय भी हमारा यही है, टिकाऊ कृषि हेतु जैव विविधता। और साथ ही साथ हम लोग राष्ट्रीय बंबू मिशन की भी बात करेंगे और अपने जो श्रोतागण हैं उनको कृषि सलाह भी देंगे, और आजादपुर मंडी से जो प्राप्त भाव होते हैं हमारे पास वो भी हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे।
0: यानी कि बहुत सारा खजाना लेकर आए
1: जी
0: हो आज आप। और एक चीज और मैं बता दूं,
1: जी
0: साथ ही हम अपने किसान भाई बहनों को एक देशभक्ति गीत भी सुनवाएंगे।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और 15 अगस्त आने ही वाला है
0: हाँ
1: और ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। सबसे जो खास बात है प्रतिमा जी, इतनी विविधताओं के बावजूद हम सभी भारतीय हैं और देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का जो प्रेरणा है वो देती है।
0: बिल्कुल। और देखिए ना, 15 अगस्त आने ही वाला है, और जब भारत विकास, इनोवेशन और ग्लोबल लीडरशिप की बात करता है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हमारी राष्ट्रीय एकता और नागरिक चेतना का महत्व दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: गौतम, हमारी केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकारें हो, किसान के हित को बड़ा ध्यान रखती हैं। हर सरकार ये चाहती है कि हमारे किसान भाई बहनों की जो खेती है, उत्पादन है, कई गुना बढ़े और उनकी पूंजी बढ़े, ताकि हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और देखिए, इसीलिए तमाम योजनाएं भी लागू करती हैं। इन्हीं में से एक योजना है राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो NBM, जिसका उद्देश्य देश में बांस की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देना है। और साथ ही इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं कि किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, बांस की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना।
1: बिल्कुल बहुत सही कहा आपने प्रतिमा जी। बांस की खेती जो है वो पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है और मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। और बांस से बने उत्पाद की बात करें अगर हम लोग, तो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक से पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंचती है। तो ये हम कह सकते हैं कि बांस मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा भी मिल सकता है।
0: बहुत अच्छी बातें बताई गौतम। और बांस आधारित उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और देखिए, हमारे जो युवा साथी हैं या हमारे वो किसान भाई बहन जिनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, वो भी चाहें तो बांस के जो उत्पाद होते हैं उन्हें बनाकर अच्छा खासा बाजार से अपनी आय का अर्जन कर सकते हैं। तो खास बात यही कह सकते हैं कि बांस को हरा सोना भी कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और बांस मिशन जो है वो किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगर बांस की खेती और इसके उत्पादों को सही तरीके से बाजार में तकनीकी सहायता मिले तो किसानों और देश दोनों के लिए ये लाभकारी साबित हो सकता है प्रतिमा जी।
0: बिल्कुल। और एक लाइन में और भी कहूंगी कि बांस से बने उत्पादों का मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्धता बढ़ाना भी हमारे किसान भाइयों के हाथों में है, हमारे युवाओं के हाथों में
1: जी
0: है, और इसके उत्पाद बाजार में लाएं तो अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। गौतम, हमने शुरू में बात की थी कि आज हम टिकाऊ कृषि हेतु जैव विविधता पर बात करेंगे। तो देखिए, बात करने के लिए हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रुचि बंसल, वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि जैव विविधता क्या है?
2: देखिए, जैव विविधता शब्द से ही पता चलता है।
0: हाँ।
2: जैव माने की जीव और विविधता माने उनमें पाए जाने वाली भिन्नता। तो हमारे चारों तरफ जितने भी जीव जंतु हैं उनमें पाए जाने वाली जो विभिन्नता है वो ही जैव विविधता है। अब यदि हम कृषि के संदर्भ में बात करें तो हमारे किसान भाई बहन जो भी फसलें लगाते हैं वो विभिन्न तरह की फसलें जो हैं वो जैव विविधता का हिस्सा है। जैसे वो अनाज भी लगाते हैं, दलहन लगाते हैं, तिलहन लगाते हैं, और इन फसलों की भिन्न भिन्न किस्में लगाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो उत्तर भारत में अलग किस्में लगाई जाती हैं और दक्षिण भारत में अलग तरह की किस्में लगाई जाती हैं। तो ये सभी जो किस्में हैं ये हमारी फसलों की विविधता है। अब यदि हम मिट्टी की बात करें तो इसी तरह से हमारी मिट्टी में भी बहुत तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बहुत से बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, बहुत से फंगस भी पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं ये हमारी मिट्टी को विविध बनाते हैं। यदि आप देखें तो मिट्टी भी बहुत तरीके की होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो हर तरह की जो मिट्टी है जो अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है, इसमें पाए जाने वाली जैव विविधता भी अलग अलग होती है। अब यदि हम कीट पतंगों की बात करें तो हमारी फसलों में भी इतने सारे कीट पतंगे लगते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारी फसलों के लिए लाभ

0: सहायक भी हैं,
1: जो मित्र हैं हमारे
0: जो
1: फसलों
0: मित्र
1: के।
0: हैं हमारी फसलों के, तो उनकी जो विभिन्नता है वो भी इस जैव विविधता का हिस्सा है। और ये जो विभिन्न तरह की विभिन्नता है, ये ही हमारी विभिन्न तरह की उत्पादकता को जन्म देती है, तो यही हमारी जैव विविधता है।
1: बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में आपने बताया कि जैव विविधता क्या होती है। साथ ही इसमें शब्द जुड़ता है कि टिकाऊ कृषि क्या है, तो टिकाऊ कृषि के बारे में भी बताएं।
0: टिकाऊ खेती वह खेती है जो लंबे समय तक चले और जिसका समन्वयन हो आर्थिक भी और हमारी पारिस्थितिकी स्थिरता में जो योगदान दे। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आज की डेट में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। छोटे समय में तो वो रासायनिक खादें बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हैं, अच्छी उत्पादकता देती हैं, मगर लंबे समय में यदि देखा जाए तो वो आपकी मिट्टी को खराब कर रही हैं। तो इस तरह की खादों का सीमित उपयोग और ऐसी सभी प्रैक्टिसेस अपनाना जो कि हमारे पर्यावरण के साथ संतुलन में हो और साथ में लागत भी दें, तो इस तरह की खेती को हम कहते हैं टिकाऊ खेती।
1: डॉक्टर रुचि, क्या जैविक खेती भी जैव विविधता के साथ हम इसको जोड़ते हैं?
0: देखिए, टिकाऊ खेती है, इसका आधार है जैव विविधता। आप जितनी तरह की फसलें लेंगे, अगर आप अनाज के बाद अनाज ले रहे हैं तो मिट्टी की उर्वरकता में फर्क होगा, आपको बाहर से ज्यादा रासायनिक खाद डालनी पड़ेगी। अगर आप किसी एक अनाज के बाद में दलहन ले रहे हैं तो वो प्राकृतिक रूप से आपका जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बढ़ाता है। सीधे तरीके से ही जो टिकाऊ खेती है वो जैव विविधता पर आधारित है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कीटों की, जीवों की और मित्रों की बात की जो हमारी खेती के लिए मित्र कीट होते हैं, तो किसान के खेत में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से कीटों और जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है?
0: देखिए, वैसे तो जब बात विविधता की आती है तो सभी जो जीव जंतु कीट पतंगे हैं उनका अपना एक योगदान है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो जो कृषि में लाभ देने वाले जीव हैं, जैसे केंचुए हो गए या मधुमक्खी हो गई,
1: जी
0: तितलियां हो गई, जो मुख्य रूप से परागण का काम करती हैं, तो इनकी विविधता बने रहना जरूरी है। तो हमारे किसान भाई बहन जितने तरह की फसलें लगाएंगे उससे ये विविधता बनी रहेगी, तो इसके लिए फसल विविधीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: तो डॉक्टर साहब, कई बार ये भी होता है कि किसान भाई अपने खेत में रासायनिक खादों का छिड़काव कर रहे हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इन जीवों को भी हम सेफ रख सकें?
0: देखिए, पहला तो है कि हम रासायनिक खादों का उपयोग कम
1: कम
0: करें,
1: से कम करें।
0: जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका भी उपयोग हम कम करें, जो आपके जैविक पेस्टिसाइड्स हैं उनका उपयोग आप ज्यादा करें, जहां आवश्यकता है उतना ही आप ये जो फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है उतना ही अपनी फसल में डालें। यदि आप ज्यादा डालते हैं तो उससे हानिकारक कीट हैं, उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो विभिन्नता है वो बढ़ती है। जब हम बहुत अधिक मात्रा में किसी भी केमिकल का, रसायन का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो उसके रेस्पॉन्स में ये जो कीट पतंगे हैं ये भी उतनी तेजी से खुद को परिवर्तित करते हैं और नई नई प्रजातियां बनती जाती हैं। जैसे कि हमने कोरोना के केस में भी हमने अपने चारों तरफ देखा कि पहले कोरोना का एक स्ट्रेन आया, फिर कोरोना के कई स्ट्रेन आते चले गए। इसी तरह से हमारे जो पौधे हैं उनमें पाए जाने वाले जो विषाणु हैं वो भी इसी तरह से, यदि हम बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं तो उसके विरुद्ध में प्रतिरोधी हो जाते हैं और वो नई किस्में बना लेते हैं। तो हमें जब जितना प्रयोग की आवश्यकता है अपनी फसलों में उतने ही रसायनों का प्रयोग करना है, और इसी तरह से न सिर्फ रोगों के विरुद्ध बल्कि अपनी मिट्टी में भी जो रासायनिक खाद है, जहां और जितनी आवश्यकता है हमें उतनी ही रासायनिक खाद डालनी है। साथ में इस रासायनिक खाद के अतिरिक्त में जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे जैविक खाद का भी प्रयोग करें।
1: जी डॉक्टर साहब, टिकाऊ खेती के लिए अगर हम बात करें तो किसान भाइयों के लिए क्या पोषक तत्वों का प्रबंधन पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये जो हम जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब हमारे जो पौधे हैं उनको पोषण देते हैं और पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और हमें अच्छी पैदावार मिलती है। यदि हम अनाज के बाद में दलहन लगाएं तो जो दलहन है इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और उन नोड्यूल्स के थ्रू ये जो वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है उसका स्थिरीकरण करती हैं। तो एक तरह से आपके खेत में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन मिल जाती है, तो इसकी वजह से आपका जो दलहन है उसमें आपको इनिशियली बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यदि हम ये तरीके अपनाएं, हम एक तो अपनी लागत बचा सकते हैं, हमें कम फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, और दूसरे

0: द्वारा जो हमारी मिट्टी है उसमें प्राकृतिक रूप से पोषण प्रबंधन हो रहा है। इसी तरह से यदि हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस जो है वो मिट्टी के साथ में बंध जाता है और जो हमारे पौधे हैं उनको ग्रोथ के लिए नहीं मिल पाता। तो ऐसे बहुत सारे बाजार में फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया उपलब्ध हैं जिनको अगर आप अपनी मिट्टी में डालें तो वो जो आपकी मिट्टी में पहले से उपस्थित फास्फोरस है उसको घुलनशील बना के पौधे को दे देता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है और पौधे की पैदावार अच्छी होती है। तो इससे आप जो भी फास्फोरस डाल रहे हैं, SSP डाल रहे हैं या DAP डाल रहे हैं तो उसकी लागत कम हो जाती है। और फिर यह प्राकृतिक तरीका भी है, तो ये पर्यावरण के तौर पे भी यदि हम देखें तो ये हमारे पर्यावरण को फायदा देने वाला है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये भी एक सवाल आता है कि जब भी कोई किसान भाई अपनी खेती करने जा रहा है या खेत की तैयारी कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपनी मृदा की भी जांच करा लेनी चाहिए।
0: यदि हम हर बार फसल लगाएंगे और हर बार उसी मात्रा में रासायनिक खाद डालते रहेंगे तो हमें कई बार ये भी नहीं पता होता कि क्या हमारी फसल को उतने खाद की आवश्यकता है या नहीं है। यदि हम समय समय पर मिट्टी की जांच कराते रहेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो मिट्टी है इसमें किस पोषक तत्व की कमी है और कौन से पोषक तत्व जो है वो सफिशियंट मात्रा में है। तो आप जिस पोषक तत्व की कमी है आप सिर्फ वही मिट्टी को खाद से या जैविक खाद से रासायनिक खाद से उसकी पूर्ति कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर मिट्टी की जांच हमें करनी ही है तो किसान भाइयों को छोटे से शब्दों में ये भी बता दें कि किस तरीके से वो अपने खेत की मिट्टी निकालें और कितनी मात्रा में लेके जाएं और लैब में उसकी जांच कराएं।
0: जैसे मिट्टी की जांच के लिए हम यूजुअली 15 से 30 सेंटीमीटर तक का जो एरिया है उसमें से मिट्टी लेते हैं। ये फील्ड की टॉप सॉइल कहलाती है। ज्यादातर पौधों की जो जड़ें होती हैं वो इस हिस्से से ही जो पोषक तत्व है उनका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो ये आप अपने खेत के भिन्न भिन्न हिस्सों से उनको मार्क कर लें और भिन्न भिन्न हिस्सों से आपको सैंपल इकट्ठे करने हैं, उन सैंपल को मिक्स करना है, फिर उस सैंपल के फिर से आपको कई हिस्से करने हैं, फिर उन्हें मिक्स करना है। इस तरह से आपको एक सैंपल बनाना है और उस सैंपल को आपके आसपास जो भी सरकारी संस्था जो मिट्टी का जांच कर रही है आप वहां अपने सैंपल दे सकते हैं। तो वैसे तो आपको रिपोर्ट में लिखा होता है, आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा जो पोषक तत्व है वो कम मात्रा में है या नहीं है। अदरवाइज आप किसान कॉल सेंटर या फिर आप जो भी लैब है जहां आप जांच के लिए दे रहे हैं वहां पे बात करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपको कितनी खाद और कब डालनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और जैव विविधता की बात हो या पर्यावरण की बात हो वो और खेती की बात हो तो हमारी मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान और मिट्टी ही हमारी माँ है कहा जाए तो। तो डॉक्टर साहब, पर्यावरण पर जैव विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, जैसे हमने अभी बात की टिकाऊ खेती की, तो टिकाऊ खेती वही खेती है जो पर्यावरण के साथ में समन्वय में चलती है। यदि हम पर्यावरण पे किसी भी तरह का बहुत ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ना ये सिर्फ केवल हमारी मिट्टी को प्रभावित करता है, हमारे वायु को भी प्रभावित करता है और हमारे जल को भी प्रभावित करता है। अभी देखिए बहुत ज्यादा बारिश का सीजन है तो होता क्या है कि आपने खाद डाला और यदि बारिश हो गई तो उसमें से सिर्फ खाद का कुछ हिस्सा पौधे द्वारा लिया जाता है, बाकी का जो हिस्सा है वो लीचिंग के तरीके से बह जाता है और वो बह के हमारे पानी में मिल जाता है। तो यदि ये पानी में मिल गया तो इसने न सिर्फ मिट्टी को प्रदूषित किया बल्कि इसने पानी को भी प्रदूषित किया। और यदि हमारे मवेशी उस पानी को पीते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस खाद्य श्रृंखला से होता हुआ हम तक पहुंच जाता है। पहला चीज तो है कि हम रसायनों का उपयोग कम से कम करें, चाहे वो रसायन खाद के तरीके से हैं, चाहे वो रसायन आपके पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के तरीके से हैं। कीटनाशकों की भी बात करें या वीडिसाइड्स की भी बात करें, जहां तक पॉसिबल हो जो आपके जैविक विकल्प हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर आपको खाद इस्तेमाल करनी भी है तो अगर आप 3 डोज देते हैं तो आप 2 डोज जो है वो एक केमिकल फर्टिलाइजर का और 1 डोज जो है वो आप किसी जैविक खाद का दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना उत्पादन भी बनाए रख सकते हैं और साथ में पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आज के दौर में देखा जाए तो हमारी सरकारें यही चाहती हैं कि हमारे किसान भाइयों का जो उत्पादन है वो कई गुना बढ़कर मिले, और कई बार किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा उत्पादन की चाह में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग भी कर लेते हैं, तो ऐसे में हमारी जैव विविधता या पर्यावरण पर क्या नुकसान हो सकते हैं?
0: जैसे बहुत अधिक केमिकल का इस्तेमाल तो मैंने आपको बताया, आजकल खाने का भी चेकिंग किया जाता है, उसमें एक लिमिट के बाद यदि पेस्टिसाइड रेजिड्यू है इसका अर्थ है कि वो खाने लायक नहीं है। तो यदि हम बहुत अधिक केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि उस पेस्टिसाइड का रेजिड्यू हमारे

0: खाने तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो यदि वो पेस्टिसाइड हम तक पहुंच रहा है या हमारे मवेशी तक पहुंच रहा है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सीधे तौर पे ही बहुत ही हानिकारक है। और इसके अतिरिक्त यदि हम पर्यावरण के विभिन्न घटकों की बात करें तो कई बार हम स्प्रे करते हैं, एरोसोल भी स्प्रे करते हैं, तो वो आपकी वायु को भी प्रभावित करता है। फिर आपने यदि बहुत अधिक खाद डाला है, केमिकल डाला है, तो वो आपकी मिट्टी को भी प्रभावित करता है और वो बारिश के थ्रू या लीच आउट होके पानी को भी प्रदूषित कर
1: और
0: सकता
1: जीव
0: है।
1: जंतुओं पर भी बड़ा प्रभाव डालता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। तो ये न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और सभी के लिए बहुत ही हानिकारक है।
1: तो डॉक्टर साहब, ऐसे में हमारे किसान भाइयों या हम सब नागरिकों का क्या दायित्व बनता है कि हम अपने पर्यावरण को भी बचा के रखें, जैव विविधता को भी सेफ रख सकें?
0: देखिए, सबसे पहले तो विभिन्न विभिन्न किस्में लगाएं,
1: जी
0: विभिन्न तरह की फसलें लगाएं, जहां तक हो सकता है मिट्टी की जांच कराएं, जहां तक हो सकता है वहां पे जैविक खादों और जैविक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप इस्तेमाल करें, जहां जरूरी है वहां आपको रासायनिक खादों का प्रयोग करना ही होगा और सिर्फ आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि लग रहा है कि बहुत तेज पैदावार हो जाएगी तो हमने बहुत ज्यादा यूरिया डाल दिया या बहुत ज्यादा DAP डाल दिया, ऐसा नहीं करना है,
1: जैविक खादों का ज्यादा प्रयोग करें।
0: करना
1: तो
0: है।
1: डॉक्टर साहब,
0: जी
1: कुछ फसलें ऐसी भी होंगी जो हमारी मृदा को भी मजबूत बनाते हैं और पर्यावरण में भी बहुत लाभदायक होते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं? या मिलेट्स की बात करें।
0: ये बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी
0: देखिए, जैसे एक तो अभी मैंने दलहन ही बताया,
1: हाँ
0: दलहन तो सबसे पहले आपका प्राकृतिक रूप से ही जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है,
1: जी
0: तो एक तरह से आपकी मिट्टी को नेचुरल तरीके से ही खाद मिल जाती है। दूसरा, यदि हम बात करें मिलेट्स, तो आजकल सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं और श्री अन्न जिसे कहा जाता है, इस पर बहुत जोर है। तो देखिए, एक तो श्री अन्न उगाने का फायदा ये है कि इसके लिए जो आपके इनपुट्स हैं, माने कि खाद है या जो जल है, इनकी आवश्यकता कम होती है, तो इसमें जो है कुदरती तौर पर ताप के या सूखे के लिए बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता है, तो आपको कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिल सकता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। और दूसरा क्या है कि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हैं। यदि हम आजकल बाजार को देखें तो बाजार आजकल इनके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट से भरा हुआ है।
1: कई तरीके के उत्पाद
0: जी
1: मिल रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं हमें।
0: आटे से लेके कुकीज और आप देखें तो हर चीज में अभी मिलेट है। तो यदि हमारे किसान भाई इन मिलेट्स को उगाते हैं तो न केवल लागत के तौर पे बल्कि क्वालिटी के तौर पर भी उनको इससे फायदा मिलेगा, और यदि इनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं तब तो
1: कई गुना उनको पैसा भी
0: जी बिल्कुल
1: मिलेगा।
0: वो
1: जी
0: स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और इससे बहुत विभिन्न विभिन्न तरीके के उत्पाद बना
1: ले
0: सकते
1: सकते हैं।
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या फसल विविधीकरण या मिश्रित खेती करके भी हम अपने जैव विविधता को आगे बढ़ा सकते हैं या उसको सेफ रख सकते हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल। देखिए, फसल विविधीकरण जैसे वही चीज है कि विभिन्न विभिन्न फसलों को उगाना, तो यदि हम विभिन्न तरह की फसलें उगाते हैं तो ये आपकी जैव विविधता भी बढ़ाता है, आपकी मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ाता है और आपकी उत्पादकता भी इंश्योर करता है, और आप जो उगाते हैं आप वही खाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: तो डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है कि वे अपनी खेती को अधिक प्रकृति अनुकूल, टिकाऊ और लाभकारी बना सके, तो क्या करें?
0: देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां पर भी पारंपरिक फसलें या पारंपरिक किस्में चल रही हैं
1: जी
0: उन पारंपरिक किस्मों को ना छोड़ें। यदि आप उन्हें फायदे के लिए नहीं उगा सकते हैं तो आप उन्हें थोड़े जगह में अपने कंजम्पशन के लिए उगाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में बहुत ही अधिक प्रचुर हैं।
1: जी
0: इसके अतिरिक्त विभिन्न फसलें उगाएं, किसी भी एक फसल पे ना जाए, अपनी मिट्टी की रेगुलर रूप से जांच करवाएं और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार ही उसमें आप खाद का प्रयोग करें, जहां तक हो सके जैविक उत्पादों का प्रयोग करें। यदि किसान भाई बहन इन बातों को अपनाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें अच्छी उत्पादकता के साथ वो पर्यावरण संतुलन में भी अपना योगदान कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर रुचि बंसल जी, आपने जैव विविधता और टिकाऊ खेती से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमारे किसान भाइयों बहनों को इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो गौतम, हमारी जो विशेषज्ञ थी उन्होंने जैव विविधता और टिकाऊ खेती पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन इस जानकारी से पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और देखिए, 15 अगस्त बिल्कुल पास में ही है और राष्ट्रीय एकता का पर्व है ये, तो क्यों ना हम एक प्यारा सा देशभक्ति गीत सुन लें रेणु बर्मन की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेणु वर्मन की आवाज में ये देशभक्ति गीत। और प्रतिमा, हम अपने
1: हाँ
0: किसान भाइयों के साथ आजादपुर मंडी से हमें जो भाव प्राप्त होते हैं वो एक बार साझा करते हैं। केले की बात करें 12 रुपए प्रति किलो, और अमरूद की बात करें तो 50 रुपए प्रति किलो, मौसम्मी की बात करें तो 30 रुपए प्रति किलो, पपीते की बात करें तो 25 रुपए प्रति किलो।
1: तो किसान भाई बहनों, ये तो थे फल के भाव, और अब मैं आपको बता दूं जो सब्जियां हैं उनके भाव क्या रहे। अगर हम गोभी की बात करें तो ये रही 25 रुपए प्रति किलो, खीरा का मूल्य रहा 20 रुपए प्रति किलो, लौकी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो, भिंडी रही 20 रुपए किलो, और अगर हम नींबू की बात करें तो ये 40 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। तो हमारे किसान भाई बहन आजादपुर मंडी जाएं और अपनी पसंद की फल और सब्जी खरीदें। और गौतम, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो तमाम सलाह हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं। किसान भाई बहनों, इस मौसम में ग्वार, मूली, लोबिया, सेम, पालक, चौलाई फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार हो तो बुआई ऊंची मेड़ों पर कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें, जल निकास का उचित प्रबंध रखें। साथ ही किसान वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। साथ ही इस

0: में किसान स्वीट कॉर्न यानी जिसे बेबी कॉर्न भी कहते हैं की बुआई कर सकते हैं। जल निकास का उचित प्रबंधन भी रखें।
1: जी बिल्कुल। और किसान भाई, कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है
0: जी।
1: क्योंकि परागण में बहुत सहायता करती है, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें।
0: बहुत अच्छी सलाह बताई और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, उनके खेती किसानी में बहुत ही लाभ देंगी।
1: जी
0: साथ ही हमारे किसान भाई बहन अपनी फीडबैक भी हमें भेजें, अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव भी हमें दें।
1: तो इसके लिए श्रोताओं, हमारा जो ईमेल आईडी है वो है feedback@gmail.com।
0: तो गौतम, अब वक्त समाप्त हो रहा है, अपने किसान भाई बहनों से लेते हैं अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:35 और 10 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, फिल्म का नाम है उमराव जान, गायक कलाकार हैं बेला सुलाखे।

फिल्म उमरावजान से बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आपने सुनी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों को एक बहुत ही सुंदर कव्वाली के साथ। फिल्म है अमर अकबर एंथनी।

0: और अमर अकबर एंथोनी फिल्म के इसी कव्वाली के साथ में, जिसे आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने, ये गज़ल कव्वाली का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 7:45 होने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 1368 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कोंडली में नवनिर्मित 2 लेन स्लिप रोड पुल का लोकार्पण और अवलोकन किया, कहा यह परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी और विकसित दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया और स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शनिवार सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 1368 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 1015 TGT, 236 PGT और 117 संगीत शिक्षक शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर नहीं है, बल्कि दिल्ली के लाखों बच्चों और उनके परिवारों के साथ बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद पिछले 1.5 साल से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
3: दिल्ली सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री जो लगातार इस 1.5 साल में अपनी मेहनत से कैसे दिल्ली में शिक्षा को बेहतर स्तर पे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए काम कर रहे हैं और उसका ही आज ये नतीजा है कि

0: आप सभी लोग इस शिक्षा परिवार में जुड़ करके इसका सदस्य बन पा रहे हैं। एक एक बच्चा जो हमारे स्कूल से पढ़ करके निकल रहा है वो जीवन भर इस एक्सपीरियंस को याद रखता है। आज इस मंच पे भी दो टीचर्स जिन्हें आज अपॉइंटमेंट मिली है, दोनों ने ये कहा कि हम दिल्ली सरकार के स्कूल से पढ़ के निकले हैं।
1: यह नियुक्ति कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों को भरने और शिक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे व्यापक भर्ती अभियान का हिस्सा है। पिछले 3 महीनों में विभिन्न शिक्षण श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां की गई हैं। अप्रैल मई 2026 में लगभग 751 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि वर्तमान चरण में 1368 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस भर्ती अभियान से सरकारी विद्यालयों में मौजूद शिक्षकों की कमी को दूर करने, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने और विद्यार्थियों को बेहतर अकादमिक सहयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कोंडली में गाजीपुर ड्रेन और हिंडन नहर पर नवनिर्मित 2 लेन स्लिप रोड पुल का लोकार्पण और अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पुल की संरचना, यातायात व्यवस्था और क्षेत्र में बेहतर आवागमन के लिए किए गए कार्यों की पुष्टि भी की। एक रिपोर्ट।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का ध्यान ऐसी आधारभूत संरचना विकसित करने पर है जिसका सीधा और व्यापक लाभ आम नागरिकों को मिले। उन्होंने कहा कि सड़क नेटवर्क को मजबूत करना, यातायात के दबाव को कम करना और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर आवागमन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
0: 12 पुला भी तैयार होने वाला है, यहाँ आपकी ये ड्रेन वाला काम, स्लिप रोड का काम भी हो गया है। पिछले दिनों दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसकी बात भी हो रही थी कि वो भी तैयार है, तुरंत उसका उद्घाटन होने वाला है। कालिंदी कुंज पे कितना शानदार दिल्ली डी कंजेशन के लिए पूरा का पूरा प्रपोजल तैयार है जिसकी शुरुआत जल्द होने वाली है।
3: श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि ये परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी और विकसित दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ सुरक्षित और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि इस परियोजना से कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को आवागमन का बेहतर विकल्प मिलेगा, साथ ही मौजूदा कोंडली पुल पर यातायात के दबाव और जाम को कम करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह, पटपड़गंज से विधायक रविंद्र सिंह नेगी और त्रिलोकपुरी से विधायक रवि कांत सहित अन्य लोग और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
4: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार देश की प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
5: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्यों की बड़ी व्यापक परिभाषा

0: उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो हस्तकौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है। जो नाट्य में व्यक्ति नहीं हो सका वो जीवन में भी नहीं हो सकता है।
1: दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्नातक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दीक्षारंभ 2026 में शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय की नई प्रोफाइल फिल्म का ई लॉन्च किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि विश्वविद्यालय के युवा स्कॉलर्स के लिए ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि दीक्षारंभ 2026 सीखने, नई चीजें खोजने, नवाचार और विकास की यात्रा की शुरुआत है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन 10 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। वहीं नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन 11 सितंबर होगा। इसी दिन शाम 5 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 18 सितंबर को मतदान के बाद 19 सितंबर को मतगणना की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा ए कायदा ए हिंद यानी AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। भारत मंडपम में चल रहे भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के दूसरे दिन भी देश भर से आए व्यापारियों, उद्यमियों, उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, उपभोक्ताओं और विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस महोत्सव को देश भर के व्यापारिक समुदाय, उद्योग जगत और आम जनता से अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। दिल्ली माल और सेवा कर DGST विभाग ने आज रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर वैध दस्तावेज ई वे बिल और चालान के बिना मालगाड़ी से लाए जा रहे करीब 50 टन अवैध तांबे और 2 टन एल्यूमिनियम सिल्लियां जब्त की। विभाग ने बताया कि ये ट्रेन कर्नाटक के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। विभाग के अनुसार जब्त माल का विस्तृत मूल्यांकन और आगे की कार्रवाई GST नियमों के अनुसार की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शनिवार सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले खास मेहमानों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की आवाजाही को आसान बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के दिन नियमित सेवाएं शुरू होने तक मेट्रो ट्रेन 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कई नई दिल्ली के लाल किला में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रिहर्सल में समारोह की भव्यता, सटीकता और देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष समारोह में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है और विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति विषय को प्रमुखता दी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि ये अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एनीमिया मुक्त भारत अभियान AMB पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण एनीमिया मुक्त भारत अभियान एप्लीकेशन और पोर्टल का शुभारंभ था। इसका उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर एनीमिया की निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई और प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। मुख्यमंत्री रेखा

गुप्ता ने आज विश्व अंगदान दिवस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंगदान मानवता की वो महान भावना है जो किसी व्यक्ति को जीवन का अमूल्य उपहार दे सकती है। श्रीमती गुप्ता ने सभी से अपील की कि वे अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और इस संकल्प को जन भागीदारी का अभियान बनाएं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। इस दौरान श्री सूद ने क्लस्टरों के बीच मजबूत सहयोग, उद्योग की भागीदारी और प्रौद्योगिकी अनुवाद पर जोर दिया, जिसमें सफल क्षेत्रीय समाधानों को अपनाने और उनका विस्तार करने पर विशेष बल दिया गया। अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज कई जगहों पर हल्की से तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 1368 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोंडली में नवनिर्मित 2 लेन स्लिप रोड पुल का लोकार्पण और अवलोकन किया। कहा, यह परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी और विकसित दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया। और स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शनिवार सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 8:15। श्रोताओं, ये समय है कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ, आपका दोस्त चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, फिल्म का नाम है आनंद मठ। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और देशभक्ति गीत। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। गायक कलाकार हैं मुकेश।

और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए एक और गीत सुनते हैं। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और साथी, गीत रचना है इंदीबर की और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये था फिल्म नया दौर से, और ये इसके लिए आवाज़ें दी थी, गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी और बलबीर, संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म है सिकंदर ए आज़म, और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और साथी।

और एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

और एक कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 में मुकेश और साथियों को। गाने के बोल हैं मेरा जूता है जापानी।

और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों को फिल्म हकीकत में। गीत रचना है मदन मोहन की और संगीत दिया है कैफी आजमी ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी गीत के साथ आज का ये गीतमालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी चेतन को दीजिए अनुमति, नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
4: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक।

0: नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
4: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
5: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।

0: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसके भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और

भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। 12 बिलों की मंजूरी के साथ पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज खत्म हो गया। हुकूमत ने बहस से आरी इजलास के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार करार दिया है। मुल्क की बरामदात में जुलाई के महीने में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अकवाम मुत्तहदा सलामती काउंसिल की एक रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को अलकायदा से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, ओडिशा, गंगाई, मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। और दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम सोने के 13 तमगों के साथ 35 तमगे हासिल कर चुकी है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट का मानसून इजलास पिछले महीने की 20 तारीख को शुरू हुआ था। 25 दिन पर मुश्तमिल 19 नशिस्तों के बाद मानसून इजलास आज खत्म हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मानसून इजलास के दौरान ऐवान में कानून साजी और कौमी मामलात पर बहस की गई। कई अहम बिल मंजूर किए गए, जिनमें पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, कौमी तज़ीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल, ट्रिब्यूनल में इस्लाहात से मुतालिक बिल, टैक्स और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल, इमदाद बाहमी की तरक्की की कौमी कारपोरेशन से मुतालिक तरमीमी बिल और केरला नाम तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 शामिल हैं। पार्लियामेंट ने गैर मुल्की अतियात को मंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच पड़ताल के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के पास भेज दिया है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मजीद शफाफ और जवाबदेह बनाना है। अलबत्ते इजलास के दौरान नीट पेपर लीक के मामले पर तलबा के एहतजाज के सिलसिले में एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई के सिलसिले में और अयोध्या राम मंदिर में दिए गए दान की रकम में मुबैना धांधलियों के सिलसिले में बार बार रखना अंदाजी भी देखी गई। हुकूमत की जानिब से कई बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो तलबा के मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा और ऐवान की कार्रवाई में रखना डालते रहे। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: इस दौरान पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट में बहस से फरार इख्तियार करने का इल्जाम लगाया, जबकि हुकूमत उसके लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट का रवैया जमहूरियत, बिलखसूस पार्लियामानी जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट बहस, तबादला ख्याल और कानून साजी से मुतालिक कार्रवाई के लिए है, लेकिन लगातार नारेबाजी और एहतजाज से मानसून इजलास में ऐवान की कार्रवाई मुतासिर रही। जनाब रिजिजू ने कहा कि मानसून इजलास के दौरान 12 बिलों को मंजूरी दी गई, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पर दोनों ऐवानों में बहस हो पाई। उन्होंने ये भी

0: कि इस इजलास के दौरान लोकसभा की कारकर्दगी 19% और राज्यसभा की कारकर्दगी 39% रही।
1: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: जनाब रिजिजू ने इस बात पर तश्वीश का इजहार किया कि पहली मरतबा पार्लियामेंट में आए कई अराकीन पार्लियामेंट बार बार की रखनांदाजी के सबब पार्लियामेंट का तजुर्बा हासिल नहीं कर पाए। कोयले और कानकनी के वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट की जानिब से आज मंजूर किए गए कानकनी और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल से किसी रियासत के हकूक सलब नहीं होंगे और किसी रियासत के महसूलाती ढांचे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब रेड्डी ने कहा कि इस बिल का मकसद बड़े मादनियात की पैदावार में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि मरकज हुकूमत के मजमुई अंदाज नज़र के जरिए कानकनी के शोबे में सरमायाकारी और रोजगार को बढ़ाने के सिलसिले में काम कर रहा है।
2: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से एक दिन कबल कल मुल्क से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे नशर होगा। अंग्रेजी में खिताब के बाद दूरदर्शन के तमाम चैनलों पर इसे हिंदी में भी नशर किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में दूरदर्शन पर खिताब के नशरी के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इलाकाई जबानों में इसको नशर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने मुतल्लिका इलाकाई नेटवर्क्स पर रात 9:30 बजे खिताब को इलाकाई जबानों में नशर करेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि तिरंगा हर शहरी के फख्र की अलामत है और ये मुल्क के ज़बरदस्त इत्तेहाद की अक्कासी करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने शहरियों से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर तिरंगा लहराने और इस मुहिम में शामिल दूसरों के साथ जुड़ने की अपील की। जनाब शाह ने सभी से तिरंगा के साथ अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर अपलोड करने की भी अपील की। मुल्क की मजमुई बरामदात बशमूल साजो सामान और खिदमात इस साल जुलाई के महीने में 80.14 अरब अमरीकी डॉलर रही, जो 13.3% का साल बसाल इजाफा है। कॉमर्स की वजारत की जानिब से जारी किए गए आरजी आदाद शुमार के मुताबिक बरामदात के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी की क्यादत साजो सामान की खेप की वजह से रही, जो पिछले साल के मुकाबले 19.6% बढ़कर 44.24 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। मुल्क के साजो सामान की तिजारत के खसारे में पिछले महीने 31.5% का साल बसाल इजाफा होकर ये 15 अरब अमरीकी डॉलर तक जा पहुंचा। मौजूदा माली साल में अप्रैल से जुलाई के अरसे के दौरान साजो सामान की बरामदात मजमुई तौर पर 73.78 अरब अमरीकी डॉलर रहने का तखमीना है, जो कि सालाना बुनियाद पर 17% का इजाफा है। वहीं खिदमात की बरामदात का तखमीना पिछले महीने 35.89 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो कि पिछले साल 33.74 अरब अमरीकी डॉलर था। इस साल जुलाई के महीने में मजमुई दरामदात में 15.83% का इजाफा हुआ और ये पिछले साल की इसी महीने के 82.16 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 95.16 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने यौम आज़ादी से कबल कौमी राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आज माजूर अफराद के साथ खसूसी बातचीत की। बातचीत के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने माजूर अफराद के तजुर्बात सुने और उनकी हुसूलियाबियों की खूब तारीफ की। इस खसूसी तकरीब ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माजूर अफराद को यकजा किया। इनमें पैरालंपियन, सिविल सर्वेंट्स, माहरीन तालीम और कारोबारी अफराद शामिल थे। चीफ जस्टिस ने इन अफराद के अज़्म की तारीफ की और समाज के तई उनके तआवुन को सराहा। पंजाब के साबिक नायब वजीर आला और श्रोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल की हालत मुस्तहकम है और वो खतरे से बाहर हैं। आज सहपहर किरपान से किए गए एक हमले के सबब हाथ में जख्म के ठीक होने के बाद वो महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल में रूबसेहत हैं।

बादल और उनकी अहलिया हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत में गुरुद्वारा माता साहेब दीवान जी गए थे कि तकरीबन 2:15 बजे एक शख्स ने जनाब बादल पर किरपान से हमला किया। फौरन ही पुलिस अफसरान ने मदाखलत की और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। नांदेड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल करडी के मुताबिक जनाब बादल और खसूसी प्रोटेक्शन यूनिट के एक PSI के हाथों पर मामूली जख्म आए और फिलवक्त दोनों की हालत मुस्तहकम है। इधर महाराष्ट्र के वजीर अला देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के SP से तफसीली मालूमात तलब की है और हमले की तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने जनाब बादल से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने की गरज से उनसे बातचीत भी की। इस अफसोसनाक वाकई की मजम्मत करते हुए महाराष्ट्र के नायब वजीर अला एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसकी मुकम्मल जाँच की जाएगी और कसूरवार को सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल UNSC की दहशतगर्दी पर नज़र रखने वाली एक टीम ने लाल किले में हलाकत खैज खुदकुश कार बम वाक़े को बर्रे सगीर भारत में अलकायदा AQIS का काम करार दिया है। इस वाक़े में 11 अफराद हलाक हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS अलग अलग ग्रुपों से बढ़कर एक इलाकाई दहशतगर्दाना ग्रुप के तौर पर उभर रहा है और उसने लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क कायम कर ली है और वो बड़े यूनिटों के बजाय गैर मरकूज छोटे और बिखरे हुए सेल्स की सूरत में काम कर रहा है। इस पस मंज़र में टीम ने खबरदार किया है कि जनूबी एशिया में दहशतगर्दी के खतरात बढ़ गए हैं। AQIS अलकायदा के लीडर एमन अल जवाहिरी की जानिब से साल 2014 में कायम की गई थी। न्यूयॉर्क में कायम ताउन और पाबंदियों पर नज़र रखने वाली तजज़ियाती टीम ASSMT 10 माहिरीन पर मुश्तमिल है जो उन ग्रुपों और उनकी ज़ैली तंजीमों की जानिब से आलमी दहशतगर्दी के खतरात पर नज़र रखती है और वक्फे वक्फे से रिपोर्ट्स और अपडेट्स मुहैया करती है ताकि कमेटियों से ग्रुपों और अफराद के मुतालिक ये फैसला करने में मदद मिले कि किन पर दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियों के सिलसिले में पाबंदी आयद की जानी है। चीन और रूस ने इस बरस भारत की ब्रिक्स की सदारत के लिए अपनी हिमायत की तौसीक की है। भारत चौथी मरतबा इस ग्रुप की सदारत करेगा। भारत में चीन के सफीर शू फिंग होंग और रूस के शॉजी फेर रोमन बाबुशकिन ने नई दिल्ली में आज विवेकानंद बैनुल अक्वामी फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा ब्रिक्स मुल्कों के सफीरों के राउंड टेबल डिस्कशन में हिस्सा लिया। सफीर यू ने कहा कि चीन आलमी उमूर में ग्रुप की किरदार को मुस्तहकम करने और ताउन को बढ़ाने के लिए भारत और ब्रिक्स के दिगर मेंबर मुल्कों के साथ काम करने के लिए तैयार है। रूस के रोमन बाबुशकिन ने भी ब्रिक्स के सदर के तौर पर भारत की तरजीहात के तहत रूस की हिमायत की तौसीक की और ग्रुप को आलमी खित्ते जनूब के मफादात में पेशरफ्त के लिए और अमली ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। इस तबादले ख्याल में एक मज़ाहिम और पायदार आलमी निज़ाम की तशकील में ब्रिक्स के रोल पर तवज्जो मरकूज़ की गई जिसमें सबकी शमूलियत कसीर सतहियत और जुनूब जुनूब ताउन पर जोर दिया गया। भारत की 2026 की ब्रिक्स सदारत को जिस मौजू से रहनुमाई हासिल होती है वो है मज़ाहमत इख्तरात ताउन और पायदारीत के लिए तामीर। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि आबनाए हरमूज पर वॉशिंगटन को मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब अराकची ने अमेरिका पर इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम आबी गुजरगाह के बारे में बार बार गलत अंदाजे लगाने का इल्ज़ाम आयद किया। जनाब अराकची का यह तबसरा जनाब ट्रंप के उस दावे के बाद सामने आया है जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि अमरीका को आबनाए हरमूज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और वो इसे बरकरार रखेगा। सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान का फौजी बुनियादी ढांचा शदीद तौर पर तबाह कर दिया गया है। इस दौरान ईरान ने यह कहते हुए जनाब ट्रंप के दावों को मुस्तरद कर दिया कि आबनाए हरमूज बदस्तूर बंद रहेगी और उसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक तेहरान की शरायत कबूल नहीं कर ली जाती। भारतीय महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़ में कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 3 से 4 दिनों तक मगरबी बंगाल के तराई वाले इलाके हिमाचल प्रदेश झारखंड उड़ीसा और उत्तराखंड में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात ने इस माह की 16 तारीख तक दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ राजस्थान जम्मू कश्मीर लद्दाख कोंकण गोवा वस्ती महाराष्ट्र मध्य प्रदेश मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते सिक्किम तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। नाइजीरिया के लागोस में मुनक़िदा 4 रोज़ा दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप मुकाबलों में भारत 35 तमगों के साथ चैंपियन के तौर पर उभरा है। भारतीय दस्ते ने इन मुकाबलों में अंडर 23 और सीनियर जुमरों में सोने के 13 चांदी के 8 और कांसे के 14 तमगे जीते हैं। सीनियर

भारतीय तलवारबाजों ने मुकाबले के चौथे और आखिरी दिन 6 मुकाबलों में सोने के 5 तमगे अपने नाम किए। इस बेहतरीन कारकर्दगी ने भारत को विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी दिलाने में भी मदद की, जो दौलत मुश्तरक तलवारबाजी फेडरेशन की जानिब से मजमू तौर पर बेहतरीन नतायज हासिल करने वाले मुल्क को दी जाती है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। 12 बिलों की मंजूरी के साथ पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज खत्म हो गया। हुकूमत ने बहस से आरी इजलास के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार करार दिया है। मुल्क की बरामदात में जुलाई के महीने में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्वामे मुत्तहदा सलामती काउंसिल की एक रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को अलकायदा से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, ओडिशा, गंगाई मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। और दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम सोने के 13 तमगों के साथ कुल 35 तमगे हासिल कर चुकी है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत।
1: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने और देश के युवाओं को विज्ञान तथा अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में ICMR लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शाइन 2026, शाइन मतलब साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण 11 और 12 अगस्त को देश भर में आयोजित किया गया। देश के 83 ICMR केंद्रों पर स्कूली बच्चों को प्रयोगशालाओं में जाने, वैज्ञानिकों से बातचीत करने और स्वास्थ्य अनुसंधान को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से लेकर केरल तक और दमन दीव से लेकर नागालैंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 30,000 बच्चे इस पहल से जुड़े हैं और इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर बहल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर बहल। सबसे पहले शाइन 2026 के सफल समापन पर आपको ढेर सारी बधाई हो। दो दिनों तक ये चला, देश भर के 83 केंद्रों पर हजारों स्कूली बच्चों ने ICMR की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गतिविधियों को करीब से देखा। आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा?
2: ये कार्यक्रम हमने पिछले साल शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर युवा को, हर स्कूली बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन एक साइंटिस्ट की तरह व्यतीत करे, कम से कम साल में एक बार। तो इससे प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरा अनुभव अपना रहा इसमें, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये था कि बच्चों की जिज्ञासा जो हमने देखी और जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछ रहे थे मुझसे भी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिल्ली में कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया, और जिस तरह के सवाल वो प्रयोगशाला में और जो एग्जीबिशन लगी थी उनमें और जो साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन में जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, उसको पूछ के बहुत ही प्रसन्नता हुई के बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतना कुछ वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिया, और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें दिया है कि उनको इस प्रोग्राम से आने से उन

0: कितना अच्छा इस बारे में लगा और आगे उनकी सोच पे इसका क्या असर।
1: बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे देश के असली भविष्य हैं। डॉक्टर महल, क्या बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपको अभी तक याद है?
0: एक्चुअली तीन बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगा कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी पूछ सकता है ऐसे सवाल, इतने अच्छे सवाल थे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम आईसीएमआर कैसे आगे आने वाले किसी भी महामारी के लिए तैयारी कर रहा है, कैसे हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे, कैसे हम जल्दी कोई डायग्नोसिस बना पाएंगे, इसके लिए आईसीएमआर क्या कर रहे हैं। तो इतना अच्छा सवाल था क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये और आईसीएमआर इस एरिया में इतने अच्छे काम कर रहा है पहले से ही। तो मैंने अच्छे से बच्चों को इस बारे में समझाया कि किस तरह हम महामारियों को और कोई भी आने वाली बीमारी को, नई बीमारी को किस तरह से ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे देश के होने वाले नागरिक जो विकसित भारत के शायद पहले नागरिक होंगे, वो बच्चे इस तरह का बहुत ही जिम्मेवारी वाला सवाल पूछा उन्होंने। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि वायरस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है, और जैसा आपको पता है कि अभी ही हाल ही में एचपीवी वैक्सीन लॉन्च हुई है, और ना मुझे अच्छा लगा कि बच्ची पूछ रही है कि कैसे वायरस जो है वो कैंसर करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि क्या कैंसर की कोई नई तरह की वैक्सीन बन रही है। तो मुझे ये सब चीजें तो कटिंग एज है और बच्चों की ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उनको इसका जवाब देने में मुझे अति प्रसन्नता हुई कि किस तरह से हम कैंसर को, जैसे सर्वाइकल कैंसर या हिपैटिक कैंसर को वैक्सीन के जरिए हम रोक सकते हैं, किस तरह से जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे को कैंसर से बचाता है, और हम किस तरह से उसके ऊपर नए नए ट्रीटमेंट्स कैंसर के ला रहे हैं, और पूरे
1: जी
0: विश्व में कैंसर पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ये बताने का मुझे मौका मिला ऐसे प्रश्न को पूछ सुनने से। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने उनके देखे जब मैं प्रयोगशाला में गए और वहां पर पूछ रहे थे कि जिस तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल है, इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सिर्फ जो अंडे हैं ये सिर्फ पानी में पनपते हैं, उस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से ये होता है। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा।
1: बिल्कुल। आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि शाइन में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत का अवसर मिला। क्या आपका मानना है कि ऐसी पहल से बच्चे साइंस को केवल अब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि करियर और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं?
0: जब किसी चीज को बच्चा देखता है और एक अपने स्कूल में एक विषय की तरह देखता है, एक किताब पढ़ के देखता है और कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता है, लेकिन जब वो आके ये देखता है कि किस तरह से रिसर्च जो चीजों को चेंज कर रही है, कोई नई चीज, नया डायग्नोस्टिक या नई वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है, तो उस एज पे, उसके दिमाग पे उसका एक बहुत अच्छा और बहुत गहरी छाप पड़ती है, और उससे उसकी ना सिर्फ जिज्ञासा बढ़ती है बल्कि उसको ये भी समझ आने लगता है कि ये भी एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं। यही नहीं कि हम सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कुछ और इस तरह की अपने प्रोफेशन करें, बल्कि हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
1: और इस काम में आईसीएमआर, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को मदद करने के लिए बेहद तत्पर है। डॉक्टर राजीव बहल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जिनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रेसिजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ बड़ी तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल रहे हैं। क्या एआई और नई टेक्नोलॉजीज के आने से आने वाले सालों में भारत के हेल्थ रिसर्च को कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस, बदलाव आ सकता है?
0: बदलाव आ सकता है और अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप भी विकसित किए हैं, अपनी हमारी जिस तरह की कैपेसिटीज डेवलप हुई हैं इस देश में पिछले सालों में, जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक में खास तौर एक तरह का कॉन्फिडेंस जो आया है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इसको यूज करेंगे बल्कि हम इसमें अग्रसर रहे। जिस तरह से भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में उदाहरण के तौर पे यूपीआई को यूज करके जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल उसमें

0: अपना सिक्का जमाया है पूरे विश्व में। इसी तरह से भारत डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह जीनोमिक्स इंडिया में हो रहा है, ऐसा इस तरह की चीज जो आज हम कर रहे हैं, वो हम वही सब कर रहे हैं जो विश्व में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, वो हमारे पास भी उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज भी स्वास्थ्य से एक तरीके से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेट चेंज के कारण नई तरह के की हेल्थ चैलेंजेस, इन्फेक्शस डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। आईसीएमआर इन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के लिए अपनी रणनीति में, खासतौर पर रिसर्च की रणनीति में, किस तरीके की बदलाव ला रहा है या क्या तैयारी कर रहा है?
0: क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से होता रहा, इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो ये हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। हेल्थ उसमें से एक प्रमुख प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज से हमें देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो रिसर्च क्या कर रहा है और रिसर्च इस बारे में क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि इस तरह की वार्मिंग से, इस तरह के क्लाइमेट चेंज से क्या असर आएंगे और क्या असर हो रहे हैं। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेज में अब डेंगी जिसको कहा जाता है, जो बुखार आता है डेंगू होता है,
1: जी
0: वह बीमारी जो है वो उन इलाकों में भी बढ़ रही है जहां पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे जो वेक्टर है डेंगू का, जो मच्छर है, वो वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे कि कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां जो हैं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही जो किडनी फेलियर है देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इसका प्रभाव रहता है। तो पहली चीज तो हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं उसको समझ के वो हम सामने लाए। जो हमारी रणनीति है वो है इनकी एमिलियोरेशन, यानी कि इनको किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशंस को रखते हुए इनको किस तरह से हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा काम करने का समय है, क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्या हम भरी दोपहर में लोगों को बाहर काम ना करना पड़े इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के घर बना सकते हैं कि जो उस तरह से गर्म ना हो जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी घर होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं?
1: आप मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि उपचार के साथ साथ बचाव यानी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर भी आईसीएमआर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके बारे में भी लोगों को जागरूक बना रहा है।
0: बिल्कुल, ये इंटरवेंशंस जो प्रिवेंशन के हैं और हेल्थ के जो दुष्प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हैं उससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसका इलाज, जैसे अगर हीट स्ट्रोक और दूसरी तरह की जो तकलीफें होती हैं उसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम किस तरह से एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रोकें और दूसरा के उसके प्रभावों को कम करें।
1: डॉक्टर राजीव बहल, यदि शाइन में शामिल कोई 15-16 साल का बच्चा ये कार्यक्रम सुन रहा है और आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अभी से वैज्ञानिक बनने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
0: तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को याद करना है, ये सोचिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं अगर बच्ची है तो वो क्यों होता है, इसको किस तरह से हम सोचें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ उसको जाके समझ के और कोशिश करें जानने की कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसको कैसे साइंटिस्ट ने पहचाना। दूसरी चीज ये है कि अपने मन को खुला रखिए। अपने को इस वक्त आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, आप अपने को एक क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में, जैसे कि आपने देखा हमारा मैस्कॉट है डॉक्टर क्यूरियो, और उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को आप रखें और आज आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन उत्सम्पन्न बनाना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हैं? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आपने सुना विजय गुरदासपुरी का गाया गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे सरफराज हुसैन खान का गाया राग बिहाग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत सरफराज हुसैन खान का गाया राग।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधे हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा।

0: 14 bronze medals at the event across the under-23 and senior competitions. The performance also helped India win the Wilkinson Sword Trophy, awarded by the Commonwealth Fencing Federation to the country with the best overall results. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त रात के 11:10 हुए हैं और अब वक्त है आपके मनपसंदता सेगमेंट आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। और आप भी हमें फटाफट हमारे ईमेल पर हमें रिक्वेस्ट भेजिए, फरमाइशें भेजिए। हमारा ईमेल है ipradiodelhi@gmail.com। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ipradiodelhi@gmail.com।

तो श्रोता, हमारे पास भर भर के मैसेजेस आए हैं और जो हमारे पास पहला संदेश आया है वो है जाकिर मुलानी का। ये हमें लिख कर भेज रहे हैं मुक्कमपोस फुल चिंचौली तालुका पंडरपुर से। और इनके साथ है जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी और पूरा मुलानी परिवार साथ। ये जो अगला संदेश है वो है हरजिंदर शिंदा का और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं गाँव नथाना पंजाब से। इनके साथ हैं जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और अगला जो संदेश है वो है जसबीर सिंह का है, गांव निमनाबाद, जिला जींद, हरियाणा से। जसबीर सिंह, अरोड़ा अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर। और जो अगला संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर का, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं मेरठ कैन से। और इनके साथ है कविता गौर। अगला जो संदेश आया मेहर अरोड़ा लिखकर हमें भेज रहे हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर से, राजस्थान से। इनके साथ है ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। साथ ही जो अगला संदेश आया है वो है मदन कोतवाल का और इनके साथ है राजेंद्र चड्ढा। और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नांगलोई दिल्ली से। जो अगला संदेश है मल्होत्रा, टीडी मल्होत्रा का है। इनके साथ हैं ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। और यह हमें लिख कर भेज रहे हैं चंडीगढ़ से। अगला संदेश है आशीष कुमार का और ये इनके साथ जो हैं वो हैं बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर।

और अमर सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं बरेली से, कॉलोनी करगैना उत्तर प्रदेश। अगला संदेश है रामचंद्र शेंदे का, इनके साथ हैं श्रीमती शीला देवी शेंदे सिद्धार्थ गुडाने, और यह हमें लिखकर भेज रहे हैं किशोर नगर अमरावती महाराष्ट्र से। अगला संदेश है अनिल जैन का, और साथ ही हैं इनके साथ जो हैं वो जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन, यह हमें लिखकर भेज रहे हैं मालियान सरधना मेरठ से। अगला संदेश है वो है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावाकर निर्मला विशाल, और अगला जो संदेश है मलकापुर से नारायण इंगले सोपान टाइडे आशीष मोहरकर, और अगला संदेश जो है वो है ग्राम बग बुड़वा पथरिया नरेन नेताम, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कुसुम नेताम, और इन्होंने बहुत ही अच्छी गीत की फरमाइश की है। अगला जो संदेश है अनिल मोहन का, इनके साथ है उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से नरेन नेताम हमें लिखकर भेज रहे हैं, और जो अगला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का, और इनके साथ हैं प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विन शाह मंगलाबेन शाह राजेंद्र जी शाह, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर से। सुनते हैं अगला गीत जो आबी की भेजी हुई फरमाइशों में से एक है।

श्रोताओं, अगला जो संदेश है वो आया है अनिल कुमार वर्मा का, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा जो हमें लिखकर भेज रहे हैं सदर बाजार कुरावली से। अगला संदेश है सतीश अनेजा का और इनके साथ है बिमला अनेजा चंडीगढ़ सिटी से। अगला जो संदेश है वो है मोहाली पंजाब, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, और ये लिखकर भेज रहे हैं कि हमें कोई भी गीत में शामिल करें। और अगला जो संदेश है वो है अनिल कुमार का और इनके साथ हैं श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, प्रणेता सिद्धांत अर्जुन, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं बदलापुर मुंबई से। अगला संदेश जो है वो है नारायण खर्चे का और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से। और इनके साथ हैं ललिता खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, और ये लिखकर भेज रहे हैं कि इनको कोई भी गीत सुनवा दे। अगला संदेश जो है वो है राजेश साबले पाटिल का, राजदीप राजेश, राजी राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, छत्रपति संभाजी नगर से। और साथ ही जो अगला संदेश आया वो है मजहर अली अंसारी, इनके साथ है रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, अस्तुपुरा जिला मऊ से। और जो अगला संदेश है बहादुरपुर गंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। अगला संदेश जो है वो है बिट्टू गजनीजा का और इनके साथ हैं पूनम गजनीजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, जलालाबाद वेस्ट से। अगला संदेश जो है राजकुमार डूडी का है, गांव फ्रांसी हिसार से, इनके साथ है प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। साथ ही जो अगला संदेश है वो है सुशील चौधरी का, मुखर्जी नगर दिल्ली से, और वो एक जो उन्होंने गीत की फरमाइश की है बेहद ही प्यारा गीत है फिल्म शहीद से, और उन्होंने लिखा है कि वो ये गीत अपने फौजी दोस्त श्री जगदीश जी को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी भेजी गई इस फरमाइश को।

श्रोताओं, अगला संदेश है फागू राम यादव का। यह हमें लिखकर भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से। इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। अगला संदेश है किशन वंजानी का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि वो हमें कहाँ से लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही जो अगला संदेश है वो है वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आदि अरोड़ा। और ये लिखकर भेज रहे हैं कि ये कोई भी गीत सुनना चाह रहे हैं। अकरम हुसैन का अगला संदेश है, और जो अगला संदेश है वो है मलकापुर से, नारायण इंगले, सुपान टाइडे, आशीष मोहरकर। और जो साथी इनके साथ है नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नवाकर, निर्मला विशाल। जो अगला संदेश है वो है राजीव शर्मा का, और इनके साथ है मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा।

था शाइना शर्मा आदर्श नगर मलोट पंजाब से, और साथ ही हमें लिखकर भेज रहे हैं गायश्री का संदेश आया है, और इन्होंने भी ये मेंशन ही किया है कि ये कहाँ से हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हिमकेश्वर साहू जी ने हमें संदेश भेजा, इनके साथ है करण राहुल साहू, चंपा साहू ही हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और साथ ही जो अगला संदेश है वो है नंद किशोर घाटी का, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से, इनके साथ है संगीता घाटे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा। अगला जो संदेश है वो है अनिल मोहन का, इनके साथ है उषा मोहन, टेल्लू नायक, मधु नायक, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पहाड़गंज डांडा से। बिट्टू भाटिया का अगला संदेश, इनके साथ है रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, और ये भी लिखकर भेज रहे हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल करें। सुदर्शन मुखी का अगला संदेश है, इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, हाजी मजहर हमें लिखकर भेज रहे हैं, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं जिला मऊ से। स्वर्ण सिंह ने हमें संदेश भेजा है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। और जो साथ ही अगला संदेश है वो है उषा मोहन का, और इन्होंने लिखकर भेजा है कि आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके ये हमें लिखकर भेज रहे हैं, ये नहीं इन्होंने लिखा है कि हमें कहाँ से लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है अनिल मोहन। तो श्रोताओं चलिए सुनते हैं ये अगला गीत जो आप ही की भेजी हुई लिस्ट में से मैंने उठाया है, जो मेरा भी बहुत ही प्रिय गीत है। श्रोताओं ये गीत सुनवाने से पहले, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आपकी क्या क्या प्लानिंग है और आप क्या विचार रखते हैं, अपने विचारों को मेरे साथ शेयर करिए हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि ipradiodelhi@gmail.com है।

श्रोताओं, अगला संदेश जो आया है वो आया है दिलावर खान का, और उन्होंने लिखा है, 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन लाखों बलिदानों की याद है जिनकी बदौलत हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। आइए अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लें। बहुत ही प्यारा संदेश दिलावर जी ने हम सबको दिया है, और उम्मीद करते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम आपस में एकता बनाए रखें और अपने देश और सभी के मान सम्मान को बनाए रखें। साथ ही जो अगला संदेश है वो नासिर शेख का है, और इनके साथ है नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। अगला जो संदेश है फारूक अली खान का

चुक गोविंद चुक। जो अगला संदेश है वो है श्री अय्यर का, और इन्होंने शर्मीली फिल्म का एक गीत डिमांड किया है। तो आइए सुनते हैं उनकी इस भेजी गई डिमांड को, और ये जो फिल्म है शर्मीली से इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, जो हमारे पास अगला संदेश है वो है अश्वनी चुग का, और उन्होंने लिखा है, हमने अपनी दो मंजिले घर में दो झंडे लगा रखे हैं, और यही नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले में भी ज़्यादातर घरों में तिरंगा झंडा ही दिखता है। लोग इस बार ज़्यादा जोश में हैं, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पंचकुला से आशु चुग, अश्वनी।

तो हमारे पास जो अगला संदेश है वो है किशन सबकाल का, इनके साथ है आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, सायरा सबकाल, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं शास्त्री नगर बीट शहर से। अगला जो संदेश है गुरमीत सिंह का है, इनके ये और इनके साथ है मीता, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं साउथ एक्सटेंशन से। अगला जो संदेश है वो है मोहम्मद कमर का, और इन्होंने लिखा है कि छोटे बच्चों को तिरंगे कपड़े पहनाते हैं, घर की लेडीज तिरंगे दुपट्टे और चूड़ी पहनती हैं। और जो अगला संदेश है वो है अनिल मोहन का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। अरुण कुमार पांडे हमें लिखकर भेज रहे हैं, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं मध्य प्रदेश से। अगला जो संदेश है वो है हाजी मजहर का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं अस्तुतापुरा जिला मऊ से। अगला संदेश जो है हसीना का है, उन्होंने लिखा है तिरंगे की शान भारत की पहचान, आज़ादी विरासत नहीं शहीदों की अमानत है, जहाँ तिरंगे का मान है वही सच्चा हिंदुस्तान है, शहीदों के सपनों का भारत हमारा भारत। और ये हमें लिखकर भेज रही है नजफगढ़ से जय विहार से लिखकर हमें ये भेज रही हैं। श्रोताओं, फिलहाल हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, जाने से पहले हम आपको ये गीत सुनवाते हैं जो कि फिल्म कर्मा से है, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 12 बजने को है, अब समाचार होंगे। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होंगे। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। जय हिंद। रात्रि के 12:10 पर आप सुनेंगे सुरों का सफरनामा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बे सोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुई आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read.

7 चैनल है। यह साथियों बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम वाकई बहुत ही प्यारा। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। श्रोताओं, आकाशवाणी सुरों का सफरनामा एक विशेष प्रस्तुति। आज के जो हमारे फनकार हैं, जी हाँ दोस्तों, आप हैं तलत महमूद, रेशमी आवाज का एक अमर सफर। प्रस्तुति हमेशा की तरह जब भी मैं आता हूँ तो आरजे ललित कुमार के साथ आप जुड़ जाइएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। एक शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही शानदार शुरुआत है और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत है। और क्या कहें, आकाशवाणी के इस खूबसूरत कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में मैं हूँ आज आपका अपना प्यारा दोस्त ललित कुमार। आज का सफर किसी साधारण गायक का सफर नहीं है। आज हम उस आवाज के साथ चलेंगे जिसने मोहब्बत को भी आवाज दी, तन्हाई को भी आवाज दी और दर्द को भी आवाज दी और खामोशी को भी एक ऐसी जुबान दी जिसे सुनकर लगता था जैसे कोई इंसान गा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, इंसान नहीं गा रहा हो। वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचनाएं हैं इनकी, बल्कि दिल अपनी कहानी कह रहा है। किसी ने उनकी आवाज को रेशम कहा तो किसी ने उसे शबनम कहा और संगीत प्रेमियों ने उन्हें प्यार से कहा शहंशाहे गजल। जी हाँ दोस्तों, शहंशाहे गजल। तो आज सुरों का सफरनामा समर्पित है उस महानायक को, महागायक को, जिसकी आवाज में कंपन था मगर वह कंपन कमजोरी नहीं थी, उस आवाज की पहचान था। जिसमें दर्द था लेकिन वह दर्द बोझ नहीं, एक खूबसूरत एहसास था। जिसमें मोहब्बत थी मगर मोहब्बत में शोर नहीं था, एक गहरी खामोशी थी। हम याद कर रहे हैं तलत महमूद साहब को। तो आइए सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गीत से शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, अनमोल, बेहतरीन रचना। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत है। और ये गीत, क्योंकि रात का समय है और मौसम बड़ा ही मस्त है, खुशनुमा है, बड़ा सुंदर खूबसूरत गीत है। फिर चिड़ी रात आज फूलों की। जी हाँ दोस्तों, फिल्म बाजार से खूबसूरत रचना, तलत महमूद और खूबसूरत आवाज, लाजवाब, अनमोल रचना। माफ कीजिए, ये गीत वो वाला नहीं है जो हम प्ले करना चाह रहे थे, और ये गीत बिल्कुल अलग है और बहुत ही खूबसूरत गीत है। ये गीत इसलिए खूबसूरत है क्योंकि यदि हम चलाएं तो कैसे चलाएं। जी हाँ, मन तो बड़ा खुश होता है चलाने के लिए, लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ थोड़ा सा कठिनाई भी आ जाती है। तो फिलहाल हम सुंदर सा एक खूबसूरत सा गीत प्ले करेंगे और हमें भी अच्छा लगता है कि भाई आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर है और बेहद लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत है। तो एक प्यारा सा गीत है तलत महमूद साहब की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर और बड़ी प्यारी खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गीत दर्द झलक रहा है। जी हाँ, हसीन रात तो है लेकिन थोड़ी खुशी भी है तो थोड़ा गम भी है। साथियों, उनका परिचय बताए देते हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1924 को हुआ था। लखनऊ की धरती पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसकी आवाज़ आगे चलकर भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में एक अलग अध्याय लिखने वाली थी। और 9 मई 1998 को मुंबई में उनकी सांसें थम गई थी। लेकिन आवाज आवाज आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ आवाजें गले से नहीं निकलती, वे सीधे दिल में उतरती हैं। वक्त उन्हें खामोश कर सकता है मगर भुला नहीं सकता। या दोस्तों, वाकई बहुत ही सही बात कही है। तलत महमूद, जीवन परिचय की बात करें तो तलत महमूद का जन्म, दोबारा से बता रहे हैं कि 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में एक संस्कारित और संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। वे 6 भाई बहन में से एक थे। बचपन से ही संगीत की ओर उनका गहरा झुकाव था।

और वे संगीत की महफिलों में बैठकर बड़े बड़े कलाकारों को सुनते थे। लखनऊ की सांस्कृतिक फिजा ने उनके भीतर संगीत का बीज बोया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पंडित SCR भट्ट से प्राप्त की। तो फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत। साथियों, ये गीत है आह रिमझिम के, रिमझिम के ये पुहार प्यारे, बहुत ही सुंदर गीत है आह रिमझिम के ये प्यारे गीत। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत है, और क्योंकि बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, तो वाकई बहुत अच्छा गीत आ रहा है। तो फिल्म का नाम है उसने कहा था। अब क्या कहा था ये तो आप गीत सुनने के बाद ही पता चलेगा। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना, आइए सुनते हैं।

जी हाँ, श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे, तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज़ में शानदार रचना। साथियों, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, लखनऊ की सांस्कृतिक फिजा में उनके भीतर संगीत का बीज बोया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पंडित SCR भट्ट से प्राप्त की। किशोरावस्था में भी उन्हें उनकी आवाज़ अलग पहचान बन चुकी थी और लगभग 16 वर्ष की आयु में उन्होंने 1939 में आकाशवाणी लखनऊ से गजल गायन शुरू किया। वे दाग, मीर और जिगर जैसे शायरों की गजलें गाया करते थे। जरा सोचिए, उस समय रेडियो पर गाना आज की तरह आसान नहीं था। ना कोई सोशल मीडिया, ना वीडियो, ना कोई डिजिटल प्रचार, सिर्फ आवाज। और उस आवाज में ऐसा जादू होना चाहिए था कि श्रोता अपना काम रोक कर रेडियो के सामने बैठ जाए। तलत की आवाज में वही जादू था। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। श्रोताओं, ये गीत वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। ये प्यार पर बस तो नहीं है, फिल्म सोने की चिड़िया से ये सुंदर बेहतरीन रचना। ये फिल्म सन 2004 में प्रदर्शित हुई थी और आशा भोसले तलत महमूद की आवाज में शानदार रचना। गीत साहिर के हैं और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को OP नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचना।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई प्यार पे बस तो नहीं है, बिल्कुल भी किसी का भी बस नहीं होता है, बस प्यार तो प्यार ही होता है ना। वाकई बहुत ही अच्छा लगता है ना। जी हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और शायद हमारे साथियों को भी अच्छा लगता होगा। साथियों, तलत महमूद की आवाज़ में वही जादू था। पहला रिकॉर्ड जो 1941 साल 1941 HMV ने तलत महमूद की आवाज़ को पहचाना और उनका पहला रिकॉर्ड जारी हुआ। सब बिन एक समान नहीं था, सब बिन एक समान नहीं था, ये फिल्म का टाइटल है। और यही क्षण था कि जब एक आवाज़ रिकॉर्ड पर आई और धीरे धीरे देश के संगीत प्रेमियों तक पहुंचने लगी। उनका पहला फिल्मी रिकॉर्ड भी गीत था। कौन सा? जी हाँ, जागो मुसाफिर जागो, फिल्म राज लक्ष्मी से 1945 में। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत गीत है। और जागो मुसाफिर जागो, फिल्म राज लक्ष्मी से, बड़ा ही सुंदर गीत है। और ये गीत वाकई बहुत ही अच्छा है। और 1951 प्रदर्शित फिल्म रही है राज लक्ष्मी। और फिर आया वह दौर जिसने तलत महमूद को सिर्फ गायक नहीं, एक आवाज़ का पर्याय बना दिया। 1944 जब आया तो वह गीत जिसने पहचान बनाई, 1944 में आया था ये शानदार खूबसूरत गीत, जो तस्वीर तेरी दिल में हाँ माफ कीजिएगा, तस्वीर तेरी मेरा बहला ना सकेगा। जी हाँ, एक बड़ा ही अनोखा, अनमोल, उत्कृष्ट, बेमिसाल रचना है। इस गीत की लोकप्रियता ने तलत महमूद को पूरे देश में पहचान दिलाई। इसके बाद कलकत्ता की फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनकी उनकी ओर ध्यान दिया। कलकत्ता में उन्होंने बंगाली गीत भी गाए और वहाँ के कई रिकॉर्डिंग्स में तपन कुमार नाम से भी जाने गए। यानी तलत सिर्फ हिंदी के गायक नहीं थे, उनकी आवाज़ भाषाओं की सीमाओं से कहीं आगे थे। तो आइए सुनते हैं एक बड़ा ही सुंदर खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत। वाह, गया अंधेरा हुआ उजाला, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत था। और ये गीत वाकई बहुत ही प्यारा, गया अंधेरा हुआ उजाला, सुबह का तारा। जी हाँ, फिल्म का नाम है सुबह का तारा। आवाज लता मंगेशकर और तलत महमूद की थी। और ये फिल्म सुबह का तारा 1954 प्रदर्शित फिल्म रही है। और गीत नूर लखनवी के हैं और संगीत से सजाया है सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं आगे की प्यारी से खूबसूरत कुछ दास्तां। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, सीमाओं से भी आगे थी। जी हाँ, मुंबई का सफर 1949 साल यानी कि 1949 में तलत महमूद मुंबई पहुंचे। यहाँ उन्हें संगीतकार अनिल विश्वास का साथ मिला। अनिल विश्वास उनके लिए सिर्फ संगीतकार नहीं बल्कि मार्गदर्शक का संरक्षण की तरह थे। और फिर 1950 की फिल्म आरजू में वह गीत गाया जिसने तलत की आवाज़ को नई ऊंचाई दी। ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो। ये बड़ा ही खूबसूरत गीत था। और इस गीत में अकेलापन था, एक अनकहा दर्द था और सबसे बढ़कर तलत महमूद की आवाज़ का एक रेशमी कंपन था जो सीधे दिल को छू जाता था। फिलहाल हम एक और खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं। अब ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, बेहतरीन है। और ये गीत वाकई जो पहला गीत था बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाजवाब रचना थी। और तस्वीर तेरी दिल बहला ना सका। जी हाँ, बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत है तलत महमूद साहब की आवाज़ में। साथियों, गीत फैज़ हाशमी के हैं और संगीत से सजाया है कमल दास गुप्ता ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

वाकई दोस्तों, बहुत ही अनमोल और बेहतरीन खूबसूरत रचना भी आप सुन रहे थे तलत महमूद साहब की आवाज़ में, सुंदर बेहतरीन रचना। साथियों क्या कहें हम, बड़ा ही प्यारा गीत होता है। तलत महमूद साहब की आवाज़ तो वाकई बहुत ही अलग है, सुरमई है, खूबसूरत है, दर्द भरी दास्तां लिए थे। हाँ जी हाँ, कुछ आवाज़ें सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। तलत साहब की आवाज़ भी ऐसी ही थी, उनकी गायकी में ऊंची आवाज़ का प्रदर्शन नहीं था, वे सुरों को चिल्ला कर नहीं बल्कि सहला कर गाते थे। उनकी आवाज़ में एक ख़ास तरह की वाइब्रिटी और वाइब्रेटो थी, और जिसे सुनकर ऐसा लगता था जैसे दिल खुद हल्के हल्के कांप रहा हो, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। 1950 की फिल्म बाबुल, बहुत ही सुंदर खूबसूरत फिल्म है ये बाबुल। तो जब जिक्र उस फिल्म का जिसने तलत महमूद की आवाज़ को और लोकप्रिय बनाया, फिल्म बाबुल। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में तलत और शमशाद बेगम की आवाज़ में मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, क्या गाना है, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब खूबसूरत गीत है फिल्म बाबुल का। मिलते आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना। और साथ में मेरा जीवन साथी बिछड़ गया जैसे गीत सुनने को मिले, और नौशाद के संगीत और शकील बदायूं के शब्दों के बीच तलत की आवाज़ ने दर्द को नई अभिव्यक्ति दी।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा है कि बस ये प्रोग्राम कभी ख़त्म ही ना हो। वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब गीत हैं। और साथियों, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, जैसे गीत सुनने को मिले और नौशाद के संगीत और शकील बदायूनी के शब्दों के बीच तलत की आवाज़ ने दर्द को नई अभिव्यक्ति दी। सन 1951 में तराना फिल्म आई थी, तराना। जी हाँ, फिल्म तराना में अनिल विश्वास के संगीत पर तलत और लता मंगेशकर की आवाज़ों का अद्भुत संगम सुनाई दिया। सीने में सुलगते हैं अरमा। जी हाँ, सीने में सुलगते हैं अरमा। एक तरफ तलत की मुलायम आवाज, दूसरी तरफ लता की निर्मल तान और बीच में अनिल विश्वास का संगीत। यह सिर्फ एक गीत नहीं था, यह दो महान आवाजों का संवाद था। आइए सुनते हैं इस शानदार बेहतरीन रचना।

हाँ दोस्तों, सीने में सुलगते हैं अरमां, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, बढ़ते हैं और कुछ हमारे जो साथी हैं, बड़े प्यारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं। और एक और खूबसूरत जो बात, स्पेशल जो बात है, इतने प्यारे गीत हैं, बहुत ही शानदार गीत हैं, लाजवाब हैं। और एक फिल्म है दाग, जी हाँ, 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है दाग। और इस गीत, जो गीत है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, बहुत ही प्यारा गीत है। और साथ ही हम दर्द के मारों का, और कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, इन गीतों ने तलत की दर्द भरी गायकी को और मजबूत किया। चार पंक्तियां, जी हाँ, दर्द को सुर मिला तो तलत की आवाज बनी, दर्द को सुर मिला तो तलत की आवाज बनी, तन्हाई को घर मिला तो गजल की रात बनी, जिसे सुनकर आंखें आंखें बहुत ही, क्या कहें, जब आंखें मिल जाए तो फिर बात ही कुछ अलग हो जाती है ना। बातें मिल जाए, नम हो जाए, तो बहुत कुछ और भी हो जाता है। वही तो आवाज़ दिल की सबसे बड़ी खास बन जाती है। 1953 में दिले नादान फिल्म आई थी। दिले नादान में तलत साहब ने जिंदगी देने वाले सुन, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत है, जैसे गीत को अपने आवाज़ दी है। और इसी दौर में उनकी आवाज़ ने एक खास भाव भूमि बनाई। रोमांस, दर्द, तन्हाई, नमी और उनका संगीत संसार था। अभिनेता तलत महमूद, श्रोताओं यह जानकारी बहुत से संगीत प्रेमियों को शायद कम मालूम ही होगी तलत महमूद के बारे में। ये सिर्फ गायक नहीं थे, उन्होंने अभिनय भी किया है। और उनकी फिल्मों में राजलक्ष्मी, जो 1945 फिल्म थी, और तुम और मैं 1947, समाप्ति 1949, और आराम 1951, दिले नादान 1953, डाकू बाबू 1954, वारिस 1954, रफ्तार 1955, दिवाली की रात 1956, एक गांव की कहानी 1957, और तमाम ऐसी फिल्में हैं। और ख़ास तौर से सोने की चिड़िया, वाकई जो हमने एक प्ले गीत प्ले किया था, वाकई बहुत ही खूबसूरत गीत था। तो फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं, उसके बाद चलेंगे फिर उन्हीं सफ़र पर। जी हाँ, समय तो इजाज़त नहीं देता है, लेकिन फिर भी कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि कम से कम एक या फिर दो छोटे छोटे गीत हम प्ले कर दें।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। समय तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है, बस एक छोटी सी बात के लिए। जी हाँ, एक बड़ा प्यारा गीत था, बहुत ही सुंदर गीत है, और इस गीत को हम सुनवा रहे हैं, और ये फिल्म का नाम है हकीकत। बहुत ही प्यारा, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तलत महमूद ने लगभग 12 भारतीय भाषाओं में गायन किया, और उनकी रिकॉर्डिंग प्रस्तुतियों की संख्या भी उनसे ज़्यादा। आधिकारिक जीवनी 47 हिट्स बताया गया है। तो फिलहाल हम सुनवा रहे हैं और छोड़े जा रहे हैं इस शानदार गीत के साथ, और इसी खूबसूरत कार्यक्रम सुरों का सफरनामा अब समाप्त होता है। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, वहाँ की बहुत ही प्यारा खूबसूरत तीन तीन साथियों की आवाज़ में शानदार रचना, बहुत ही प्यारी, तलत महमूद मन्ना डे और उनकी आवाज़ में। तो साथियों, ये था सुरों का सफ़रनामा। सुरों का सफ़रनामा अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। साथियों, 1 बजने को है। अब हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2006

0: 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बियासोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिन्दी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंग होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाउश्किन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस अवसर पर स्नेहा नामक ई बुक भी जारी की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The monsoon session of Parliament has concluded, with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House.

गीतों की, इतनी सुंदर बेहतरीन रचनाओं के साथ हमेशा आते थे। जी हाँ दोस्तों, और एक एक गीत भी लगभग एक महीना, दो महीने, तीन महीने, चार चार, छः छः महीने लग जाते थे। तब जाकर न जाने कितनी बार संगीत को बदला जाता था, कितनी बार बोलों को दोबारा से बनाया जाता था। और फिर गायकी का जो प्रेशर था बिल्कुल अलग था, उसकी जो धुनें थी वाकई बहुत ही अनमोल हुआ करती थी। जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक उनको आनंद ही नहीं आता था। न जाने कितनी बार उनको बदलाव करना पड़ा। ये मेहनत है गोल्डन एरा की। जी हाँ, गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म म्यूजिक, वाकई बहुत ही शानदार रचनाएं होती हैं। तो इसी कड़ी में आज कार्यक्रम गीत सुनहरे में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। नाम तो सुना होगा, है ना? तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत।

खबर है उसी बेखबर को देखते हैं, दुआएं मांग रहे हाय हाय।

हंस के बिताल दो घर की जवानी है, हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिताल दो घर की जवानी है। ओ,

जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं सुन रहे थे, कुछ अलग अंदाज में शानदार बेहतरीन रचना। साथियों, ये गीत वाकई बहुत ही प्यारा था, लाजवाब था, अनमोल था। जी हाँ, खबर किसी को नहीं, वो किधर को देखते हैं। इससे पहले जो गीत चला था आशा भोसले की आवाज़ में, बेहतरीन रचना, और ये रचना वाकई अपने आप में बहुत ही मखमली खूबसूरत लाजवाब रचना थी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भाई बहन का खूबसूरत गीत। जी हाँ, फिल्म जो 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, आशा भोसले और कोरस की आवाज़ में शानदार रचना, गीत

सीपी फिल्म्स द्वारा और संगीत एन दत्ता का था। फिलहाल हम सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत, और ये गीत आ रहा है बहुत ही प्यारा, गम की अंधेरी रात में। आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

0: जी हाँ श्रोता, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत सुनहरे के अंतर्गत शानदार रचनाएं। साथियों, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। समय 2 बजने को है और अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने

0: सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बियासोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवम्बर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ashish Abraham. The monsoon session of Parliament has concluded, with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its co-legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special

किसी भी धर्म पंथ से हो, लेकिन जब एकजुटता की बात आती है तो सभी हिंदुस्तानी एकजुट होकर देश की रक्षा में तत्पर तैयार रहते हैं। और राष्ट्रीय पर्व है हमारा, जी हां, राष्ट्रीय पर्व। सैल्यूट करते हैं हम अपने देश को, सम्मान दे रहे हैं झंडा फहराकर, पतंगे उड़ाकर और न जाने कितनी मिठाइयां खाकर देश को, जी हां, देश की आन बान शान बना रहे हैं। आन बान शान तो हमेशा हमेशा के लिए बनी हुई है, लेकिन जब त्योहार एक राष्ट्रीय पर्व है हमारा तो वाकई बहुत अच्छा लगता है ना, दिल खुश हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है हम सबका। तो आइए सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत गीत के साथ। जी हाँ दोस्तों, सरहद पर कुर्बान होने वाले जो साथी हैं, फौजी भाई हैं, सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं ऐसे जांबाज को, है ना। आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना आज के कार्यक्रम गीत बहार की पहली बहुत ही खूबसूरत रचना के साथ। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत, जज्बातों से भरा शानदार खूबसूरत गीत, वाकई कमाल। आज सच में यदि हमारे सैनिक नहीं होते तो हम कहाँ होते। सैनिकों, एक बार फिर से सल्यूट करने का मन कर रहा है और सल्यूट करना भी चाहिए। देश की रक्षा के लिए तन बन तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर देते हैं हमारे जांबाज, है ना साथियों। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है।

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो शामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
1: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ साथियों, कुछ गीत हमने प्ले किए हैं और देश की शान आन बान शान के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्या कहें हम, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीतों का जो सिलसिला चल रहा है। एक बार फिर से नमस्कार श्रोताओं, आदाब सत श्री अकाल, दिल से प्रणाम। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। तो साथियों, इतना सुंदर और बहुत ही खूबसूरत जो दुनिया है इस संसार में, वाकई बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है और सबसे प्यारा। ये तो हर देश में सभी का देश प्यारा होता है, लेकिन सबसे प्यारा देश हमें हमारा ही लगता है ना? या दोस्तों, वाकई अच्छा लगता है हमें भी कि जब हमारा देश तरक्की कर रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है ना? तो साथियों, एक और गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार खूबसूरत गीत है, और ये गीत वाकई बहुत ही शानदार लगता है हमें भी। देशभक्ति के साथ सराबोर खूबसूरत गीत आ रहा है, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई वतन की मिट्टी की खुशबू में कुछ एक अलग ही रंग एहसास होता है। तिरंगे की शान में करोड़ों दिलों की आस है, जिन वीरों ने हंसकर देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज उनकी कुर्बानियों को नमन करने का दिन है। तो आइए स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर हम संकल्प लें कि देश की एकता, अखंडता और सम्मान को सदैव सर्वोपरि रखें। हमारा तिरंगा यूं ही आसमान

जी हाँ दोस्तों, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वाकई बहुत ही जोशीला खूबसूरत गीत। आज़ादी सिर्फ एक अधिकार नहीं, यह अनगिनत बलिदानों से मिली अमूल्य विरासत है। तो आइए इसे केवल उत्सव की तरह ना मनाएं, जी हाँ दोस्तों, बल्कि बल्कि अपने कर्म, ईमानदारी और जिम्मेदारी से देश को मजबूत बनाएं। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम अगर आगे बढ़ेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। आओ मिलकर ऐसा भारत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। जी हाँ दोस्तों, वाकई अच्छा लगता है ना। जी हाँ, तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है, वीरों की कुर्बानी हमारा अभिमान है और देश की तरक्की हमारा अरमान है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, एक और गीत सुनवा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत है, और सभी को सराबोर होना है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। जी हाँ, आज़ादी का जश्न मनाते हुए शानदार खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बस दिल बाग बाग हो रहा है और कार्यक्रम करते हुए वाकई बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। जी हाँ दोस्तों, एक शायरी है बड़ी प्यारी सी, सुंदर है, और ये न मिटने देंगे तिरंगे की शाम को, न मिटने देंगे तिरंगे की शान को, न भूलेंगे वीरों के बलिदान को, दिल में भारत होठों पर हिंदुस्तान रहे, हर जन में यही प्यारा वतन महान रहे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। वंदे मातरम, जय हिंद। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत की, उससे पहले कुछ जज्बात। जी हाँ, आइए आज उस आज़ादी को सलाम करें जिसके लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन माताओं को जन्म नमन करें, उन माताओं को नमन करें जिन्होंने अपने लाल देश पर कुर्बान किए हों। उन क्रांतिकारियों को नमन करें जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का सपना देखा, और उन सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को श्रद्धांजलि दें जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। आज तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, आज तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, यह हमारी आन बान शान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। तो आइए प्रण लें और एकजुट देश को स्वच्छ, सशक्त, शिक्षित, समृद्ध, एकजुट बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद। तो सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की गीत बहार कार्यक्रम की अंतिम बेहतरीन रचना।

0: जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही खूबसूरत गीतों का समावेश बनता हुआ शानदार खूबसूरत कार्यक्रम अब यानी कि गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। साथियों 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया के विदेश मंत्री सारा बियोसोलोव न्यांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: 80वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुशिन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में एक अवैध ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार निदेशालय की कार्रवाई में 30 किलोग्राम अवैध ड्रग बरामद की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish Abraham. The monsoon session of Parliament has concluded, with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its co-legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
1: Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business, but continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 3:10 और ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत यानी कि गीत और गजल का। जी हाँ, आप चाहें तो गीत सुन सकते हैं और आप चाहें तो गजल का आनंद भी उठा सकते हैं। या दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आज शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल के साथ। ये गजल है बहुत ही प्यारी, लाजवाब, अनमोल रचना। मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, ये जज्बात है, खूबसूरत अंदाज है। सजदा, एन ऑफरिंग ऑफ गजल्स, लता मंगेशकर की बेहतरीन खूबसूरत आवाज में शानदार गजल है। ये गजल 2005 की है। गीत, मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं। जी हाँ, गीतकार हैं मुजफ्फर वारसी और संगीत जगजीत सिंह साहब का। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना, गजल।

बहुत ही शानदार खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे ना, खुद की खबर है ना खुद का पता है, वाकई बहुत ही शानदार बेहतरीन गज़ल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गज़ल की ओर। यह गज़ल है लता मंगेशकर की आवाज़ में, शानदार रचना, आँख से दूर ना हो। बहुत ही प्यारी बेहतरीन रचना है, सुनते हैं यह प्यारी सी गज़ल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7। तो साथियों, एक और खूबसूरत गजल आ रही है, तो हो जाइए तैयार इस शानदार बेहतरीन गजल के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल गजलों का कार्यक्रम। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गजल जो रचना है मिर्ज़ा गालिब साहब की, और संगीत दिया है और आवाज़ दी है निहारिका सिन्हा ने।

और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं मिताली और भूपेंद्र सिंह को एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ।

0: और इसी के साथ ये गजल गीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:20 और 14 सेकेंड। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं TK रंगाचारी का गायन। राग है शंकराभरणम भरण।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नादब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टी के रंगाचारी का गायन वंदे मातरम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक सम्मत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त 2026। सुबह के 4:54 और 7 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा शोल्डर मूवमेंट यानी कि कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन। प्रस्तुतकर्ता होंगी योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी श्योखन। सुबह 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा स्वर रंजनी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे योगेश शंकर का शहनाई पर बजाया गया राग नट भैरव।

सुबह 7:10 पर कार्यक्रम होगा संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे अमृता जोशी के भजन। 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा फिल्मी गीतों का।

8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे लोकेश आनंद और पार्टी से शहनाई वादन, राग होगा बैरागी। 9:15 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत वार्ता का विषय रहेगा सामाजिक कुरीतियों और उनके उन्मूलन पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगी शुभांगी पवार।

0: पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का समय रहेगा 9:30 और सुबह 10:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10 और सुरमंजरी का समय रहेगा 11:30। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पेश किए पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी में प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों और असहनीय पीड़ा झेलने वालों के सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इससे पहले कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नेआंती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है।

पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 15 आतंकवादी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों का एक संयुक्त काफिला डुबंदो चेकपोस्ट की ओर जा रहा था। इसी दौरान अपर दीर जिले के बारीकोट गांव के पास आतंकवादियों ने काफिले पर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद इलाके को घेर लिया गया है और बाकी आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीथ आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में

यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप ये अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं विष्ठ की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से जंघा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आएं। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। इस बार एड़ियों को ना उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं, पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें। श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को दो या तीन आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ अनुभव करने के लिए तनाव अथवा थकान की अवस्था में। धन्यवाद। और विशेष रूप से यह आसन बच्चों के लिए और भी ज्यादा लाभकारी है, उनकी लंबाई बढ़ाने में। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की उम्र के लोग इस आसन को रोजाना 2-3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लंबाई भी

0: बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर हिमानी श्योखन और सुनील गौतम हापुड़िया, योग विशेषज्ञ।

0: जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय है देशभक्ति गीत का, आइए सुनते हैं पहले देशगान।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं योगेश शंकर का शहनाई पर बजाया गया राग नट भैरव।